ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, FM 102, 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के अषाढ़ मास की प्रथम तिथि, तदनुसार 22 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति

0: कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

श्रुति शाडोलीकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे शिव स्त्रोतम। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये भजन।

पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर के स्वर में सुना आपने ये भक्ति रचना। आइए अब आपको सुनवाते हैं अनूप चलोटा और प्रद्युम्न शर्मा के स्वर में ये प्यारा सा भजन।

0: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति।
1: One, two, five.

जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं

में गूंजने लगी। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और ध्वज पताकाओं से सजाया। घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। आज की कड़ी के गायन कलाकार थे वाणी जयराम और उत्तरा केलकर। आइए अब सुनते हैं आबो हवा। आज का विषय है जल प्रदूषण। वाचन स्वर है श्री हेमंत झा का।
1: श्रोताओं, जल प्रदूषण से हमारा तात्पर्य जल के अशुद्ध होने से है। नदी, कुओं, तालाबों, झीलों के निर्मल तथा शुद्ध जल में गंदगी तथा हानिप्रद रासायनिकों तथा अजैवीय पदार्थों के मिलने से पानी की शुद्धता व निर्मलता समाप्त हो जाती है। इससे जल न तो पीने योग्य रहता है और न ही कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। प्रदूषित जल गंदगी युक्त, बेस्वाद, दुर्गंध वाला तथा लवण एवं रासायनिकों से युक्त रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जब जल में भौतिक या मानवीय कारणों से कोई बाहरी पदार्थ मिलकर जल के स्वाभाविक या नैसर्गिक गुण में परिवर्तन लाते हैं, जिसका कुप्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर प्रकट होता है, तो ऐसे जल को प्रदूषित जल कहते हैं। प्रकृति को इस दुनिया को आज का रूप देने में सदियों लग गए। उसने हमें जीने और मौज मस्ती करने के लिए अनेक प्रकार के पदार्थ दिए, परंतु

मनुष्य तो जैसे इसी सदी में विनाश करने पर आमादा है। वह हर उपलब्ध स्रोत को तेजी से खर्च कर रहा है, पानी की धाराओं को अपंग कर रहा है और उन्हें धीरे धीरे कूड़ेदान में बदल रहा है। हमारे जल संसाधनों की पवित्रता को नुकसान पहुंचाने वाले खास प्रदूषक हैं, जैसे औद्योगिक अपशिष्ट, मल जल और कृषि जनित पदार्थ। उद्योगों द्वारा जनित प्रदूषण को लगभग पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता रहा है।

0: मल जल और कृषि जनित पदार्थ उद्योगों द्वारा जनित प्रदूषण को लगभग पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता रहा है। ऐसा मान लिया गया है कि नदियों और तालाब कचरा फेंकने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। हालांकि न्यायालय व सरकार की पहल पर कई औद्योगिक शहरों में कुछ उद्योगों को दंडित किया गया है, परंतु जल की गुणवत्ता में आम गिरावट को मौन स्वीकृति भी दे दी गई है। औद्योगिक कार्यों में अनेक प्रकार के व्यर्थ पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उन्हें अक्सर आसपास के पानी में मिला दिया जाता है। इनमें से कुछ तो अपशिष्ट जहरीले होते हैं, कुछ अपशिष्ट लंबे अरसे तक अपना प्रभाव डालते हैं और बहुत से अपशिष्ट पदार्थ ऐसे भी हैं जिनके प्रभाव के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। श्रोताओं, अब हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार ये प्रदूषक जल में जहर घोल रहे हैं। इस जहरीले जल के सेवन से प्राणी तथा वनस्पति जगत पर कई प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। प्रदूषित जल विविध प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है, शरीर में विविध प्रकार की विकृतियां पैदा कर देता है। यह भूमि में भी प्रदूषण पैदा करता है, जिससे वनस्पति जगत पर कई प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे फिनोल नामक रसायन जल में जब घुलता है तो इस जल के सेवन से मनुष्य की हड्डियां तथा दांतों पर सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हड्डियां कमजोर हो जाती है तथा दांतों पर धब्बे पड़ जाते हैं, त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं, मनुष्य नेत्र रोगी तक बन जाता है। इसी प्रकार सीसा भी एक विषैला तत्व है जो कारखानों से निकलते अपशिष्टों के माध्यम से जल में घुल जाता है। ऐसे जल के सेवन से श्वास की बीमारियां होती हैं, पीलिया हो सकता है, आंते तथा गुर्दा कमजोर हो जाते हैं, रक्त की कमी तथा सिर दर्द मन का शिकार मनुष्य हो जाता है। फ्लोराइड भी एक विषैला पदार्थ है जिसके युक्त जल से सेवन से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे हड्डियों का विकृत होना, जोड़ों में दर्द रहना, रक्त की कमी, दांतों की बीमारियां, लकवा तथा पेट से संबंधित रोग हो जाते हैं। पारा भी एक विषैला पदार्थ है जो कि तेल शोधन कारखानों, प्लास्टिक एवं बैटरी बनाने वाले उद्योगों से अपशिष्ट के रूप में जल में मिलकर उसे लगातार प्रदूषित करता है। पारा युक्त जल के सेवन से पीलिया हो जाता है, लीवर कमजोर पड़ता है, गुर्दे तथा यकृत संबंधित रोग हो जाते हैं। वहीं कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही प्रकार के अम्ल नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में फेंके जाते हैं। ये अम्ल नदियों के पंख और कीचड़ के संपर्क में आकर हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस बनाते हैं, जो नदियों के सूक्ष्म जीवों को मारकर नदियों के पानी के स्वपरिशोधन प्रक्रिया को रोक देते हैं, जो जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार हमने महसूस किया कि जल प्रदूषण में मुख्य योगदान औद्योगिक अपशिष्ट और मल जल का है। किसी बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए तेजी से कार्यवाही का यही सही वक्त है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी विवरण के अंतर्गत।

सुबह के 9:10 का समय होगा फिल्म संगीत का, और 9:30 आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें आज का विषय होगा चर्चा कामकाजी कपल्स के बीच बड़े सामंजस्य। साथ ही आप सुनेंगे गार्गी मेहता से वार्ता, जिसका विषय रहेगा डिजिटल युग में महिलाएं, आत्मनिर्भरता और चुनौतियां। साथ ही आपको पंखुड़ी पोर्टल की जानकारी मिलेगी। दिन के 12:00 आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हमारी सायकालीन सभा में शाम के 5:00 युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी, जिसमें आज के संवाद का विषय रहेगा तनाव से निपटने के लिए संगीत। साथ ही आप सुनेंगे परिवेश हमारा, आक्रामक विदेशी प्रजातियों से भारत की जैव विविधता पर प्रभाव, और आपको जानकारी मिलेगी मेला शीर भवानी की। शाम के 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। साथ ही 7:00 का समय होगा चौपाल कार्यक्रम का, जिसमें आप सुनेंगे आज भेंट वार्ता डॉक्टर भरत लाल चौधरी से, विषय रहेगा सोयाबीन की उन्नत किस्में और उनकी विशेषता। शाम के 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत हमारे स्टूडियो से। और रात्रि के 9:00 भी आप सुनेंगे फिल्म संगीत, जिसे कि हमारे स्टूडियो से प्रस्तुत किया जाएगा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

अब से कुछ ही देर में यानी कि सुबह के 7 बजे आप सुनेंगे स्थानीय सूचनाओं का कार्यक्रम नमस्कार कोटा। सुबह के 7:30 बजे का समय होगा फिल्म संगीत एक ही फिल्म से, जिसमें आज की फिल्म है जमीर। और सुबह के 8:15 बजे का समय होगा काव्यांजलि का, जिसमें आज काव्य पाठ कर रहे हैं कवि वेद प्रकाश।

गगन पर सूरज की पहली किरणों ने सब और सुनहरी परत बिछा दी है। हल्की ठंडी बयार बह रही है और कहीं कहीं आने वाले पावणों की यानी कि बादलों की सूचना दे रही है। और नमस्कार कोटा के जरिए मैं जयती आप तक करती हूं आपका स्वागत। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से विचार के साथ। आज का विचार कहता है, अतीत का बोझ लेकर ना चलें, ये आज पर भारी पड़ेगा व कल की खूबसूरती चुरा लेगा। कितना सच है ना, हम में से कितने लोग हैं जो आज की ताजी कड़क चाय का मजा सिर्फ इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि कल की बातें दिमाग में घूम रही होती हैं। जिंदगी की गाड़ी का जो आगे वाला शीशा होता है ना, वो बड़ा होता है और पीछे देखने वाला आईना छोटा। क्यों? ताकि पीछे सिर्फ नजर रहे पर पूरा ध्यान आगे रास्ते पर रहे। देखिए, जिंदगी में दो ही चीजें हमारे सुकून को चुराती हैं, एक काश और दूसरा वैसा क्यों हुआ। काश मैंने ऐसा ना किया होता, उसने मेरे साथ वैसा क्यों किया।

सोचिए अगर आप आज का पूरा दिन सिर्फ कल के पछतावे में गुजार देंगे तो आज का दिन भी कल अतीत बन जाएगा और ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो कभी खत्म नहीं होता। जब हम किसी खूबसूरत सफर पर जाते हैं तो अपना सूटकेस कितना हल्का रखते हैं ना, ताकि घूमने में मजा आए, हम खुलकर दौड़ सकें, तस्वीरें ले सकें, तो फिर इसमें पुरानी कड़वाहटों और बीती बातों का भारी भरकम सामान लेकर क्यों चलना। जिंदगी की खिड़की को हमेशा खुला रखिए ताकि पुरानी धूल बाहर निकल सके और आने वाले कल की ताजी धूप ठंडी हवा सीधे आपके दिल तक पहुंच सके।

ऑल इज वेल, यानी सब कुछ सही है, क्योंकि हो गई है सुबह की शुरुआत और मैं हूँ आपके साथ जयती। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सुनने वाले सुन रहे हैं और महसूस करने वाले जी रहे हैं। श्रोताओं, क्या आपने सोचा है कि जब हम सुबह उठकर चैन की सांस लेते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे, तो वो सांस आती कहाँ से है? हमारे शहर के कंक्रीट के जंगल से? जी नहीं, वो आती है हजारों मील दूर फैले उन वर्षा वनों से जिन्हें हमारे ग्रह का दिल और फेफड़ा कहा जाता है। दुनिया की आधी से ज्यादा हरियाली, रंग बिरंगे परिंदे और जादुई दवाइयां इन्हीं जंगलों की देन है। अगर ये वर्षा वन नहीं होते तो शायद मेडिकल साइंस आज इतना आगे नहीं होता। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो हमारी सेहत की चाबी इन जंगलों के पास है। लेकिन श्रोताओं, तस्वीर का दूसरा पहलू डरावना है। जिस रफ्तार से हम तरक्की की आंधी में दौड़ रहे हैं, उसी रफ्तार से हम इन जंगलों को खो रहे हैं। हर एक मिनट में फुटबॉल के कई मैदानों जितने बड़े वर्षावन काट दिए जाते हैं। क्यों? हमारी सुख सुविधाओं के लिए, लकड़ी के लिए और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मौसम का मिजाज बदल रहा है और गर्मियां हर साल असहनीय होती जा रही हैं। ये सब प्रकृति का हमें इशारा है, एक खतरे की घंटी है कि अब भी संभल जाओ। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार, हम तो यहाँ बैठे हैं एसी में, एसी के कमरे में या कूलर में, अमेजोन या अफ्रीका के वर्षा वनों को कैसे बचाएं? है ना? अरे बाबा, रास्ता बहुत आसान है, बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है। हमें बड़ा बदलाव नहीं लाना, हमें बस छोटा सा बदलाव लाना है। वो कैसे? पहली बात, कागज का इस्तेमाल समझदारी से करें। डिजिटल युग है, पेपरलेस बने, जितना कागज बचेगा उतने कम पेड़ कटेंगे। दूसरा तरीका है रिसाइकलिंग का, रिसाइकलिंग को अपनी आदत बनाएं। तीसरा, ऐसा सामान खरीदने से बचें जिसके पीछे वनों की कटाई का हाथ हो, जैसे अनसर्टिफाइड पाम ऑयल वाले सामान। हमें कोई बड़ा वादा नहीं करना, बस एक छोटी सी शुरुआत चाहिए। एक छोटा सा बदलाव लाइए और इस धरती के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाइए, क्योंकि वर्षा वन सुरक्षित हैं तो ही हमारा कल सुरक्षित है।

खनन खनन काले बजरा तो आएंगे और वर्षा भी अपना काम करेगी, वर्षा वन भी अपना काम करेंगे, यानी प्रकृति अपना काम करेगी, लेकिन लेकिन हमें इनका रखना है ध्यान, ताकि आगे आने वाले भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग से हम ना हो परेशान।

आज जब हम आजाद हवा में सांस लेते हैं तो कभी कभी भूल जाते हैं कि इस आजादी की कीमत कितनी बड़ी थी। और आज इतिहास के पन्नों में आपको लेकर चलेंगे हम साल 1930 के उस दौर में, जहां मुट्ठी भर नौजवानों ने सीधे ब्रिटिश हुकूमत की छाती पर पैर रख दिया था। आज बात एक ऐसे क्रांतिकारी की जिनका नाम सुनते ही अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे, क्रांतिकारी गणेश घोष।

18 अप्रैल 1930 में ये वो तारीख थी जब इतिहास बदला। मास्टर दा सूर्य सेन के नेतृत्व में जिन जाबाजों ने चटगांव शस्त्रागार छापे यानी चिट्टागोंग आर्मरी रेड को अंजाम दिया, उसके मुख्य दिमाग मुख्य रणनीतिकार थे गणेश घोष। सोचिए उस जमाने में जब अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, फौज थी, तब गणेश घोष और उनके दस्ते ने पुलिस शस्त्रागार पर धावा बोलकर उस पर कब्जा कर लिया और इतना ही नहीं टेलीफोन की तारें काट दी, रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए और कुछ समय के लिए चटगांव को ब्रिटिश राज से पूरी तरह आजाद कराकर वहां तिरंगा लहरा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी दोस्तों, ये सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अहंकार पर करारा तमाचा थी।

0: लेकिन क्रांति की राह कभी आसान हुई है क्या? कभी आसान नहीं होती। जलालाबाद की पहाड़ियों में अंग्रेजों के साथ भीषण जंग हुई। गणेश घोष गिरफ्तार हुए और उन्हें भेज दिया गया अंडमान की उस भयानक जेल में जिसे हम और आप काला पानी के नाम से जानते हैं। सेलुलर जेल की उन अंधेरी कोठियों और कोड़ों की मार भी उनके हौसलों को डिगा नहीं पाई। वहां रहकर उन्होंने पढ़ाई की, विचारों को और धार दी और आजादी के बाद भी राजनीति के जरिए जनता की सेवा करते रहे। उन्नीस सौ चौरानवे में जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, तब तक वो देश के करोड़ों युवाओं के लिए मिसाल बन चुके थे। गणेश घोष का व्यक्तित्व जोश, होश और ज्ञान का एक ऐसा बेजोड़ अनोखा संगम था जिसने इतिहास बदल दिया।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग

0: श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुनिए। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 31 जुलाई 2026 को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसके लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जमा की जाएंगी। पोर्टल का पता है https://awards.gov.in। पोर्टल का पता पुनः सुने https://awards.gov.in। इसके माध्यम से ऑनलाइन ही ये नामांकन और अनुशंसाएं जमा की जानी है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई सन 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी, थोड़ी सी नचा दे।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

0: अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।
1: नमस्कार, कोटा में लाते हैं हम आपके लिए आसपास की जानकारी, ताकि कहीं कुछ छूट ना जाए। तो सुनिए, यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए राजस्थान रोडवेज ने कोटा से प्रमुख शहरों के लिए नई वातानुकूलित बस सेवाएं शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। कोटा से दिल्ली, जोधपुर, उदयपुर और अहमदाबाद के लिए जल्द ही दौड़ेंगी एसी बसें।
2: चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी।
1: और चलते चलते हमारी गाड़ी भी उस स्टॉप तक पहुंच चुकी है जहां पर लेनी पड़ेगी हमें आपसे विदा। कार्यक्रम का संयोजन किया था तेजराम मीणा ने और प्रस्तुति सहयोग दिया था राजेश महावर ने। इसी के साथ मैं जयती लेती हूँ आपसे विदा। कार्यक्रम नमस्कार कोटा से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार कोटा। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत एक ही फिल्म से। कृपया प्रतीक्षा करें।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत एक ही फिल्म से। हमारी आज की फिल्म है सन 2005 में आई फिल्म जमीर। जमीर फिल्म रिश्तों, प्यार और भावनाओं की कहानी को दर्शाती है। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का पहला गीत।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
3: कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आप सुन रहे हैं जमीर फिल्म के गीत। आइए बात करते हैं इस फिल्म की। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में थे प्रसिद्ध अभिनेता अजय देवगन, उनके साथ मुख्य भूमिकाओं में थी अभिनेत्री अमीषा पटेल और महिमा चौधरी। फिल्म में इन कलाकारों ने अपने अभिनय से कहानी को आगे बढ़ाया। अब जानते हैं इसकी कहानी संक्षेप में। फिल्म की कहानी प्रेम, रिश्तों और जिंदगी के कठिन फैसलों के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी दिखाई गई है जो अपने अतीत, प्यार और जिम्मेदारियों के बीच उलझ जाता है। परिस्थितियां उसे कई भावनात्मक फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आज आप सुन रहे हैं फिल्म जमीर के गीत। जमीर फिल्म के संगीत को दिया था संगीत निर्देशन की जोड़ी जतिन ललित और निखिल विनय ने। फिल्म के गीतों को अपनी आवाज दी है सोनू निगम, उदित नारायण, कुमार सानू, अलका याग्निक और श्रेया घोषाल जैसे प्रसिद्ध गायकों ने।
4: परदेसी परदेसी परदेसी।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ?
4: नया किडबैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
4: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
6: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: श्रोताओं, अब बात करते हैं फिल्म जमीर के निर्देशन और निर्माण की। इस फिल्म का निर्देशन कमल ने किया था। फिल्म का निर्माण

NR 25 यानी किया था। यह फिल्म दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध कहानी का हिंदी रूपांतरण था। और दर्शकों की प्रतिक्रिया की भी बात कर लेते हैं हम। फिल्म को दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी। कहानी और प्रस्तुति दर्शकों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर पाई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकी। हालांकि फिल्म के गीतों और कलाकारों के अभिनय को लोगों ने सराहा और आज भी इसके गीत याद किए जाते हैं।

0: श्रोताओं, यह थी आज की प्रस्तुति एक ही फिल्म से, जिसमें हमने फिल्म जमीर के बारे में बात की। इसी के साथ कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात का आज का अंक।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
2: भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे।

0: इतने वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौ सैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित

0: समारोह में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
1: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वही स्मॉल क्लाउड को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: हम लिख के गया ऐसा करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
5: समाज से तुलना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
6: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और

0: पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर ये परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के पुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल ऐप पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब सुनिए काव्यांजलि के अंतर्गत कवि वेद प्रकाश द्वारा काव्य पाठ।
3: एक गजल के चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मतला समाज फरमाइए आप। देखा है जब से उनको सरापा जमाल में, देखा है जब से उनको सरापा जमाल में, मैं खुद से बेखबर हूँ उन्हीं के ख्याल में, मैं खुद से बेखबर हूँ उन्हीं के ख्याल में। मेरी तरह से कोई असीरे बला न हो, मेरी तरह से कोई असीरे बला न हो, उलझे न दिल किसी कई जुल्फों के जाल में, मैं खुद से बेखबर हूँ उन्हीं के ख्याल में। और शेर देखे आप। ठुकरा के उसने महफिले अरमान आरजू, ठुकरा के उसने महफिले अरमान आरजू, गम भर दिए जहां के दिले पाए माल में, मैं खुद से बेखबर हूँ उन्हीं के ख्याल में। रंजो अलम से किसको जहां में निजात है, रंजो अलम से किसको जहां में निजात है, जिसको खुशी आज वो कल था मलाल में, राहे वफा में चल न सके साथ दो कदम, राहे वफा में चल न सके साथ दो कदम, आ ही गए ना तुम भी जमाने की चाल में, मैं खुद से बेखबर हूँ उन्हीं के ख्याल में। दिल है ये मेरा दिल कोई पत्थर नहीं है ये, दिल है ये मेरा दिल कोई पत्थर नहीं है ये, जालिम न टूट जाए कहीं देखभाल में, जिसको जवाल आज है कल था उसे उरूज, जिसको जवाल आज है कल था उसे उरूज, ये कैसी कश्मकश है उरूजो जवाल में। और एक आखिरी शेर देख लीजिए आप। उनकी निगाहें लुत्फ का एजाज देखिए, मेरा शुमार होता है रोशन ख्याल में, उनकी निगाहें लुत्फ का एजाज देखिए, मेरा शुमार होता है रोशन ख्याल में। और मकतावी समाज फरमा लीजिए, प्रकाश उसको इश्क ने जावेद कर दिया, प्रकाश उसको इश्क ने जावेद कर दिया, जिंदा है केस आज भी दस्तो जबाल में, देखा है जब से उनको सरापा जमाल में, मैं खुद से बेखबर हूँ उन्हीं के ख्याल में। और दूसरी गजल देख लीजिए आप। मतलब समाप्त फरमाइए। आ ख्यालों में दिल में उतर जिंदगी, आ ख्यालों में दिल में उतर जिंदगी, सूना सूना पड़ा।

चाहे ये घर जिंदगी और सानी मतला देखिए है किसी के लिए मालो जर जिंदगी है किसी के लिए मालो जर जिंदगी और किसी के लिए दर्द सर जिंदगी आ ख्यालों में दिल में उतर जिंदगी सूना सूना पड़ा है ये घर जिंदगी। और शेर देखिए आप जिंदगी वो जो औरों पे डाले असर जिंदगी वो जो औरों पे डाले असर वरना किस काम की बेअसर जिंदगी आ ख्यालों में दिल में उतर जिंदगी सूना सूना पड़ा है ये घर जिंदगी। काम ऐसा करो नाम जिंदा रहे काम ऐसा करो नाम जिंदा रहे फिर नहीं आएगी लौट कर जिंदगी आ ख्यालों में दिल में उतर जिंदगी सूना सूना पड़ा है ये घर जिंदगी। और शेर देखिए जानता हूँ कि मंजिल मिलेगी नहीं जानता हूँ कि मंजिल मिलेगी नहीं क्यों भटकती है तू दर बदर जिंदगी आ ख्यालों में दिल में उतर जिंदगी सूना सूना पड़ा है ये घर जिंदगी। साथ जब तक न तू खुद मेरा छोड़ दे साथ जब तक न तू खुद मेरा छोड़ दे मैं रहूंगा तेरा हम सफर जिंदगी आ ख्यालों में दिल में उतर जिंदगी सूना सूना पड़ा है ये घर जिंदगी। जिसने चाहा तुझे जिसने पूजा तुझे जिसने चाहा तुझे जिसने पूजा तुझे तू उसे भी गई छोड़कर जिंदगी आ ख्यालों में दिल में उतर जिंदगी सूना सूना पड़ा है ये घर जिंदगी। तुझको पाने की हसरत को दिल में लिए तुझको पाने की हसरत को दिल में लिए और कब तक फिरूं दर बदर जिंदगी आ ख्यालों में दिल में उतर जिंदगी सूना सूना पड़ा है ये घर जिंदगी। हाँ धड़कने को ये दिल धड़कता तो है हाँ धड़कने को ये दिल धड़कता तो है वरना कब का गया हूँ मैं मर जिंदगी आ ख्यालों में दिल में उतर जिंदगी सूना सूना पड़ा है ये घर जिंदगी। मेरी परवाज उल्फत का पैगाम हो मेरी परवाज उल्फत का पैगाम हो कर अता वो मुझे बालों पर जिंदगी आ ख्यालों में दिल में उतर जिंदगी सूना सूना पड़ा है ये घर जिंदगी। दौलते जिंदगी को वतन पर लुटा दौलते जिंदगी को वतन पर लुटा ताकि हो जाए तेरी अमर जिंदगी आ ख्यालों में दिल में उतर जिंदगी सूना सूना पड़ा है ये घर जिंदगी। और मक्ता भी देख लीजिए इसको प्रकाश कैसा गहन लग गया इसको प्रकाश कैसा गहन लग गया ये थी खुर्शीद ये थी कमर जिंदगी आ ख्यालों में दिल में उतर जिंदगी सूना सूना पड़ा है ये घर जिंदगी। और एक गजल और देखिए आप मतलब देखिए आप मिल गया है मुझे अब पता आपका मिल गया है मुझे अब पता आपका छोड़ दूं कैसे दामन भला आपका मिल गया है मुझे अब पता आपका छोड़ दूं कैसे दामन भला आपका देख कर मुल्तफित मुझ पे चश्मे करम देख कर मुल्तफित मुझ पे चश्मे करम लोग करने लगे तस्करा आपका मिल गया है मुझे अब पता आपका छोड़ दूं कैसे दामन भला आपका चल तो दूं आपके साथ मैं भी मगर चल तो दूं आपके साथ मैं भी मगर छोड़ दो कब कहां क्या पता आपका मिल गया है मुझे अब पता आपका छोड़ दूं कैसे दामन भला आपका। और देखिए कैसे तन्हा बढ़ा दूं मैं अपने कदम कैसे तन्हा बढ़ा दूं मैं अपने कदम कुछ तो आगे बढ़े सिलसिला आपका मिल गया है मुझे अब पता आपका छोड़ दूं कैसे दामन भला आपका। जानता हूँ मेरे कितने हमदर्द हो जानता हूँ मेरे कितने हमदर्द हो सब पता है पता है पता आपका मिल गया है मुझे अब पता आपका छोड़ दूं कैसे दामन भला आपका। चांद सूरज है रोशन सभी आपसे चांद सूरज है रोशन सभी आपसे जर्रे जर्रे में जलवा छिपा आपका मिल गया है मुझे अब पता आपका छोड़ दूं कैसे दामन भला आपका। और मक्ता भी देख लीजिए आप
हो जो प्रकाश उस पे अकीदा।

वो जो प्रकाश उस पे अकीदा अगर तो मिटाएगा हर गम खुदा आपका, मिल गया है मुझे अब पता आपका, छोड़ दूं कैसे दामन भला आपका। ये और गजल देखिए, एक दिल और दुनिया के गम, ए मोहब्बत है तेरा करम। एक दिल और दुनिया के गम, ए मोहब्बत है तेरा करम। हमसे पूछो खुदा की कसम, हमसे पूछो खुदा की कसम, रश्क जन्नत कुए सनम। एक दिल और दुनिया के गम, ए मोहब्बत तेरा करम। और शेर देखिए, आज है वो सफ़े गैर में, आज है वो सफ़े गैर में, कल जिसे अपना समझे थे हम। एक दिल और दुनिया के गम, आदमी आदमियत से है, आदमी आदमियत से है, वरना दर्जे में है वहां से कम। एक दिल और दुनिया के गम, ए मोहब्बत है तेरा करम। जो उठे हक में मजलूम के, जो उठे हक में मजलूम के, अब कहाँ है वो सैफो कलम। एक दिल और दुनिया के गम, ए मोहब्बत ये तेरा करम। और शेर देखिए, जुर्म उल्फत की है ये सजा, जुर्म उल्फत की है ये सजा, जिंदगी में मिले गम ही गम। एक दिल और दुनिया के गम, ए मोहब्बत ये तेरा करम। अब मैं किसकी इबादत करूं, अब मैं किसकी इबादत करूं, है निगाहों में रूहे सनम। एक दिल और दुनिया के गम, ए मोहब्बत तेरा करम। क्या क्या देते हैं लुत्फ सफर, क्या क्या देते हैं लुत्फ सफर, राहे उल्फत के ये पेचो खम। एक दिल और दुनिया के गम, ए मोहब्बत तेरा करम। मक्ता भी देख लीजिए, तीरगी नफरतों की मिटे, तीरगी नफरतों की मिटे, इतना प्रकाश हो कम से कम। एक दिल और दुनिया के गम, ए मोहब्बत तेरा करम। एक गजल और देख लीजिए, इस गजल को मैं तरन में पढ़ना चाहता हूं।

कम मिला है जिंदगी को, हाय कैसा ये तगाफुल, हाय कैसा ये तगाफुल सम

को और मक्ता भी सांस भरवा लीजिए। नाम है प्रकाश लेकिन नाम है प्रकाश लेकिन तम मिला।

0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: अभी आप सुन रहे थे काव्यांजलि के अंतर्गत काव्य पाठ कर रहे थे कवि वेद प्रकाश। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम सुगम संगीत।

इसी गीत के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को हैं। अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।

0: प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, विशेषज्ञों की टीम अलर्ट मोड पर। राज्यस्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन आज से सवाईमाधोपुर में किया जा रहा है। और राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से 7 जिलों में 3 दिनों तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े सुरक्षित उपायों के मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल उदयपुर की महत्वाकांक्षी देवास 3 और 4 पेयजल परियोजनाओं का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन बांधों के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के सभी काम उच्च गुणवत्ता और पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से उदयपुर शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों की वर्तमान तथा भविष्य की पेयजल आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। इस मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बांध, टनल निर्माण और पुनर्वास से जुड़े कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। राज्य सरकार प्रदेश में डेयरी सेक्टर को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कल पाली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि राजस्थान का डेयरी क्षेत्र बेहद मजबूत है और इस पर गुजरात डेयरी या अन्य किसी बाहरी का हस्तक्षेप का कोई असर नहीं पड़ेगा।
1: हमारा डेयरी सेक्टर इतना मजबूत है कि यहाँ पर उन नियमों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा गांव-गांव तक, हर किसान तक हमारा डेयरी सेक्टर फैला हुआ है। हम किसानों को फैट के आधार पर, दूध पालकों को फैट के आधार पर तो पैसा देते हैं, लेकिन 5 रुपए सरकार की तरफ से पर लीटर उनको अनुदान भी देते हैं। इसलिए जो लोग, जो किसान, जो पशुपालक हमारी डेयरी से जुड़े हुए, निश्चित रूप से वो हमारी डेयरी से जुड़े रहेंगे। उनके नियमों से हमारे यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
0: रोजगार के मोर्चे पर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में 4.25 लाख सरकारी नौकरियां देने की बजट घोषणा पर तेजी से अमल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव

0: यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अलवर जिले को विकास की दो बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने 42 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से कल नटनी का 12 से जैसमन बांध नहर को पक्की करने के काम का शिलान्यास किया। साथ ही 3 करोड़ 34 लाख रुपए से निर्मित भाखेड़ा एनिकेट का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं से क्षेत्र का भूजल स्तर रिचार्ज होगा, जिससे वन्य जीवों, किसानों और आमजन की पानी की जरूरतें पूरी होंगी। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। इनमें से 2 महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इन सभी महिलाओं की शनिवार को सिजेरियन डिलीवरी कराई गई थी। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं होने लगी, जिसके बाद उनका उपचार शुरू किया गया।
1: पावटा अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर कुलबीर चोपड़ा ने बताया कि शनिवार को अस्पताल में 8 सिजेरियन ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन के बाद भी सभी का ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव होने लगा। इनमें से 2 महिलाओं की स्थिति अत्यंत गंभीर होने पर उन्हें तत्काल मथुरादास माथुर अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। दोनों मरीजों की किडनी भी प्रभावित हुई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो सकेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। सवाईमाधोपुर में आज से राज्य स्तरीय कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान वन विभाग की ओर से हो रहे 2 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य CSR के माध्यम से वन और वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन तथा स्थानीय समुदायों के सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री होंगे। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता।
2: राजस्थान वन विभाग द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के माध्यम से वन और वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन तथा स्थानीय समुदायों के सतत विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज से राज्य स्तरीय CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में विभिन्न कॉरपोरेट संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, उद्योग समूहों, गैर सरकारी संगठनों, वन अधिकारियों, संरक्षण विशेषज्ञों तथा नीति निर्माताओं की सहभागिता रहेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य वन विभाग और कॉरपोरेट क्षेत्र के मध्य प्रभावी साझेदारी स्थापित कर वन और वन्य जीवों का संरक्षण प्रभावी बनाना है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में राजस्थान की पहली सफेद बाघ सफारी शुरू हो गई है। यहां सफेद बाघ, भीम और सुनहरी बाघिन सस्कंधी को टाइगर सफारी क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। रविवार को पर्यटकों ने सफारी के दौरान इन दोनों बाघों को नजदीक से देखा। इससे पहले ये बाघ केवल जैविक उद्यान क्षेत्र में रखे गए थे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो JRF सहायक प्रोफेसर पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। NTA ने अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा से संबंधित सभी विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने की सलाह दी है। नीट UG पुनर्परीक्षा कल कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेशों के 14 केंद्रों पर कुल 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नीट परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर में भी रविवार को नीट UG की पुनः परीक्षा कड़े सुरक्षा प्रबंधों और प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। राज्य में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। प्रदेश में सक्रिय हुए एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कल सर्वाधिक अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस तापमान फलोदी में दर्ज किया गया।

0: आज 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में 25 जून तक आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। इस बीच विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खुले में रखी तैयार फसलों और अनाज को सुरक्षित स्थानों पर ढक कर रखें ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, विशेषज्ञों की टीम अलर्ट मोड पर। राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन आज से सवाई माधोपुर में किया जा रहा है। और राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से 7 जिलों में 3 दिनों तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल ऐप पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए श्रोताओं, फिल्म संगीत में सुनते हैं पहला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, फिल्म है डंकी। गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: ये गीत आप सुनने जा रहे हैं फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया से।

0: तनिष्क बागची, रोमी और नीरज राजावत की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गीत आप सुन

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं फिल्म भारत से। गायक कलाकार हैं नीति मोहन एंड अक्सा सिंह। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत से सजाया है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बॉडीगार्ड फिल्म से। गीत को गाया है एश किंग और क्लिंटन सेरेंजो ने। बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्रा ने। संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 बजने को हैं। अब प्रस्तुत है हमारे महिला श्रोताओं के लिए कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत सुनने वाली सभी सखियों का उनकी अपनी रेडियो सखी विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सखियों कैसी हैं आप? हालचाल सब ठीक है ना? थोड़ा मौसम खुशनुमा हो गया है, बारिश की बूंदें जो पड़ गई है तो अच्छा लग रहा है ना? जिंदगी की भागदौड़ में घर गृहस्थी को संभालना वैसे कोई आसान काम भी नहीं होता, है ना? गृहस्थ जीवन में पति पत्नी आपस में मशवरा करके जिंदगी के फैसले लें तो आसानी रहती है। ऐसे में पति पत्नी दोनों कामकाजी हों तो भाई सामंजस्य बढ़ाने के लिए पारदर्शिता, घरेलू कार्यों का समान बंटवारा, करियर व निजी जीवन के बीच संतुलन बनाकर रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इससे क्या होता है कि थोड़ा रिश्ता भी मजबूत रहता है। आपसी बातचीत के जरिए घर की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से विभाजित करेंगे तो एक पर काम का बोझ नहीं पड़ेगा। पति पत्नी खुलकर अपनी परेशानी व सफलता के बारे में भी बात करें और घर और ऑफिस के जो कार्य हैं उन बातों को भी साझा करें तो एक दूसरे को समझने में भी आसानी रहती है और घर के काम और ऑफिस के कार्य संभालने में भी आसानी रहती है। कभी कभी सब कुछ करने के चलते ऐसा होता है ना कि हम किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते, उसके कारण हम फिर क्या होता है कि परेशान भी हो जाते हैं, तनावग्रस्त भी रहते हैं। ज्यादा अच्छा होगा सखियों कि हम समय के अनुसार जो कार्य संभव हो उसे ही करें, फिर अगर बाद में समय बचे तो फिर जो बचे हुए कार्य हैं उन्हें भी हम प्रारंभ कर सकते हैं। सभी कार्यों को हम प्राथमिकता के क्रम में बांटें तो आसानी रहेगी कि ऐसे कौन से काम हैं जो ज्यादा जरूरी हैं उन्हें पहले कर लें और जिन कामों को टाला जा सकता है, अर्थात टालने से मतलब ऐसे नहीं कि साल दो साल टाल देना है, ऐसे कि आज जो कार्य जरूरी नहीं है उसे कल कर लें, कल जो कार्य जरूरी नहीं है उसे परसों कर लें। वही 24 घंटे हैं सखियों और घर गृहस्थी के काम भी वही हैं। फिर जो कामकाजी पति पत्नी हैं उन पर तो दोहरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है घर व ऑफिस से संबंधित, तो अपनी परेशानी अपने जीवन साथी से साझा करें, उसे बताएं तभी तो वो समझेगा। परेशान होने से अच्छा है जीवन साथी से अपनी परेशानी सामंजस्य बढ़ाएगी भी और यकीनन परेशानियां कम भी होंगी। कभी कभी जब एक को आवश्यक कार्य हो तो दूसरे को उसकी जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। ये कार्य कहने का नहीं है, समझने का है। इसी तरह गृहस्थी की गाड़ी बिना रुकावट आगे बढ़ेगी और जब आगे बढ़ेगी तो भाई अच्छा तो लगेगा ही। एक बात और, जब भी आवश्यक कार्य हो या कोई मीटिंग वगैरह हो तो अपने साथी को एक दिन पहले बता दें ताकि वो भी आपकी मदद करने को तैयार रहे सखियों। और कहते हैं ना कि शादी सिर्फ दो जिंदगियों का साथ नहीं होता, जी हाँ दो जिंदगियों का नहीं दो परिवारों का साथ होता है, लेकिन जब दोनों जीवन साथी कामकाजी हों तो सफर थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। पर अगर दोनों आपस में सामंजस्य बढ़ाने का प्रयास करें तो कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य आसान हो जाता है।

और चुनौती चुनौती रहती ही नहीं। परेशानी जो रिश्ते के बीच आ सकती है वो परेशानी आती ही नहीं और रिश्ता कमजोर भी नहीं होता। कामकाजी जीवन साथी को एक दूसरे की प्रोफेशनल जो जिंदगी है उसको भी समझना बहुत आवश्यक होता है ना सखियों। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक साथी पर ज्यादा काम का दबाव हो और जिससे वह थका हुआ व तनावग्रस्त महसूस कर रहा हो, तो दूसरे साथी को उसकी स्थिति को समझना चाहिए। समझना ही होगा भाई, समझेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। और ये जो आपसी समझ है ना, यही तो रिश्ते को मजबूत करती है। और जब आपका रिश्ता मजबूत होगा तो आप काम आसानी से कर पाएंगे, और जब काम आसानी से हो जाएगा तो सामंजस्य आपका बढ़ेगा और सच में जीवन आसान हो जाएगा। कंधे पर अपनेपन के साथ रखा गया हाथ बहुत ही मजबूती के साथ रिश्ते को प्रगाढ़ बनाता है। साथी का हाथ बहुत बड़ा संभल होता है, बहुत बड़ा सहारा होता है। चाहे शब्द ना हो कुछ कहने को, पर वो साथ बहुत मायने रखता है और फिर दिल यही गुनगुनाता है।

0: जी हाँ सखियों, आपका साथ है तो हमारा भी ये सफर बहुत सुहाना है। आइए महिला जगत कार्यक्रम में अगली कड़ी में हम सुनते हैं वार्ता। वार्ता का विषय है डिजिटल युग में महिलाओं की भागीदारी, आत्मनिर्भरता, चुनौतियां और नए अवसर। जानकारी दे रही हैं श्रीमती गार्गी मेहता।
1: नमस्कार। डिजिटल युग में महिलाएं, आत्मनिर्भरता, चुनौतियां और नए अवसर। प्यारी बहनों, आज का यह कार्यक्रम किसी और के बारे में नहीं है, बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में है। यह आपकी ताकत, आपके सपनों और आपके बदलते संसार की कहानी है। बहनों, जरा सोचिए, कुछ सालों पहले तक हमारी जिंदगी कैसी थी? हमारे सपने, हमारा हुनर अक्सर घर की चार दीवारी, चूल्हे चौके या फिर दफ्तर की थका देने वाली लंबी यात्राओं के बीच में कहीं दबकर रह जाते थे। आज वक्त बदल चुका है। आज आपके हाथ में जो यह स्मार्टफोन है और उसमें जो इंटरनेट का डेटा दौड़ रहा है, यह कोई मामूली खिलौना नहीं है। यह आपकी आजादी का, आपके आत्मनिर्भर होने का वो जादुई जरिया बन चुका है, जिसने पूरी दुनिया को आपकी उंगलियों पर लाकर खड़ा कर दिया है। चाहे आप दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में बैठकर काम कर रही हों या राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से गांव में घूंघट के पीछे बैठी हों, इस डिजिटल क्रांति ने आप सभी के लिए तरक्की के आसमान को बराबर खोल दिया है। सच कहूँ तो डिजिटल तकनीक ने आपके लिए समय और दूरी की सारी पाबंदियों को खत्म कर दिया है। बहनों, एक समय था जब आप जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों को ये चुनना पड़ता था कि या तो घर संभालो या अपना करियर, लेकिन आज वर्क फ्रॉम होम ने आपकी इस मजबूरी को ताकत में बदल दिया है। आज आप घर के एक कोने में अपना छोटा सा ऑफिस बनाकर सॉफ्टवेयर कोडिंग कर रही हैं, विदेशी कंपनियों के प्रोजेक्ट संभाल रही हैं और बड़ी बड़ी मीटिंग्स खुद लीड कर रही हैं। और हाँ, डिजिटल वित्तीय साक्षरता ने तो आपको सही मायने में अपने जीवन की बॉस बना दिया है। याद कीजिए, पहले बैंक के छोटे छोटे कामों के लिए या बचत को कहाँ निवेश करना है, इसके लिए आपको घर के पुरुषों का मुंह ताकना पड़ता था, लेकिन आज आप खुद अपने फोन में मौजूद एप्स के जरिए शेयर मार्केट को समझ रही हैं, म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रही हैं और अपनी मेहनत की कमाई का हिसाब खुद रख रही हैं। इतना ही नहीं, आप में से कई बहनों ने तो डिजिटल उद्यमिता की एक नई मिसाल कायम की है। आपने बिना किसी दुकान का भारी भरकम किराया दिए सिर्फ एक इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज बनाकर अपना शानदार बिजनेस शुरू कर दिया। कोई हाथ से बनी हुई ज्वेलरी बेच रही हैं, कोई खुद के डिजाइन किए कपड़े दुनिया तक पहुंचा रही हैं।

तो कोई होम बेक्ड केक सीधे ग्राहक के घरों तक डिलीवर कर रही हैं। ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई ने आपके इस सफ़र को इतना आसान बना दिया है कि आज आप घर और काम दोनों को अपनी शर्तों पर संभाल रही हैं। आप पर हमें गर्व है। और अब मैं बात करना चाहती हूँ हमारी उन ग्रामीण बहनों से जो हमारे भारत के गांवों को अपनी मेहनत से सींच रही हैं। मेरी प्यारी बहनों, कई लोग सोचते हैं कि गांव की महिलाएं तकनीक से दूर हैं, लेकिन आपने अपनी बुद्धिमानी से दुनिया की इस सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। यूट्यूब को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी यूनिवर्सिटी बना लिया। आज आप इंटरनेट पर आधुनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके सीख रही हैं, पशुपालन की नई तकनीकों को देख रही हैं और मौसम का हाल देखकर अपनी फसलों का खुद प्रबंधन कर रही हैं। आप में से जो बहनें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। सरकार की पीएम दिशा जैसी योजनाओं से डिजिटल साक्षर होकर आज आपने अपने हाथ के बने पापड़, अचार, टोकरियां और खूबसूरत साड़ियों की तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर रही हैं और उन्हें सीधे शहरों के बाजारों में बेच रही हैं। बिचौलियों का खेल आपने खत्म कर दिया है और आपकी मेहनत का पूरा पैसा सीधा आपके अपने बैंक खाते में आ रहा है। और हाँ, मैंने यूट्यूब पर आप जैसी कई देसी ब्लॉगर्स को देखा है। आप अपनी सादगी, चूल्हे पर खाना बनाने के तरीके, गाय भैंस का दूध निकालने और खेतों की हरियाली को इतनी खूबसूरती से वीडियो में दिखाती हैं कि करोड़ों लोग आपके मुरीद हो चुके हैं। गांव में अब आप डिजिटल सखी और बैंक मित्र बनकर घर घर जाकर बुजुर्गों की पेंशन निकाल रही हैं। यह आपकी आत्मनिर्भरता की एक नई और चमकती हुई तस्वीर है। लेकिन आपकी सच्ची सहेली होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं आपको इस डिजिटल दुनिया के खतरों और चुनौतियों के प्रति भी सचेत करूं। बहनों, सबसे पहली चुनौती जिसका आप सामना कर रही हैं, वह है डिजिटल जेंडर गैप, यानी समाज का अविश्वास। हमें इस अविश्वास की दीवार को अपनी समझदारी से तोड़ना होगा। बहनों, दूसरी और सबसे बड़ी चुनौती है साइबर क्राइम और आपकी सुरक्षा। चाहे आप शहर में रह रही हो या गांव में, साइबर अपराधी आप जैसी मासूम और मेहनती महिलाओं को अपना निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल्स बनाकर बदनाम करना, आपकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ मॉर्फिंग करना, भद्दे कमेंट्स करना या फिर बैंक फ्रॉड के जरिए आपकी जमा पूंजी उड़ा लेना, ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। कई बार इस डर की वजह से आप खुद कदम पीछे खींच लेती हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, सतर्क रहना है। इसके अलावा शहर की जो बहनें वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, मैं आपका दर्द समझती हूँ। आप पर रसोई, बच्चों की जिम्मेदारी और दफ्तर के काम का ऐसा दोहरा बोझ आ गया है कि आपको खुद के लिए सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। आप मानसिक रूप से थक जाती हैं। इस चुनौती से भी हमें मिलकर पार पाना है। तो मेरी साहसी बहनों, क्या हम इन चुनौतियों से डरकर अपने कदम पीछे खींच लें? क्या हम फिर से खुद को उसी पुरानी चारदीवारी में बंद कर लें? बिल्कुल नहीं। चुनौतियों का सामना डरकर नहीं, बल्कि समझदारी और जागरूकता से किया जाता है। आपको बस कुछ आसान से नियम अपनाने हैं। सबसे पहले डिजिटल सुरक्षा को अपना हथियार बनाइए। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को हमेशा मजबूत रखिए। अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट कभी स्वीकार मत कीजिए। अपना बैंक ओटीपी, पिन या पासवर्ड किसी को भी मत बताइए, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना बनकर फोन करे। और हाँ, अगर आपको कोई ऑनलाइन परेशान करता है या डराता है तो चुप रहकर सहना बंद कीजिए। सरकार की हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर तुरंत शिकायत दर्ज कराइए। आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। और मैं आपके परिवारों से भी कहना चाहती हूँ, अपनी बेटियों और बहुओं पर भरोसा कीजिए।

उन्हें तकनीक सिखाना, उन्हें बिगाड़ना नहीं बल्कि उन्हें सुरक्षित और मजबूत बनाना है। मेरी प्यारी बहनों, जब हम आत्मनिर्भरता और तरक्की की बात करते हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि हमारी इस यात्रा में हमारा हाथ थामने के लिए कौन कौन से नए अवसर और सरकारी प्रयास हमारे साथ खड़े हैं। आज सरकार भी यह भली भांति समझती है कि जब तक देश की आधी आबादी डिजिटल रूप से सशक्त नहीं होगी

0: आज सरकार भी यह भली भांति समझती है कि जब तक देश की आधी आबादी डिजिटल रूप से सशक्त नहीं होगी, तब तक डिजिटल भारत का सपना अधूरा है। इसलिए विशेष रूप से आप जैसी कर्मठ महिलाओं के लिए कई शानदार योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनकी जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं लखपति दीदी योजना की, जिसने हमारे ग्रामीण इलाकों में एक नई क्रांति ला दी है। इस योजना का लक्ष्य सिर्फ आपको छोटा मोटा काम सिखाना नहीं है, बल्कि आपको सालाना कम से कम 1,00,000 रुपए की कमाई करने के काबिल बनाना है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों की बहनों को न केवल वित्तीय मदद दी जा रही है, बल्कि उन्हें ड्रोन चलाने, एलईडी बल्ब बनाने और प्लबिंग जैसे आधुनिक तकनीकी कामों की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जरा सोचिए, जो बहनें कभी खेतों में मजदूरी करती थीं, आज वे आसमान में ड्रोन उड़ाकर खेतों में खाद और कीटनाशकों का छिड़काव कर रही हैं। यह तकनीकी बदलाव नहीं तो और क्या है। इसके साथ ही व्यापार की दुनिया में कदम रखने वाली बहनों के लिए मुद्रा योजना एक वरदान साबित हुई है। अक्सर महिलाएं कहती थीं कि दीदी, हमारे पास हुनर तो है, लेकिन नया बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे कहां से लाएं? बैंक वाले बिना गारंटी के लोन नहीं देते। लेकिन मुद्रा योजना के तहत आपको बिना किसी गारंटी के बेहद आसान शर्तों पर लोन मिल रहा है। चाहे आपको सिलाई की मशीनें खरीदनी हो, ब्यूटी पार्लर का सामान लेना हो, या अपने डिजिटल बिजनेस के लिए अच्छा लैपटॉप और इंटरनेट सेटअप लगाना हो, यह योजना आपकी हर जरूरत को पूरा कर रही है। और जो बहनें बड़े पैमाने पर अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहती हैं, उनके लिए सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और महिला ई हाट जैसे डिजिटल मंच तैयार किए हैं। यहाँ आपको किसी बड़े डीलर या एजेंट की खुशामद करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सरकार के अलग अलग विभागों को अपना सामान बेच सकती हैं। आपके हाथ की बनी हुई टोकरी, आपके हाथ का बना शुद्ध अचार अब सीधे बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों और कॉरपोरेट हाउसेस तक पहुंच रहा है। ऑनलाइन व्यापार ने आपके हुनर को लोकल से ग्लोबल बना दिया है। इसलिए इन अवसरों को पहचानिए। अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल सिर्फ मैसेज भेजने के लिए नहीं, बल्कि इन सरकारी पोर्टल्स पर जाकर खुद को रजिस्टर करने के लिए कीजिए। जब सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, तो आपको भी अपनी झिझक छोड़कर आगे आना होगा। बहनों, इस डिजिटल यात्रा को मुकम्मल बनाने के लिए मैं आपको एक और महत्वपूर्ण मंत्र देना चाहती हूँ, और वह है सतत सीखना और नेटवर्क बनाना। डिजिटल दुनिया हर रोज बदल रही है। आज जो तकनीक नई है, वह कल पुरानी हो जाएगी। इसलिए खुद को हमेशा अपडेट रखिए। इंटरनेट पर आज कई ऐसे फ्री कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और बेसिक कोडिंग, जो आपकी योग्यता में 4 चांद लगा सकते हैं। स्वयं और गूगल डिजिटल अनलॉक्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाइए और घर बैठे नई स्किल्स सीखिए। इसके साथ ही अपनी जैसी दूसरी डिजिटल बहनों के साथ जुड़िए। महिला उद्यमियों के ऑनलाइन कम्युनिटीज और सोशल मीडिया ग्रुप्स का हिस्सा बनिए। जब आप एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो न सिर्फ विचारों का आदान प्रदान होता है, बल्कि एक दूसरे का हौसला भी बढ़ता है। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी कि इतिहास गवाह है। जब जब महिलाओं को अवसर मिला है, उन्होंने इतिहास को बदला है। आज आपके पास वह अवसर डिजिटल स्क्रीन के रूप में आपके हाथ में है। अपनी झिझक को पीछे छोड़िए, अपने डर को अपनी ताकत बनाइए और इस डिजिटल युग की कमान अपने हाथों में ले लीजिए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें, जहां हर महिला डिजिटल रूप से साक्षर, सुरक्षित और पूरी तरह आत्मनिर्भर हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस देश की नई तकदीर लिखेंगी। आपकी इस खूबसूरत और साहसी यात्रा के लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएं। नारी शक्ति का संकल्प महान डिजिटल स्क्रीन से छुएगी आसमान। धन्यवाद
1: सखियों। अभी हमने

सुनी वार्ता डिजिटल युग में महिलाएं आत्मनिर्भरता चुनौतियां और नए अवसर। वार्ताकार थी श्रीमती गार्गी मेहता। गार्गी जी ने हमें बताया कि हमें मोबाइल का उपयोग सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं करना चाहिए, सिर्फ मैसेज भेजने के लिए नहीं करना चाहिए, इसका उपयोग हमें करना चाहिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ही। तो एक ऐसी ही सरकारी योजना हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसकी जानकारी सखियों पंखुड़ी पोर्टल महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एक एकीकृत सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, गैर सरकारी संगठनों, व्यक्तियों और सरकारी एजेंसियों को एक मंच पर लाकर महिला व बाल कल्याण में पारदर्शी योगदान को सुविधाजनक बनाना। यह पोर्टल पोषण, स्वास्थ्य, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण जैसी योजनाओं को कवर करता है। प्यारी सखियों, जैसे ही आप इस पोर्टल पर जाएंगे तो आसानी से अपनी संस्था व संगठन के बारे में आवश्यक जानकारी भरकर पंजीकृत हो सकते हैं। संगठन का नाम, ईमेल, पंजीकरण संख्या, मामूली सी आवश्यक जानकारी मांगी जाती है और योजना का लाभ आप उठा सकती हैं। यह योजना आपके काम की नहीं है तो भी यह योजना आप उन तक पहुंचाइए जिसको इसकी आवश्यकता है। यह पंखुड़ी योजना मुख्य रूप से देश भर में सभी के लिए लागू है, महिला व बच्चों के लिए। जैसे हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाई, आप ये जानकारी उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसको आवश्यकता है। एक एक कड़ी जुड़कर ही योजना सफल हो पाएगी। तो सखियों, फिर से चलते हैं गीत संगीत की ओर।

मधुर संगीत के साथ ही अब कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है और आज के कार्यक्रम में निर्देशन था तेजराम मीणा का, संयोजन था हिमांशु नामा का और प्रस्तुति सहयोग आपकी अपनी रेडियो सखी विभा का। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार।

FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz और न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: श्रोताओं नमस्कार, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं, जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान, और उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं, जो एक और बहुत ही खास शख्सियत को याद करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। कार्यक्रम का नाम ही उजाले उनकी यादों के है, तो आज का कार्यक्रम है उजाले सदाशिव अमरापुरकर की यादों के, और ये उजाले बांटने के लिए मौजूद हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। बहुत बहुत स्वागत रीमा जी।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
1: पिताजी की यादों के उजाले बांटने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में, विविध भारती के स्टूडियोज में आते हुए जो पहली फीलिंग है वो क्या है?
2: आकाशवाणी या विविध भारती के स्टूडियोज में मैं जब भी आती हूँ तो थोड़ा मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली का आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, इससे बहुत ही करीबी संबंध रहा है। तो मेरी माँ भी रेडियो आर्टिस्ट थी, अलग अलग ड्रामास, एड फिल्म्स में उन्होंने काम किया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए। मैं खुद बचपन में मराठी दो शोज कर चुकी हूँ जिसमें मैं वॉइस आर्टिस्ट थी, और सबसे जरूरी बात कि 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है जो उन्होंने आकाशवाणी के साथ की है,
1: परभणी में।
2: तो वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था, और वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके, तो ये टिके ही कहना सही होगा, बिकॉज उनकी वो पर्सनालिटी नहीं थी कि वो जॉब करे, क्योंकि शादी हो चुकी थी, 2 बच्चियां थी, तो इसलिए पिताजी को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं कमा रहा हूँ, उन्होंने वो जॉब की थी।
1: ये सोचकर कितना मजेदार लगता है कि वो मराठी में बोलते होंगे आकाशवाणी का ये परभणी केंद्र है।
2: और उनकी आवाज तो वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ थी, आज भी है, मतलब आज भी जब भी हम आवाज सुनते हैं तो फैमिली मेंबर्स की तो हमारी आंखें भर आती है। उस वक्त तो उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी उस आवाज की, तो उनके बहुत सारे फैंस हो गए थे, और फिर ऐसे हुआ कि एक पॉइंट पे मम्मी को ऐसे लगने लगा कि अरे अभी बहुत ही ज्यादा फैंस हो रहे हैं इनके, विशेषतः लड़कियां, तो ये अगर छोड़ रहे हैं जॉब तो ठीक ही बात है।

0: वाह वाह वाह, ये रेडियो में आना उनका कैसे हुआ था, इसकी कोई कहानी हो तो वो।
1: हाँ, तो उसमें बात ऐसी थी कि जैसा मैंने कहा कि पापा बिल्कुल ही पूरी तरह से वो थिएटर, रंगमंच, नाटक, इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। उनके दिमाग में 2400 घंटे वही चलता था। और माँ की और उनकी जो मुलाकात हुई थी वो भी नाटक के दौरान ही हुई थी। मतलब मजे वाली बात यह है कि वो बचपन से, जैसे हम लोग कहते हैं किंडरगार्टन से, वैसे बचपन से वो एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़े। लेकिन कॉलेज में, क्योंकि माँ बहुत होशियार स्कॉलर, उस जमाने में जो कंसेप्ट थी स्कॉलर की, वैसी स्कॉलर थी, तो इसलिए उसने साइंस लिया हुआ था और पापा ने आर्ट्स लिया था। तो कॉलेज में भी वो एक ही कॉलेज में थे। तो जब थिएटर करना शुरू किया तब उन्हें लगा नहीं नहीं नहीं, ये सुनंदा ने करना चाहिए हमारे साथ काम, तो इसलिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी। और फिर वो थिएटर में मम्मी जो घुस गई तो फिर साइंस वायंस सब पीछे रह गया, थिएटर ही चलता रहा।

0: लकीली पापा के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अहमदनगर में, जो आज अहिल्या नगर कहा जाता है जिसे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा तू पहले नौकरी कर, पैसे कमा, फिर तेरी शादी करता हूँ। उन्हें पता चला कि ये सुनंदा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनकी शादी करा देना सबसे अच्छी बात। आई थिंक पापा 23-24 साल के थे और मम्मी 23 साल की थी, उन दोनों में 6 महीने का ही अंतर है उम्र में। तो तब उनकी शादी हुई, 73 में शादी हुई और 74 में मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ। मम्मी उस वक्त LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है वहां पर जॉब करती थी, तो मम्मी ने पापा को ये सहूलियत दे रखी थी कि
1: अपने मन का जियो,
0: हाँ तुम जियो, मैं संभाल लूंगी, मैं कमा रही हूँ अपने बच्चों को, हमें कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, दादाजी और दादी और चाचा जी ये सब लोग थे, तो फैमिली में वैसे पैसे की उनका ये कहना नहीं था कि तुम घर में पैसे दो, पर उनका ये कहना था कि तुम खुद के लिए कुछ कमाओ। तो और मम्मी वो कर रही थी, तो इसलिए दादाजी का भी था कि चलो ठीक है, अभी अगर तुम्हारी बीवी कमा रही है तो तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो पहली बेटी हुई 74 में, 76 फरवरी में दूसरी बेटी हुई। तब फिर मम्मी को ऐसे लगने लगा, अरे अभी अपनी 2 बच्चियां हो गई, अभी भी ये कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो रीजनल न्यूज़पेपर्स में उस समय एड आती थी, हाँ। तो फिर वो मम्मी ने वो एड देखी, और पापा का ऐसा था वो पूना मुंबई थिएटर के चक्कर में चक्कर काट रहे थे, अहमदनगर पूना मुंबई इस तरह से उनका चल रहा था। तो उन्होंने मम्मी ने वो एड देखी न्यूज़पेपर में, और मम्मी ने बिना पापा को बताए वहां पे अप्लाई कर दिया।
1: वेरी गुड,
0: हाँ। और फिर जब ऑडिशन थी तब मम्मी ने उन्हें बताया ऐसी ऑडिशन है, आपको जाना है और करके आना है। वो समय ऐसा था कि कमाने वाली माँ थी और घर पे दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई मेरी फैमिली बढ़ रही है, मैं भी कमा रहा हूँ उस तरह से। सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ और ऑडिशन देता हूँ। और ऑफकोर्स उनकी आवाज ऐसी थी कि सिलेक्ट होना ही होना था। तो वो सिलेक्ट हो गए और उन्होंने जॉब करी, 2 महीना उन्होंने जॉब करी वहां पर। और 1.5 महीने बाद उन्होंने मम्मी को खत लिखा कि मैं अगर ये करता रहा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा जिंदगी में। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया, पर उन्होंने वो जॉब इस तरह से करी थी, तो आकाशवाणी ने उन्हें काफी हाथ दिया था उस वक्त जब उन्हें वो जरूरत थी पुश की, एक जो साइकोलॉजिकल पुश हमें लगता है मानसिक रूप से कि हमें अभी मुझे कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं मैं, उस वक्त जो एक अचीवमेंट की फीलिंग है वो आकाशवाणी ने दी हुई है। और मेरे ख्याल से हमें भी, विशेषतः मेरे बारे में मैं कहूंगी कि जब आप ऐसे घर में पैदा होते हो और बड़े होते हो कि जहां पर सुपर अचीवर्स है आपके आजू बाजू सारे, तब एक होता है कि मुझमें क्या है, शायद मुझमें कुछ नहीं है, ऐसी एक फीलिंग जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है उसमें आ सकती है, आने की आशंका होती है। तब मुझे आकाशवाणी ने हाथ दिया और मुझे ये समझ में आया उस वक्त कि नहीं, मेरे पास मेरी आवाज है और मैं बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कंडक्ट कर सकती हूँ। आई थिंक आकाशवाणी हमारे परिवार के लिए वैसा एक जरिया रहा है कि जिन्होंने हमें, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं था या जब हम एकदम लो जिसे फेज कहते हैं वैसे इसमें रहे हैं, उस वक्त हाथ दिया है, जिसे मराठी में हम उभारी कहते हैं, उभारी दी है,
1: उबारा है।
0: हाँ, तो आकाशवाणी से हमारा रिलेशनशिप, हमारी फैमिली का इस तरह से।
1: कितनी सुनहरी यादें आपने शेयर की सदाशिव जी के आकाशवाणी से जुड़ने की। यहाँ सुनंदा जी का जिक्र आता है और नाटकों का भी जिक्र आता है कि जहाँ वो उनके रास्ते एक साथ हुए,
0: राइट।
1: कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ ये एहसास हुआ कि उन्हें अब सुनंदा जी के साथ जीवन बिताना है, वो कोई एक मोमेंट था जहाँ ये हुआ?
0: पापा उनके नाम ही की तरह सदाशिव भोला साम जिसे कहते हैं, वैसी पर्सनालिटी के थे, स्पेशली जब वो कॉलेज में थे तब। तो उनके दिमाग में एक ही पागलपन चढ़ा हुआ था, एक ही भूत सवार था, वो था नाटक, और उन्हें वही करना था, ठीक है। नाटक करते वक्त घंटों तक आप साथ में रिहर्सल्स करते हैं, सब करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, तो जो दोस्ती है वो दोस्ती से थोड़ी ज्यादा है, इतना उन्हें शायद समझ में आया होगा। पर उसके ऊपर कुछ करे, उसके ऊपर कुछ एक्ट करे, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं थी।
1: पहला कदम उनकी तरफ से नहीं आना था।
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे याद है आज

0: मतलब ये हमारे घर में हमारे बहुत ही आर्ग्यूमेंट का विषय हुआ करता था जब पापा थे तब, कि पहले प्रपोज किसने किया। लेकिन जब अभी मम्मी ने किताब लिखी है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मम्मी ने ही उन्हें एक चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग्स है और क्या आपको भी यही लगता है, और उन्हें वो चिट्ठी दी थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो अपने दोस्तों के सामने मत खोलना ये चिट्ठी, घर जाके अकेले में खोलना, बिकॉज पापा ऐसे थे वो हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे, तो दोस्तों के सामने खोलेंगे जोर से पढ़ेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना डर मम्मी को लग रहा था। तो इस तरह से तो वो पॉइंट था जब मम्मी, क्योंकि मम्मी के घर पे उनके पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो चुकी थी जब वो 10-11 साल की थी, तो उस वजह से उनके घर पे वो और उनकी माँ इतने ही थे, उनकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। तो अभी इसके लिए भी लड़का देखो ये करो, जब वो शुरू हुआ उनके घर पे जब वो ग्रेजुएशन के आसपास थी, तब उन्होंने कहा अभी ये मेरा ये जो पगला आदमी है उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम में जो है वो प्यार है, उसे ये समझाना अभी जरूरी हो गया है। और फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी, तब फिर उनका आगे जाके इस तरह से हुआ कि फिर मम्मी ने ही थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उस वक्त मेरे दादाजी जो थे वो बहुत कर्मठ स्वभाव के थे, तो किसी लड़की का घर पे आना, लड़कियों से दोस्ती, ये सब इम्पॉसिबल था उस समय और अहमदनगर जैसे छोटे से शहर में। पर लकीली मम्मी के पिताजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, तो जब मम्मी घर जाने लगी दादी से, फिर पापा की बुआ भी उन्हीं के साथ रहती थी, उनसे इस तरह से जब बातें होना शुरू हुई, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो मामला है। और फिर उन्होंने वन फाइन डे मम्मी को बुलाया घर पे और कहा कि देखो तुम्हें ये सब दिख रहा होगा कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पर ये सब मैं धर्मादाय कर दूंगा, बेटों को कुछ नहीं दूंगा मैं। हाँ, इतना क्लियर था कि उसने कहा ठीक है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं चला लूंगी घर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर इन दोनों के थॉट्स थे। और जैसा मैंने कहा कि पापा को ये शब्दों में पेश करना कि जो हमें हुआ है वो प्यार है, ये पॉसिबल नहीं था जो मम्मी कर पाई, लेकिन जिस वक्त वो कमिटमेंट हो गई उस वक्त वो कंप्लीट कमिटमेंट हुई।
1: वाह वाह।
0: तो वो हालांकि वो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा होगा, पर वो उनके एंड तक, मतलब ये उन्हें प्यार हुआ जब वो 21 साल के थे, 64 के होने तक वो प्यार बिल्कुल वैसा ही रहा, और ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है। और उन दोनों ने वही सीख हमें भी दी है कि अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, फिर वो अपने काम की तरफ हो या इंसानों की तरफ हो।
1: क्या तो, प्यारी बात है। यहाँ एक बहुत क्यूट बात सामने आई है और वो है एक प्रेम कहानी जो चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ती है। हम जिस समय और समाज में हैं वहां ये यकीन करना अब जरा मुश्किल है कि चिट्ठियों के जरिए भी प्यार का इजहार हो सकता है और वो चिट्ठी बचाकर जीवन भर रखी जा सकती है। मुझे लगता है ये जगह है गाने की, और वो गाना बहुत ही मुफीद है जो चिट्ठी के जरिए प्यार के इजहार की बात करता है। फिल्म है संगम।

0: यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो पीछे छूट गई है उसका सिरा पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मम्मी की एक किताब है पिताजी के नाम पर, और आपने कहा कि उसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने सबसे पहले इजहार किया, उस किताब का नाम बताइए और वो नाम क्यों रखा गया है इसकी कहानी बताइए।
1: हाँ, ओके। तो वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है खुलभर दुधाची कहानी। खुलभर माने छोटी सी कटोरी में जितना दूध बैठता है उसको खुलभर कहते हैं। मतलब उतना सा, खुलभर दुधाची कहानी, सो उतने से दूध की ये कहानी।
0: हाँ, सवाल आता है कि ये आखिर क्या है,
1: क्या है, राइट। सो श्रावण महीना जब होता था तो अहमदनगर में या आज भी छोटे गांव में होता होगा, हर मंगलवार को और शुक्रवार को उपवास होता है, पूजा होती है, कथा कथन होता है। तो उस वक्त जो फोक टेल्स जिसे हम कहते हैं वैसी कथाएं कही जाती थी। तो उस समय सुनी हुई ये कहानी है। ये कहानी है कि एक छोटा सा गांव है, राज्य है, और वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है। और वहां पर वो राजा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और इसलिए वो पंडितों को बुलाता है और कहता है अब मैं क्या करूं। वो पंडित उसे कहते हैं कि जो ये महादेव का मंदिर है आपके गांव में, तो उसका जो गर्भगृह है उसे पूरी तरह से दूध से आप भर दो, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपको बारिश हो जाएगी। तो राजा फरमान निकालते हैं कि हर एक के घर में कल जितना भी दूध होगा, जितना भी जिसके पास होगा वो सब लाके गर्भगृह में अर्पण कर दे। तो ये सब होता है तो फिर भी वो गर्भगृह भरता ही नहीं है, इतना दूध आता है, लंबी लंबी लाइनों में लोग आके दूध डालते हैं वहां, फिर भी नहीं होता है। और जो सिपाही होते हैं वो घर घर जाकर आपके पास और दूध है, और दूध है, और दूध है, ऐसा करते हैं। तब वो एक घर में जाते हैं, वहां पे एक बुढ़िया होती है, तो वो कहते हैं आप गए थे दूध डालने, बोले नहीं नहीं मैं अभी जा

0: रही हूँ तो उसने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में दूध लिया हुआ है, और उसने क्या किया है कि उसके घर पे जो उसके बच्चे बच्चियाँ पोते सब लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ होने के बाद जितना दूध बचा वो लिया और वो गई और महादेव जी के ऊपर उसने चढ़ा दिया, और जिस क्षण उसने वो चढ़ाया वो गर्भगृह पूरा दूध से भर गया।
1: वाह,
0: तो कहानी का मतलब ये है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप पूरा कीजिए, और फिर जो बचा कुचा है वो आप भगवान को दीजिए, भगवान को चलता है।
1: वाह
0: ओके,
1: वाह वाह।
0: सो बेसिकली आप अपनी जो पूरी जिंदगी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारियां है उनके प्रति आप अर्पण कीजिए, इस तरह की वो कहानी है। और थोड़ी बहुत मम्मी की जो कहानी है, जीवन की कथा अगर हम सोचे तो वो उसी तरह से गई है। वो भी एक गजब की अदाकारा है, बहुत अच्छा गाती है लिखती है, बट जब उनकी शादी हुई और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा सदाशिव है, ये जो मेरा महादेव है, इसे जो करना है इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसने ये करना चाहिए, तब उन्होंने अपना खुद का सब पीछे छोड़कर एक बहुत ही कर्मठ घर में जाकर बच्चियों को पाला, और दादा दादी मतलब उनके सास ससुर, बुआ पापा की बुआ थी जो सन्यासिन थी, उनका सब कुछ करते हुए, ये सब कर्तव्य करते करते करते फिर अल्टीमेटली जब उनकी बेटी की शादी हुई आते ये जो 53, फिर उन्होंने अपना लिखाई का काम और ये सब शुरू किया, और अभी ये है कि पिछले 20 सालों में उनकी लगभग 30 किताबें आ चुकी हैं। तो इसलिए वो हमें लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी उस तरह से रही है। और ऑफ कोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसा ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया, पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था, जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं थोड़ा सा था, पर वो था, और उस वजह से आई थिंक जो आज भी हमारा घर फूला फला है और इतना अच्छा है वो उस विश्वास की वजह से है।
1: बहुत ही सुंदर घटना है ये जो किताब के नाम की घटना है, और जिस तरह से आपने उसको विस्तार दिया है ये बहुत ही मार्मिक है। अब चूंकि अमूमन जो रवायती इंटरव्यूज होते हैं वो ये कि बचपन से शुरू करेंगे, लेकिन हम कहीं से शुरू हुए तो वो बचपन की बातें हम आगे कहीं जाके करेंगे, क्योंकि बातचीत के अंदर घटनाएं तो आगे निकल कर आएंगी। चूंकि बातें सुनंदा जी और सदाशिव जी के रिश्ते की चल रही हैं और कैसे उनकी डोर आपस में जुड़ती है चल रही, पहले उन नाटकों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस दौरान साथ में किए थे, उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हो तो वो बताएं।
0: राइट, सो उनसे जुड़ी तो काफी कहानियां हैं जो हम सुनते सुनते बचपन से आ रहे हैं
1: जी।
0: पर उन्होंने एक जो प्ले उन्होंने किया था वो था बंडू बेबी अणी बुरखा। तो उस वक्त इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशंस होती थी, ये जो प्ले था इसमें बंडू और बेबी तो पति पत्नी का कैरेक्टर था, ये इन दोनों ने किया था, और उसी नाटक के दौरान आई थिंक दे रियलाइज्ड कि दे आर इन लव विद ईच अदर। ये एक नाटक के बहुत सारे किस्से हैं, मतलब मम्मी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कॉलर इसकी थी, तो जब भी उनकी एग्जाम आती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी प्ले के लिए, प्ले तो करना था, अभी कॉम्पिटिशन है तो जाना तो पड़ेगा, तो उस वक्त मम्मी तो नहीं है, मम्मी ने कहा मैं तो नहीं, मेरी एग्जाम है अभी, मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, आपको जो करना है करो, तो उन्होंने किसी और को वहां पर कास्ट किया। और फिर मम्मी ने कहा अगर ये लड़की कास्टिंग है तो आप नहीं करोगे ये रोल तो इसलिए फिर पापा का रोल भी किसी और ने वहां पर किया।
1: बहुत सही,
0: ठीक है,
1: बहुत ही सही।
0: तो और वो जो था वो उसका शो था संगमनेर नाम के एक छोटे से गांव में, अहमदनगर के पास ही है, वहां पर उसका शो था, और उस समय लाइट चली गई तो माइक नहीं थे तो फिर आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मम्मी हालांकि नाटक में नहीं थी पर क्योंकि वो यूथ फेस्टिवल जैसा माहौल था तो और किसी कंपटीशन में वो थी तो इसलिए वो वहां गई हुई थी। तो फिर वहां पर और वो जो नई लड़की और लड़का था उनके आवाज पहुंच ही नहीं रहे थे ऑडियंस तक। तो फिर इन दोनों ने वो डायलॉग्स पीछे से जोर से वो बोले और उन लोगों ने लिप सिंक किए स्टेज के ऊपर।
1: वाह वाह, क्या प्रयोग।
0: इस तरह से वो हुआ। तो ये जो एक किस्सा है ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कभी भी मम्मी ने पापा से ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ प्ले के लिए जो भी डेट चाहिए जब भी चाहिए वो अवेलेबल होती थी।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। एक पूरा दौर था जब सदाशिव जी लगातार नाटक कर रहे थे और भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि नाटकों के लिए तो अलग अलग शहरों में गाँव

0: में जाना होता है। उस दौर के कोई बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं जिन्होंने उन्हें एक मुकम्मल पहचान दी थी, उनकी बात करते हैं।
1: उसमें मैं सबसे पहले पापा कलाकार तो थे, एक्टर तो थे ही, पर वो निर्देशन में भी बहुत रस रखते थे, वो निर्देशक भी थे, राइट। सो अगर उनके नाटकों की बात कही जाए तो उन्होंने कुछ नाटक ऐसे किए थे, जैसे छू मंतर करके एक नाटक था, फिर बखर एका राजा जी, ये एक प्ले था, छिन्न करके एक नाटक था, कन्यादान एक नाटक था, फिर हैंड्स अप, ये जो पांच छह नाटक है, काही स्वप्ने विकाई जी, ये भी एक था, पर काही स्वप्ने विकाई जी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था और कंपटीशन वाला प्ले था, बाकी के ये जो सारे जो मैंने नाम लिए ये कमर्शियल नाटक थे। इसके अलावा भी बहुत सारा काम किया हुआ है, पर ये नाटक मैं स्पेशल इसलिए समझती हूँ बिकॉज ये हर एक नाटक ने कुछ इंडस्ट्री को भी दिया हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका अलग अलग जिक्र मैं चाहता हूँ, जैसे छिन्न का बहुत जिक्र मिलता है, हैंड्स अप का जिक्र मिलता है, काही स्वप्ने विकाई जी, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसका भी खूब जिक्र मिलता है, अलग अलग मानदंडों पर इन्होंने कुछ
1: किया है,
0: कामयाबी।
1: तो काही स्वप्ने विकाईची ये जो प्ले था, ये बहुत पहले कुछ जो प्लेस पापा ने किए थे उसमें से था। तो उसमें वो एक रिटायर्ड टीचर का रोल करते थे जो 83 इयर्स ओल्ड होते हैं, और उस वक्त पापा की उम्र थी 23-24 ज्यादा। उस समय उन्होंने काफी सारे उस पे INT और ये जो सारी कॉम्पिटिशन होती थी उसमें काफी सारे अवार्ड जीते थे उस एक रोल के लिए। उन्हें लोग कास्टिंग के लिए बुलाते थे कि आप आओ हमारे यहाँ पे प्ले में, और वो हर बार जाते थे तो लोगों को लगता था ये कौन आ गया, वो तो एक बुढ़ा आदमी है जो वो रोल कर रहा है, यू नो उम्र में ज्यादा है, आपने कैसे किया, आप तो नहीं हो सकते। ऐसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उस समय पापा की आंखें चली गई बिकॉज लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जिसने 83 साल के एक वृद्ध इंसान का रोल किया हुआ है, और वो इतना बखूबी निभाया उन्होंने कि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये एक 24-25 साल का युवक है। तो वो एक प्ले इसलिए बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि पापा की जो एक्टिंग की रेंज थी वो एक प्ले में काफी सारी एक्सपोज हुई थी। इसके अलावा छिन्न जो प्ले है वो विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ था, और उसकी खासियत ये है कि वो एक प्ले है जिसमें सबसे पहले और मेरे ख्याल से आखिरी बार वही एक प्ले है जिसमें स्मिता पाटिल जी ने कमर्शियल थिएटर किया था
0: और वो भी पापा के निर्देशन में।
1: एग्जैक्टली, तो इसलिए वो एक बहुत ही खास प्ले रहा है, और लोगों ने जो सराहा है उस प्ले को क्योंकि उसका विषय है और जो सब था, एक तो तेंदुलकर साहब की जो लिखाई है वो एक तो पाथ ब्रेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग होती है और उसके ऊपर पापा का डायरेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट दोनों चीजें हुई थी। उसी की स्टाइल में दूसरा एक नाटक कहा जाए तो वो है कन्यादान। कन्यादान में डॉक्टर राम लागू, नीना कुलकर्णी, आशालता वाबगावकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे उस समय, और उनके साथ अगेन पापा ने निर्देशित भी किया था, उन्होंने एक्टिंग भी की थी उसमें। छिन्ना और कन्यादान, इन्होंने पापा को एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर डायरेक्टर के तौर से एस्टेब्लिश किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उस समय थिएटर जिस तरह से देखा जाता था, लोग जिस तरह से देखते थे, वैसा मुझे नहीं लगता आज तक वो सुवर्ण काल फिर से आया है।
0: ऐसा हम उस दौर की बात करें जब टेलीविजन उस तरह से नहीं आया था और महाराष्ट्र में खास तौर पर थिएटर की सशक्त परंपरा थी और कामयाबी के झंडे गाड़ते थे प्लेज, और उनकी दास्तानें आज तक कही जाती है।
1: करेक्ट करेक्ट, तो ये प्ले था। उसके बाद पापा ने INT के लिए ही एक प्ले किया था, बखरे का राजा जी। तो बखरे का राजा जी ये जो प्ले था, इसमें नीना कुलकर्णी और दिलीप कुलकर्णी जो उनके हस्बैंड थे, वो भी एक बहुत उम्दा कलाकार थे, उन दोनों को लेकर ये प्ले बनाया गया था। पर उस समय वो प्ले चला नहीं, कमर्शियली इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, और INT को काफी लॉसेस झेलने पड़े थे बिकॉज इट वाज अ हिस्टोरिकल सेट, सब वैसे लगा था और ये सब हुआ था। तो उसके बाद पापा ने डिसाइड किया अब मैं जो करूंगा वो मैं कमर्शियली वायबल करूंगा, पैसे कमाने चाहिए लोगों, मतलब प्रोड्यूसर्स ने, राइट। तो इसलिए उन्होंने दो प्लेज किए उसके बाद डेफिनेटली, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। एक प्ले तो था छू मंतर, जो उन्होंने डायरेक्ट किया था, और इस प्ले की मजे वाली बात यह है कि उस वक्त लक्ष्मीकांत बेरडे को फर्स्ट

0: कमर्शियल प्ले में पापा ने कास्ट किया था.
1: ओहो गजब.
0: इट वाज हिज लॉन्च. तो और वो प्ले बहुत चला बिकॉज इट वाज अ आउट एंड आउट कॉमेडी और बहुत मजा आया लोगों को. और एक लक्ष्मीकांत बेर्डे जैसा कलाकार आया. पापा थे, लक्ष्मीकांत बेर्डे थे, तो इट वाज पिक्ड अप लाइक हाउ. उसके बाद हैंड्स अप किया था पापा ने, जिसमें वो थे, भक्ति बर्वे थी, ऐसे 5-6 बहुत ही स्ट्रांग आर्टिस्ट उसमें थे. और पापा ने निर्देशित भी किया था वो प्ले. और दैट वॉज अ हिस्टोरिकल प्ले. मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि बहुत बारी ये बात आई भी है कि जब गोविंद निहलानी जी ने वो प्ले देखा, अगेन विजय तेंदुलकर जी ने उनसे कहा था कि तुम हैंड्स अप का प्ले देखो, बिकॉज उस समय निहलानी जी अर्धसत्य का कास्टिंग कर रहे थे और पुलिस इंस्पेक्टर का हीरो है ये तो पता था, बिकॉज तेंदुलकर साहब ने ही वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी. तो उन्होंने कहा था कि तुम ये प्ले देखो, इसमें ये लड़का है, ये बहुत अच्छा इंस्पेक्टर निभाता है, तो तुम देखो. तो इसलिए गोविंद जी गए, उन्होंने वो देखा प्ले और उन्होंने पापा को इंस्पेक्टर के रोल में ही थे वो देखा, लेकिन उन्होंने उनकी कास्टिंग रामा शेट्टी के लिए की.
1: वाह.
0: ओके. और फिर उसके बाद तो इट इज जैसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री है. उसके बाद फिर पापा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार का नाम उन्हें मिल गया और वो काफी सारी फिल्मों में ही बिजी हो गए. तो थिएटर वो करते रहे पर बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बाद में वो करते रहे.
1: बिल्कुल.
0: तो इसलिए वो हैंड्स अप ये एक जो प्ले है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हैंड्स अप का ये एक मजेदार किस्सा है. उस वक्त क्या होता था, जैसे आपने कहा कि वो समय ऐसा था जब मराठी में नाटक की परंपरा बहुत बहुत स्ट्रांग थी. तो दिन में 2-2, 3-3 शो लगते थे एक प्ले के. तो और उस वक्त जैसे अब है मेट्रो पकड़ लिया चले गए, उबर पकड़ ली चले गए, वैसा नहीं था. आर्टिस्ट को खुद ही जुगाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था. पापा के पास उस वक्त एक 2-व्हीलर थी. तो शिवाजी मंदिर में प्ले खत्म हुआ, वहां से उन्हें ठाणा पहुंचना था. और ये मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ये सब इतना अच्छा नहीं था बम्बई में.
1: हाँ जी.
0: तो पापा स्कूटर पे जाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कपड़े नहीं बदले और वो वैसे ही निकल गए और एक भी सिग्नल पर वो नहीं रुके. और हर बार जब उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो बिकॉज वो उस कॉस्ट्यूम में थे उनको लगता था अरे ये तो कोई इंस्पेक्टर है, कुछ अर्जेंट काम होगा, तो सॉरी सॉरी सर करके. तो ये कलाकार इस तरह से होते हैं, औलिया जिसे हम कहते हैं, कि वो उन्हें सिर्फ वही दिखता है कि मेरा कर्टन और आधे घंटे में खुलने वाला है, मुझे वहां पहुंचना है बस. और
1: क्या प्यारी बात है. वाह. यहाँ भी गाने की जगह बन रही है और मुझे लगता है कि ये करते हैं कि मम्मी की पसंद का कोई गाना लगाते हैं यहाँ पर.
0: मम्मी की पसंद का ये जो गाना है, मेरे महबूब में क्या नहीं.
1: वाह वाह वाह. क्या बात क्या बात क्या बात. सुनते हैं ये गाना.

0: बहुत लंबी एक दिलचस्प बात हुई नाटकों को लेकर, और तेंदुलकर साहब का नाम वहां बार बार आता है। बहुत करीबी रिश्ता सदाशिव जी का तेंदुलकर जी से रहा है, उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, आपसे सुनना चाहता हूँ।
1: ओके, तेंदुलकर जी एक हम कह सकते हैं विद्यापीठ थे।
0: बिल्कुल,
1: किसी भी घटना की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता था वो बहुत अलग होता था। रोज की घटनाओं की तरफ भी वो जिस तरह से देखते थे और बात करते थे, ये बहुत अलग था। तो उनकी और पापा की जो पहचान थी वो प्ले की वजह से हुई थी, पर सुहास अवचट करके बहुत बड़े आर्टिस्ट है, पेंटर है, उन्होंने उनको मिलाया था। एक ये अहमदनगर से आया हुआ लड़का है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये जब तेंदुलकर साहब को समझ में आया तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया मतलब मैं इस तरह से कहती हूँ कि देर वर डेज, ऐसे दिन थे जब दो दो तीन तीन दिन तक पापा उनके घर पर ही रहते थे।
0: गजब।
1: हाँ, और उस वक्त तेंदुलकर साहब जो काम कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो वो प्रोसेस का एक भाग होना एक युवा के लिए जो अहमदनगर जैसे छोटे से गांव से आया है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो पापा हमेशा कहते हैं कि मैं तो उनके सामने जाता था तो जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है जो इंक ब्लॉट करता है, वैसे मैं, मराठी में हम उसे टिप कागद कहते हैं, तो वैसे मैं टिप कागद हो जाता था, जो भी मिले वो एब्जॉर्ब करो।
0: वाह वाह,
1: बस उतना ही। तो ये स्थान तेंदुलकर साहब का पापा की जिंदगी में था। दूसरा, जब 82 में मम्मी को बॉम्बे में ट्रांसफर मिली, तब कैसे तैसे करके पापा ने एक किराए का घर लिया था, क्योंकि हम तीनों बच्चियां, मेरी दादी और मम्मी और वो, ऐसे हम सब लोग रहने वाले थे।
0: किस इलाके में?
1: अंधेरी में ही लिया था उन्होंने, बिकॉज उस वक्त बैंड्रा बहुत महंगा था, तो ऐसे उन्होंने अंधेरी में लिया था। तो एक किराए पे छोटा सा घर लिया था, और दो साल बाद वो घर मालक ने कहा कि भाई अभी नहीं, अभी आप छोड़ दो, मुझे ये घर बेचना है। तो रातों रात एक हफ्ते के अंदर बंबई जैसे शहर में एक घर ढूंढ पाना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो पापा गए तेंदुलकर साहब के पास, बिकॉज जैसे मैंने कहा ही वॉज अ गाइड, ही वॉज अ फ्रेंड, ही वॉज अ फिलोसोफर। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने सीएम साहब के लिए एक लेटर लिखा कि ये ऐसा ऐसा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, और इसे बंबई में रहने के लिए घर नहीं है, तो आप इसकी कुछ मदद कर दीजिए। तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ खत लेकर पापा पहुंच गए। उस समय चव्हाण साहब सीएम थे, उन्होंने वो लेटर देखा और एक मिनट के अंदर उन्हें लेटर दिया। उस समय ऐसा था कि 2% कोटा हुआ करता था कलाकारों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। तो उसमें से जोगेश्वरी में जो नई एक कॉलोनी बन रही थी वैशाली नगर, वहां पर हमें एक 1 BHK का फ्लैट म्हाड़ा का मिला। तो वो लेटर तेंदुलकर साहब ने दिया और इट वाज अमेजिंग। जैसा पापा हमेशा कहते थे कि आपकी जिंदगी के हर मुकाम पर आपको ऐसे इंसान मिलते हैं जो या तो आपको कुछ नया दिखाते हैं या आपको आगे पुश करते हैं। तो मेरे ख्याल से और पापा से जो बातें होती थी उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि तेंदुलकर साहब ऐसे थे जो पापा के लिए ना ही, मतलब एक नया तरीका दुनिया को देखने का तो था ही जो उन्होंने सिखाया उन्हें, पर उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा पुश भी दिया। तो बंबई में घर अपना खुद का लेना हो या उन्हें पहली फिल्म मिलनी हो, पहली फिल्म हालांकि पापा की 22 जून 1897 थी,
0: उसकी बात आगे करेंगे।

0: पर बड़ी फिल्म जिसमें हालांकि 3.5 सीन थे पर वो पूरी फिल्म पे छा गए थे, रामा शेट्टी छा गए था कैरेक्टर, तो वो फिल्म हो तो आई थिंक तेंदुलकर साहब का अनन्य साधारण महत्व हमारी पूरी फैमिली की लाइफ में है।
1: बिल्कुल, एक घटना है जिसमें उन्होंने पूछा था तेंदुलकर से कि आपने अर्धसत्य में मुझे रोल क्यों दिलवाया, उसका जिक्र करें।
0: उसका ये तो एक्चुअली तेंदुलकर साहब ही बेस्ट बता पाएंगे पर उन्होंने जब पूछा तब मेरे ख्याल से जो मुझे याद है कि तेंदुलकर साहब ने कहा था कि देखो कलाकार कलाकार होता है, क्योंकि उस समय भी और आज भी हमारी इंडस्ट्री में काफी कैंप्स बने हुए हैं।
1: बिल्कुल,
0: सो पूना से आने वाले लोगों का एक कैंप है, बॉम्बे से लोगों का एक कैंप है, अभी तो बॉलीवुड में भी यूपी से आने वाले लोगों का एक कैंप है, इस तरह से, और वो कालातीत है, वो चलता ही रहता है, हर जगह वो होता है। तो उन्होंने कहा था कि कलाकार जो होता है ना उसकी जात और उसका ये सिर्फ एक होता है धर्म, वो है कला। और तुम जिस तरह से खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो वैसे मुझे लगता है तुम ये रोल ठीक से कर पाओगे। हालांकि उस वक्त बात यह हुई थी कि पापा को लग रहा था कि हीरो का रोल उन्हें मिलेगा, जो कि ओमपुरी जी को मिला था, क्योंकि इंस्पेक्टर हैंड्स अप में उन्होंने इंस्पेक्टर किया था, और ये रामा शेट्टी का रोल इन्हें ऑफर किया गया था। तो उन्होंने तेंदुलकर साहब से पूछा था पर मुझे तो लगा था मैं इंस्पेक्टर का रोल करूंगा, तो उन्होंने कहा था तुम बस जो तुम्हें काम दिया है वो ठीक से करो, तुम विलन हो या हीरो हो दैट डज नॉट मैटर, ये फिल्म के आखिर में तुम याद रहने वाले हो लोगों को, ये भूलना मत। तो वो पापा ने सुनी उनकी बात और ही इज वेयर ही रीच्ड।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक कलाकार की ताकत ये है कि कितना छोटा रोल क्यों ना हो अपनी मौजूदगी अपनी आमद को कैसे साबित किया जा सकता है, उसकी मिसाल है अर्धसत्य। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे बहुत कम मिसालें मिलती हैं जहां कुछ दृश्यों में अभिनेता ने अपनी वो छाप छोड़ी के इतिहास रच दिया। लेकिन ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी,
0: नहीं थी
1: तो पहली फिल्म जो नचिकेत और जयू वाली थी वो कैसे मिली उसका जिक्र कीजिए।
0: वो कैसे मिली इसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी
1: जी,
0: लेकिन पूना में उस वक्त पापा रहते थे ज्यादा करके और वहां पर वो प्ले वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने कास्टिंग में उन्हें तिलक का रोल दिया गया था और पापा उस वक्त एकदम पतले दुबले पतले से ऐसे थे, तो जयू और नचिकेत पटवर्धन उनके बहुत अच्छे दोस्त थे उस वक्त, तो आप करोगे, उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा नो प्रॉब्लम चलो, मतलब पापा कहते थे कि अभी दुकान ही खोलकर बैठे हैं तो जो आएगा वो करना तो पड़ेगा, इस तरह से उन्होंने वो किया था। तो लेकिन उन्होंने वो रोल किया उस वक्त, जयू और नचिकेत पटवर्धन ये अभी तो बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड ये है पर वो भी काफी यंग थे उस वक्त। और फिल्म में मुझे याद है पापा ने बाद में जब राज से स्वराज तक में लोकमान्य तिलक का रोल किया तब उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर मेहनत की थी, क्योंकि उन्हें समझ में आया था कि ये जो फिल्म हमने की है जयू नचिकेत के साथ इसमें हालांकि मैं तिलक लग रहा हूं फीचर्स के तौर पर, लेकिन जो उसका क्रिटिक आया था वो ऐसा आया था कि मैं मराठी में ये वाक्य कहती हूँ, यशोदा लोकमान्य टिळक हा रामोश्या सारखा दिसतो, रामोशी मतलब जो क्लीनर्स होते हैं ना ऑफिसेज में या घर में उन्हें रामोशी कहा जाता था एक जमाने में, अब तो नहीं कहते कोई, तो इस तरह से वो दिखता है। तो इसलिए उसके बाद जब पापा ने राज से स्वराज तक की जब उन्हें फिर से एक बार तिलक करने का मौका मिला, लोकमान्य तिलक का किरदार निभाने का मौका मिला, तब पापा ने बाकायदा 6-8 महीने, उस समय ये नहीं होता था लेकिन जिम जाकर, बिकॉज लोकमान्य तिलक की जो बॉडी थी ही वॉज वेरी वेल बिल्ट, तो इस तरह से दिखने के लिए पापा ने वो सारे एफर्ट्स लेकर वो काम किया हुआ था। ये फिल्म के बारे में जब भी पापा से बात होती थी तो कहते थे मैं तो थ्रिल था कि मुझे फिल्म में लिया है, बिकॉज उनकी उम्र भी काफी कम थी उस वक्त। और क्या करना चाहिए जब आप कोई इस तरह का किरदार जो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इंसान का किरदार जब आप निभा रहे हो, तब क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें उन्हें उस फिल्म से समझ में आई। आज भी जब वो दूरदर्शन पे वो फिल्म लगती है तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच।
1: बिल्कुल, राज से स्वराज का जो जिक्र आया है मैंने उनके इंटरव्यूज में देखा और पढ़ा है कि बहुत ही प्रिय रहा है ये रोल उनके हाँ। लिए, और जब भी कभी उनसे ये पूछा गया है कि आपके

0: फेवरेट रोल्स कौन से रहे, तो उन्होंने बड़ी फिल्मों और वो तमाम मशहूर रोल्स को छोड़ के इसका जिक्र किया है। वो क्यों है?
1: क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राज से स्वराज तक में जो लोकमान्य तिलक की भूमिका निभाना है, ये उनके लिए एक लर्निंग कर्व रहा है। 22 जून 1897 ये फिल्म में जयू नचिकेत पटवर्धन उन्हें डायरेक्ट किया था लोकमान्य तिलक की भूमिका में, और यहाँ पर अमाल अलाना जी ने उन्हें डायरेक्ट किया था राज से स्वराज तक में। अमाल अलाना अगेन एक बहुत बड़ा नाम है, अलकाजी सर जिन्होंने NSD जैसी संस्था को रूप लाया, उनकी बेटी अमाल अलाना उन्होंने ये दिग्दर्शित किया हुआ था, और उस समय ना पापा और 10-15 साल आगे आ चुके थे करियर में एज एन एक्टर ऑल्सो। ही वॉज अ स्टार एट दैट टाइम जब राज से स्वराज तक हुई थी। तो जब उन्हें फिर से चांस मिला तो उन्होंने सोचा कि अब आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ,
0: जो कसर रह गई
1: है वो पूरी करनी है, अभी मैं रामोशी नहीं दिखूंगा।
0: यस,

0: की भूमिका में, और यहाँ पर अमाल अलाना जी ने उन्हें डायरेक्ट किया था रात से स्वराज तक में। अमाल अलाना अगेन एक बहुत बड़ा नाम है, अलकाजी सर जिन्होंने NSD जैसी संस्था को रूप लाया, उनकी बेटी अमाल अलाना उन्होंने ये दिग्दर्शित किया हुआ था। और उस समय ना पापा और 10-15 साल आगे आ चुके थे करियर में एज एन एक्टर ऑल्सो, ही वॉज अ स्टार एट दैट टाइम जब रात से स्वराज तक हुई थी। तो जब उन्हें फिर से चांस मिला तो उन्होंने सोचा कि अब आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ,
1: जो मैं, कसर रह गई
0: जो है। कसर रह गई है वो पूरी करनी है, अभी मैं रामोशी नहीं दिखूंगा।
1: yes.
0: मुझे याद है उन्होंने वो विग से लेके, बिकॉज उनकी कंटिन्यूटी काफी सारी फिल्म्स की होती थी। अब जैसे होता है कि कलाकार एक समय पे एक ही फिल्म करते हैं तो इसलिए वो पूरी तरह से वैसे ड्रेस्डअप होते हैं, वैसे नहीं हुआ करता था उस वक्त। 2 दिन इस फिल्म का शूटिंग हुआ, फिर 2 दिन उस फिल्म का हुआ, इस तरह से चलता था। तो किसी भी रोल के लिए पूरी तरह से बाल निकालना या ये पॉसिबल नहीं था। पर मुझे याद है कि जब उन्हें ब्रेक था एक महीने का, तब पापा ने जो कोर्ट सीन्स थे स्पेशली उसके लिए ये निकाले थे, बिकॉज अमाल जी ने उन्हें कहा था कि देखो कोर्ट सीन में जब लाइटिंग होती है तो विग बहुत बुरा दिखता है। एग्जैक्टली तो इसलिए उन्होंने उस समय बाल निकाल कर, और बाकी की फिल्मों में अगर आप देखोगे उस समय में जो शूटिंग हुए थे उसमें पापा ने विग्स पहने हुए है।
1: ओके, हाँ, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था।
0: एग्जैक्टली, पर उस समय कलाकार ऐसा नहीं करते थे, वो मैं बताना चाहती हूँ। तो ही वॉज वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड इन द स्क्रिप्ट, और उस समय तक पापा का जो रीडिंग था, पापा ही वॉज अ वोरेशियस रीडर, मतलब रोज वो 2-3 घंटा तो पढ़ना तो बनता ही है, किताबें पढ़ना उनका एक जरिया था। तो तब तक उन्होंने जो इतिहास के बारे में पढ़ा था, आई थिंक उसकी वजह से भी उन्हें वो करते वक्त, वो एक्टिंग करते वक्त बहुत मजा आया था। इसीलिए शायद वो उनका फेवरेट ये है कि मैं अभी प्रूव करूंगा। और वैसा लोकमान्य तिलक बाद में, हालांकि बहुत लोगों ने कोशिश की, पर जैसा राज से स्वराज तक में है वैसा लोकमान्य तिलक आज तक हो नहीं पाया है, वैसा लिखा भी नहीं गया है उस तरह से। तो आई थिंक इसलिए वो उनका बहुत फेवरेट कैरेक्टर रहा है।
1: दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज को आज भी लोग खोज खोज कर देखते हैं। हाँ? और दूरदर्शन के आर्काइव्स पर ये अभी भी देखा जा सकता है, खोज कर अगर आप देखें। हाँ? तो वेव्स पर शायद ये अभी भी उपलब्ध है।
0: तो वेव्स पर ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है जो श्याम बाबू ने डायरेक्ट की।
1: उसका जिक्र करने से पहले यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कि कौन सा गाना यहाँ
0: यहाँ पर
1: चाहिए?
0: तो मुझे ऐसे लगता है कि एक गाना है जो बिल्कुल पापा की जो सोच थी उनके समाज के प्रति, उनके देश के प्रति, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जिस गाने में आई है वो था राजी फिल्म का, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
1: क्या बात है, गुलजार साहब के बोल।
0: ऑफ कोर्स
1: सुनते हैं ये गाना।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।
1: विविध भारती
2: रंग तरंग।
0: आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की। पद्मश्री पद्मजा पिनानी जोगेलकर की आवाज में संदीप गुप्ते के द्वारा लिखी गई और महेश खानोलकर के द्वारा संगीतबद्ध की गई इस प्यारी सी गजल के साथ।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अभी संदेशों के पहले हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में गालिब के बोलों से सजी हुई, जिसके संगीतकार फैयाज शौकत है, उस गजल को। आइए चलते हैं अगली गजल की ओर, जिसे गाया है इंद्रानी रिजवी ने, कतील सिफाई ने इसे लिखा है और संगीतकार हैं बेनी सतामकर।

0: हम सुन रहे थे नगमा, जिसके गायक और संगीतकार हैं ए हरिहरन और जिसके गीतकार मुमताज राशिद।
1: अहमद फराज की एक ताजा गजल पेश खिदमत है। ये गजल आपको जरा आहिस्ता चल की याद दिलाएगी।

0: हम सुन रहे थे गीतकार अहमद फराज के बोलों से सजी हुई पंकज उदास के द्वारा गाई और उन्हीं के द्वारा संगीतबद्ध की गई इस गजल को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ

विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम रंग तरंग में स्वागत है। आइए सुनते हैं एक और सुंदर सा नगमा कार्यक्रम रंग तरंग में, जिसे हमने चुना है सुलक्षणा पंडित गजल्स एल्बम से, जिसे गाया है सुलक्षणा पंडित ने, शाहबी अब्बास शाहदाबी ने इसे बोल दिए हैं और महेश चंदेर ने इसे संगीत

0: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह जगजीत सिंह की आवाज में इस नगमे को, जिसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग का यह आखिरी नगमा, जिसे गाया भूपेंद्र ने और संगीतबद्ध किया भूपेंद्र ने ही, और शब्द हैं गुलजार के। कार्यक्रम रंग तरंग यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। रंग

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत

और स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओ, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओ, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओ, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदियां बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहाँ के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं,

0: तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
1: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
0: दोस्तों जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
1: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
0: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से, FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए सुनते हैं अगला नगमा, मधुमती फिल्म से मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म शरारत से, मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ।

0: सुन रहे थे गाइड फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के पोल और सचिन देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर।

0: गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर, और इस सुरीला सफर में हम आपके साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं शेर और शायरी के बारे में, और आप बड़े अच्छा अच्छा लिखते जा रहे हैं हमारे बीच में। तो हमारे श्रोता ने बताया है कि उन्हें शेर और शायरी की बात हो रही है, तो जिस गाने से शुरू में शेर हो ऐसे गीत होने चाहिए थे। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे श्रोता ने एक जहारा का तलत जी का तलत का गाया हुआ ये गीत उन्होंने लिखा है कि तेरी आंख के आंसू पी जाऊं ऐसी मेरी तकदीर कहां। गाने के पहले भी शेर है और आगे उनको पंक्ति याद नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत बढ़िया बात है, ऐसे शेर हमारे बीच में आते जा रहे हैं। हमारे साथ में एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारी सगाई के बाद पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मिलना हुआ अजमेर में, तो उन्होंने कहा कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, और आशा करती हूँ ये प्यार आपका सदा बना रहे। और इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि बस हमको ऐसी महफिल मिल जाए तो हम लंच का भी दरकिनार कर सकते हैं। जी, हमारी श्रोता लिख रही है कि अगर देवनागरी में लिखेंगी तो हम तक पहुंच नहीं पाएगा। रोमन में लिख रही, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वह लिखती है कि मेरे पति को शायरी समझ में नहीं आती तो उन्हें इंग्लिश में बोलती हूँ, यू आर माई फेवरेट वेस्ट ऑफ टाइम। और वो बहुत खुश होते हैं, क्या बात है। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, सबसे अच्छा समय गुजारते हैं ना हम इन लोगों के साथ में। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि पत्नी को प्रेम निवेदन में कही थी कि तनकी सुराही में यौवन का हाल, यौवन की हाला, चितवन में मदहोशी अंगों में ज्वाला, छल छल छल के यूं का प्याला, गोरी तू लागे है पूरी दुशाला। धन्यवाद, बहुत बढ़िया पंक्तियां आपने कही है। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखे है कि कई सारे शायर जो हैं वो लिखते हैं बड़े प्यार से। हमारे श्रोता ने लिखा है कि उनकी फेवरेट है कि सपने चरे फूल से, मीत चुबे शूल से, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रह गए, कारमा गुजर गया और हम गुबार, क्या बात है। जॉन एलिया की पंक्तियां ये लिखते हैं कि क्या तकल्लुफ करें या कहने में कि जो भी खुश हैं हम उसे जलते हैं, यूं जो तकता है आसमान को तू कोई रहता है आसमान में क्या, ऐसी बात है। हमारे श्रोता ने बहुत बढ़िया शायरी बनाई है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ऐ विविध भारती तुझे बनाया गया है मेरे लिए, हम सभी के लिए। जी बिल्कुल, ये विविध भारती हम सभी के लिए ही बनाई गई है। शेर व शायरी दिल बहलाने का जरिया है साहब, लफ्ज कागज पर उतारने से महबूब नहीं लौटा करते। बड़ी प्यारी सी बात कह दी है आपने। और चलिए अब हम जल्दी से हमारे ना अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं, और जो हम बात कर रहे थे आपसे कि हमारी जो अगली शायरी है, अभी हम बड़ा प्यारा सा ये गीत सुनकर

निकले हैं कभी कभी फिल्म का, और अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे एक और श्रोता ने श्रोता की बात को हम थोड़ी देर बात करते हैं। हम ये शायरी आपको बता देते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा है। ये शायरी हमारे बीच में है, फिल्म से ली गई है, और आपसे हमने पूछा कि हो सकता है कि कोई बड़ी देशभक्ति की पंक्तियां या बड़ी शौर्य वीरता की पंक्तियां, कोई पंक्ति जो शेर में हो, कविता में हो या फिर शायरी में हो तो जरूर बताइएगा। लेकिन तब तक हम आपको ये बता दें, हमारे श्रोता ने उसका एक उत्तर भेजा है कि मैं तूफानों में चलने का आदि हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियां बिल्कुल सही बात है। चलिए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, और इस गीत की गायिका को पहचानिए, बहुत आसान है इस आवाज को पहचानना क्योंकि आप बराबर इन्हें सुनते रहते हैं। गायिका की आवाज को पहचानिए और पहुंचते हैं आपके अगली बात की तरफ कि आपको कुछ देशभक्ति से भरा या फिर कोई वीर रस से भरा हो, कोई शेर शायरी या कविता, कुछ पंक्तियां हम तक साझा करें।

हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से यह गीत सहरियार के बोल खयाम का संगीत। और आप सबसे पूछा था कि आवाज किसकी है, तो आप सबने सही पहचाना, सुमधुर आवाज आशा भोसले की है, बिल्कुल सही। और अब हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, उनको हम साझा करते हैं। कि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, उन लोगों की कमी नहीं शाख पर, ये शेर थोड़ा सा कुछ अलग है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। कुछ शेर इस तरह का है जो आप कहना चाह रहे हैं। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि शबे फिराक उठे दिल में और भी कुछ दर्द, मैं कैसे कह दूं तेरी याद रात भर आई, क्या बात है। हमारे को श्रोता ने लिखा है कि उनके जीवन साथी का जन्मदिन 71वां जन्मदिन था और सीनियर सिटीजन उसी दिन पिकनिक पर गए थे दोस्तों के अनुरोध पर। तुम्हें और क्या दूं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाइए, हसरत जयपुरी की पंक्तियां बोल दी थी, बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि वह भी अपनी पत्नी से बहुत उनकी समझदारी से प्रेरित हैं और वह उनका सदा साथ देती हैं और उनके जीवन के मंगलमय की प्रार्थना वो कर रहे हैं। और हम भी आप सभी के जीवन की मंगल की कामना करते हैं, ऐसे ही साथ बना रहे। हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आप बढ़िया कोई जबरदस्त सी, बड़ी जोरदार सी, कोई बढ़िया सी शायरी दीजिए जो देशभक्ति की बात हो या वीरस की बात हो। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल, बहुत प्रोत्साहन देने वाला शेर है और आपने भी यही बात लिखी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनके शहर में आग बरस रही है, इस पर लिखते हैं, समय दिल शायरा न होने के बजाय दिल गर्मी से जल रहा है। अरे बारिश हो जाएगी, चिंता मत कीजिए, बस समय की बात है, अपने समय से सब कुछ आ जाता है। और हमारे श्रोता ने लिखा, इश्क का नमक की मोहब्बत की चाशनी में तेरी हम डूब रहे, मेरे प्रेम कहानी का रशाई मोहब्बत। अच्छा, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, उनकी मोहब्बत भी कमाल की होती जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। जी बहुत बढ़िया होता है ये प्रेम भी। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, ये शेर हमारे एक ये पंक्ति हमारे एक बड़े प्यारे से श्रोता ने लिखी है, दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रण बीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। देखिए हमारे देश में हाथी का नाम राम सिंह है, चेतक का नाम, घोड़े का नाम चेतक, और इनमें भी वही देशभक्ति है जो एक देशभक्त में, एक देशभक्त राजा में है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की खूब लड़ी मर्दानी वो तो, जी वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये पंक्तियां उन्हें पसंद है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की, क्षमा दया त्याग तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कब कहां कब हारा, सच पूछो तो शेर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, बिल्कुल सही। बलिदान और पराक्रम जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें वह तीर रसदार नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर, जिसमें सुदेश से प्यार नहीं। श्रोता लिख रही है कि कैसे लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों को, गहरी बातों को लिख देते हैं। वो शेरो शायरी की बात के बारे में कह रही हैं कि मैं तो हैरान रह जाती हूँ, यही काम कवियत्रियों ने भी करा है कि कबीर के दोहे, बिहारी के दोहे, रहीम के दोहे, कितनी सुंदर बातें जीवन का ज्ञान दे जाते हैं, मैं तो मुग्ध हो जाती हूँ उनको पढ़कर, क्या कला है इन सब में, बिल्कुल सही है। और अब हम जल्दी से अगले गीत की तरफ बढ़ें, और अब अगले गीत की तरफ बढ़ते हुए अगला जो शेर है वो हम आपके साथ में साझा कर लेते हैं। कि जो अगला गीत हम आपको पहुंचाने वाले हैं, देने वाले हैं, वो अगला गीत बड़ा खूबसूरत सा है, बड़ा प्यारा सा है। इस गीत के लिए आपको बताना है कि ये पंक्तियां जो हैं ये गाई किसने है, यानी गायक कलाकारों के नाम बता दीजिएगा। और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले, ये हमने अपनी इबारत में साझा किया है। आप अपनी शायरियां देशभक्ति से भरी अगर कुछ है तो भेजते जाइएगा और सुनिए ये।

मिर्ज़ा गालिब की इन पंक्तियों को मिर्ज़ा गालिब फिल्म से ही हम सुन रहे थे। गुलाम मोहम्मद ने इन्हें संगीत दिया और गाया है, जिनके बारे में हमने आपसे पूछा था कि गायक कलाकार कौन है, तो सुरैया और तलत महमूद, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ, और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर कोई भी शेर शायरी आपको पसंद आती है तो हम तक पहुंचाते जाइएगा। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे इसकी यह लाइन पसंद है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, और जान पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता वफा क्या है। बहुत बढ़िया बात है, ऐसी बहुत सुंदर पंक्तियाँ लोग लिख देते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मिट्टी की खुशबू से महके मेरा हर अरमान, भारत की शान में बसता है मेरा सम्मान, जब तक धड़कन चलती है सीने में यारो, तिरंगे पर नाज रहेगा यही मेरी पहचान। बिल्कुल सही बात है, वतन की धूल भी आंखों में सुरमा लगाती है, ये धरती की माँ की गोद की गर्माहट रखती है, हमारा सिर हमेशा झुका रहे इसके सम्मान में, यही दुआएं सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में रहती हैं। बढ़िया बात लिखते हैं आप। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने जो बढ़िया सी लिखी है कि असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराती सैन्य सिंधु में सुवाडनी से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां ये लिख रहे हैं कि आदमी को खुदा मत कहो, आदमी खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदमी जुदा नहीं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता बहुत अच्छे से बात कहते हैं और लिखते हैं कि उन्हें एक कविता बचपन से पसंद है, और कविता का वो कहते हैं सिंहासन हिल उठे वाली जो कविता उन्हें पसंद है उसके बारे में जिक्र किया है। एक बड़ी मजेदार सी कविता आई है, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, तेरी गली ना छोड़ूं, दुनिया में छोड़ दूं। और ये शायरी हम सब बचपन

में बहुत पढ़ा करते थे, शायद याद हो आपको। दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, यादें रह जाती निशानी बनकर, पर रिश्ते हमेशा रहते हैं, कभी होंठ पर मुस्कान बनकर तो कभी आंखों में पानी बनकर। बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता ने एक कविता खुद ने शायद ये स्वयं ने लिखी है या उन्होंने भेजी है, वो लिखती मानवता बढ़ गई ये युद्ध के ऊपर, ये कविता लिखती हैं और अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ देती हूँ। बस करो अब ये युद्ध, बन जाओ सारे बुद्ध, सारी सरहदों में शांति से रहो, ना किसी की आंखों में आंसू भरो। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जी बिल्कुल। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। एक बार कहते हैं, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार किसी को उन्होंने शायरी कही थी, वो किसी कौन है हम आप समझ सकते हैं, पर वो पलटकर उर्दू शब्दों का अर्थ ही पूछने लग गई। आप हिंदी में शायरी कह देते, हिंदी में भी कई सारी शायरियां बनाई गई हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, वतन की आबरू पर आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तहां होगा, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, कि जब बिस्मिल जमी अपनी और अपना आसमां होगा। जी बिल्कुल सही। ऐसे बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी जा रही हैं और बहुत खूबसूरत लिखते हैं, जो गए हैं वही तो लौटते हैं, जो गए ही नहीं वो क्या खाक लौटेंगे। क्या बड़ी बड़ी बातें आज पढ़ने में आ रही हैं, हमारे शायर निकल रहे हैं सारे श्रोताओं के हृदय से। तो मैं आप सबके शायरों को प्रणाम करती हूँ और अगला जो नगमा है, अगली जो शायरी है वो आपको भेंट करती हूँ। और वो भेंट है कि हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब ये शोर फिल्म का शेर है, हो सकता है किसी और फिल्म में भी इसे उपयोग किया गया हो, तो ज़रूर सुनिए और बताइए कि ये गीत आपको कैसा लगता है। और संतोष आनंद की अगर कोई पंक्ति आपको पसंद आती है इसके अलावा, तो ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा।

एक प्यार का नगमा है शोर फिल्म से हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की आवाज में संतोष आनंद की बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि बहुत सारी बातें उनसे पूछी और उसमें एक पूछा था कि जीवन दर्शन को छू लेने वाला ये बहुत प्यारा गीत है ऐसा उन्होंने कहा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी की छोड़ आए कहीं अपनी जवानी कहीं एक संतोष होता था शायर गजल बन गई है दर्द की राजधानी। ये वो लिखते हैं संतोष आनंद की संतोष फिल्म का ये गीत उन्हें पसंद है और हमारे कई सारे श्रोताओं ने इस गीत को बहुत पसंद किया है। और हमारे श्रोताओं ने शायरियों को भी बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है यानी समझाया है उनको बहुत खूबसूरती के साथ बताया है उसके लिए भी धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं तुम साथ ना दो मेरा चलना मुझे आता है हर आग से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। हाँ इस बात को इन शब्दों को रिकॉर्ड नहीं किया गया परंतु ये उसके वर्जन में थे उस गाने में थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद के साइड वर्जन वाला इस गीत का उन्हें पसंद है कि जो दिल को तसल्ली दे वह साज उठा लो दम घुटने से पहले आवाज उठा लो। जी बहुत बढ़िया बात और बहुत प्यारा सुरीला सफर आप सबके साथ रहा उसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद और आप सबका जीवन मंगलमय सुख हो शांति हो कल्याण हो बस यही प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। नमस्कार।

0: आजकल जंक फूड का चलन बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तमाम तरह के ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनके जरिए आप खाना ऑर्डर करें और फटाफट आपके पास भोजन पहुंच जाता है। इनमें से ज्यादातर भोजन जंक फूड होता है, ज्यादा तेल मसालों वाला नुकसानदेह खाना। इसकी वजह से हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग घर के खाने से मुंह चुराने लगे हैं, बल्कि ये भी हो रहा है कि घर पर खाना खाने की बजाय बाजार से ऑर्डर कर देने का चलन बढ़ता चला जा रहा है। विज्ञापन लोगों को इस ओर आकर्षित कर रहे हैं, जबकि घर का खाना सही सेहत का खजाना है।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी।

पुराने जमाने में मौसम के हिसाब से फलों और सब्जियों का सेवन किया जाता था। सर्दियों के मौसम में कुछ खास पकवान बनते थे, गर्मियों के मौसम की डिश अलग हुआ करती थी और बारिश के मौसम में बहुत संयम के साथ अलग तरह की सब्जियां खाई जाती थी। लेकिन समय बदलने के साथ अब ये हो रहा है कि सारी सब्जियां साल भर उपलब्ध होती हैं, यानी मौसम बेमौसम आप जो मर्जी वो खा सकते हैं। युवा और किशोर पीढ़ी के साथ तो संकट ये है कि उन्हें पिज्जा बर्गर या दूसरे तरह के जंक फूड के सिवा घर का सादा खाना पसंद नहीं आता। जब आपको बहुत चटकदार और मसालेदार खाने की आदत लग जाए तो उसके आगे घर का खाना फीका लगने लगता है, जबकि घर के खाने में सेहत है, प्रेम है, लगाव है, अपनापन है।

ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियाँ, कितना हंसी ख्वाब है। चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियाँ, कितना

0: जब बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बना लेती हैं, जब पेट बिगड़ने लगता है, जब मोटापा बढ़ने लगता है, जब एसिडिटी या सिर दर्द या दूसरे तरह की तकलीफें आपको तंग करने लगती हैं, तब डॉक्टर कहते हैं कि सादा खाना अपनाइए, सही नींद लीजिए, और तब जाकर समझ में आता है कि जंक फूड ने आपके शरीर की हालत खस्ता कर दी है। जरूरत इस बात की है कि हम समय रहते चेत जाएं और हम इन एप्लीकेशंस या बाजार के चटकदार खाने के लालच से खुद को बाहर निकालें, संयमित और संतुलित भोजन लें और अपनी सेहत की हिफाजत करें, वरना ये हाल होगा।
1: चक्कर की दवा,
2: शक्कर की दवा, दिल से दिल की टक्कर की दवा,
1: होमवार बना रहा है,
2: मिट जाए झगड़ा,
1: होमवार बना रहा है,
2: मिट जाए झगड़ा,
1: धनक धनक धन दबड़ा,
3: मेरा पेट बगड़ा,
2: अरे मेरा गुरु रखड़ा।

0: आयुर्वेदिक पंडा लेके दवा का डंडा है। बोलो बोलो क्या है रोग तुम्हारा, कर दे उसको ठंडा।
1: अरे ब्रह्मा जी ने खुद बांधा है हाथ हमारे गंदा, और आसमान पर उड़े हमारे मतलब ध्वज का झंडा
0: है। धरती माता
1: हाँ, हाँ, हाँ, धरती माता।

ये वो बात नहीं है जिसकी जगह तुड़ावे हाँसी, और बचपन ही में निकल पड़े थे देकर सबको फांसी। ओ माफ करो, बचपन ही में निकल पड़े थे होके ये सन्यासी।

0: ऊंट पर चढ़ते चढ़ते हमको हो गए बरस में आची। अरे ऊंट पर चढ़ते चढ़ते हमको हो गए बरस में आची। अरे क्या है तुम्हारा है जा बैठा, क्या है तुम्हारी खांसी। अरे हम चाहे तो पल में दे दे जम राजा को फांसी।
1: हो बोलो।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़

0: और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय अनुशासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज CISF के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि CISF के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ

0: साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के 1 नेता, 1 वार्ड सदस्य, 1 किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। ये अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा।

0: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत जबक फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में प्रेम धवन के बोलो चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
5: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सदाबहार नगमे कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम में ये सुंदर सा गीत जिसे हमने चुना है ससुराल फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के हैं बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: हम सुन रहे थे स्त्री फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में भरत व्यास के बोलों से रामचंद्र के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में ससुराल फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में, जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, यह गीत जो गाया है लता मंगेशकर ने और मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन।

हम सुन रहे थे गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलिए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा, संजोग फिल्म से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जंगली फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप सबका मंगल हो।

0: थे दीपा महेश्वरी। तो दीपा आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे
1: मंजरी हैं? बिल्कुल अच्छे हैं और तुम्हारे साथ हमारे सभी सखियों को श्रोता भाइयों को मेरा दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: क्या बात है,
1: हेल्दी इसलिए हमेशा ही बताते हैं कि कोई एक दिन जैसे कि कल गया हमारा इंटरनेशनल योगा डे, एक दिन स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए नहीं है, वो इसलिए है ताकि हम साल भर हर दिन अपना ध्यान खूब अच्छे से रख सकें और अपने परिवार को भी उसी वजह से खुशहाल भी रख सकें।
0: बिल्कुल दीपा, और ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास देखो मोबाइल की सुविधा भी उपलब्ध है, तो हम हर दिन अपने दोस्तों को ग्रुप में डाल सकते हैं कि आज योग किया कि नहीं किया, तो इस तरह की हम उन्हें याद भी दिला सकते हैं। तो एक दूसरे को जब हम प्रेरणा देंगे ना रोज रोज गुड मॉर्निंग की जगह साथ में ये भी उसमें लगा दें कि आज योगा किया कि नहीं किया,
1: सही
0: तो सबकी सेहत अच्छी रहेगी।
1: भले ही 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए जितना भी आपके पास वक्त है और जो भी अच्छा लगता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप एक कुछ वक्त अपने दिन का अपने स्वास्थ्य पर जरूर समर्पित कीजिए।
0: बिल्कुल, और दीपा आज हमारी जो सखी सहेली के विषय हैं तो वो हम बता देते हैं कि आज प्रादेशिक व्यंजन में हम कानपुर उत्तर प्रदेश की रंग बिरंगी चाट और हरी धनिया के आलू की तो बात करेंगे ही करेंगे, और हमारे साथी जो कुछ लेकर भेजेंगे तो उनको भी इसमें शामिल करेंगे।
1: बिल्कुल, और देखो वर्षा ऋतु आने को है, इंतजार तो हो ही रहा है, सब लोग चाह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द बारिश शुरू हो, तो उसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां शुरू हो जाती हैं जैसे कि मच्छरों से बचाव, तो इस पे भी हम बात करेंगे और संदेश आए हैं, हम चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा संदेश हमारे सभी श्रोता लिखकर भेजें।
0: बिल्कुल, और कथा सुधा में आज हम सुनवाने वाले हैं आभूषण कहानी का भाग 4। तो अभी तक लगातार सबने सुनी है आभूषण कहानी, तो आज उसका चौथा भाग अंतिम भाग सुना जाएगा। और नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत जैसे कि हो गई है और हम देखते हैं दीपा की आज बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, तो उनका कैसा अनुभव होता है या आपने बच्चों को स्कूल भेजने के पहले क्या क्या तैयारी करी, वो सब भी हमें छोटी छोटी बातें छोटे छोटे संदेशों में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल, और एक ये गुंछा बना लिया है हमने कार्यक्रम का, तो ये सब तो हम कर ही रहे हैं बातें और आप सारे संदेश तो आएंगे, तब तक सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: मंजरी, अब तो बिना कुछ कहे हम चलेंगे सीधे कदरसुदा की तरफ.
1: बिल्कुल.
0: जहाँ पे हम सुनने वाले हैं आभूषण का भाग 4.
1: जी.
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी. सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें. कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी. हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी. कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं. आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा.
3: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण.
0: पिछले भाग में आपने सुना
4: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे. शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं. आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी. विमल की खेती बेगार में होती थी. उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए. कोई जोतने वाला न मिला, असामियों ने लगान न दिया. शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया. दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही. अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए. शीतला के गहनों के सिर गई. दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई. फाके होने लगे. 4 प्राणियों का खर्च था. उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई. 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे. गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई. सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं. बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो. उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी. चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती. कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी. वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे. मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे. इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे. मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी. मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है. जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया. वो संभल गए. ग्लानि से उनकी आंखें भर आईं. उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा.
5: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी. मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है.

0: खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट ना होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूँ।
1: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
2: कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसके लिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग।
3: कोयल आम की डालियों पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नक्षिक से सज कर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी, अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी थी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े में छिपा दिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा,
4: इतनी जल्दी सुधली?
3: विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित हो कर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। ये वो अधखिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थीं। ये पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति वो अग्निज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं झला। हत बुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। ये घर का जमींदार विमल न था, वो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाग्नि पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की मां चौंकी, शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मात्र स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थी। मां पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा,
5: अम्मा ये देखता क्या हूं?
6: अरे तुम तो जानते ही हो, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे।
5: सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था?
6: अब वो तो तुम्हारी खोज लेने के लिए। अरे उन्होंने दया

0: ना की होती ना तो आज घर में किसी को जीता ना पाते तुम।
1: बहुत अच्छा होता।
2: अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था। फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे।
1: अब तो फूलों की सेज ही पीछे देखता हूँ।
2: तुम किसी के भाग्य के विधाता हो।
3: विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला,
1: अम्मा अम्मा मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इस पिशाचिनी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे तो ईश्वर मिल जाता, पर इसे ना पा सका।
3: ये कहकर वो कमरे से निकल आया और माँ के कमरे में लेट रहा। माँ ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी, साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्त दाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया, लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद यह मानसिक संताप और भी दुसह हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा। मां बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई।
4: इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौंस सहूं। यहां तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए।

0: संध्या का समय था, सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था, उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहां तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, कहां शीतला के आते ही आंखें खुल गईं। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला,
1: अभी आई है? आज के 3रे दिन आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी।
0: ये सुनकर शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है पर कितना विषाक्त, हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है, और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं, कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। 3रे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। रात शोक का बाह्य रूप है। उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दिया, वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरण शैया की ओर चली। उसने मृत देह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वो मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली,
2: मुझे यहां डर लगता है।

0: उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वो अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है, झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगीं। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते।
1: मैंने घोर अत्याचार किया है, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई।
0: मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थीं, वे उन्हें मालूम थीं, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत में उन्होंने लिखा,
1: उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूं, या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा।
0: इस पत्र का उत्तर आया,
2: अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा। यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा।
0: सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसे दिन प्रस्थान कर दिया और किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो दोनों सालियां आकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बातें करने लगीं। ये बातें कोई सामान्य बातें न थीं, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह चिढ़ा रहे थे और हकीकत बयां कर रहे थे और उसे आईना दिखा रहे थे। तभी एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गईं और बोली,
2: बेटा तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, देश विदेश घूम आए हो, कहीं सुंदर बनने की कोई दवा नहीं देखी?
1: माताजी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए।
2: तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं? आराम करो।
0: सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे। तभी अचानक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। सुरेश ने आवाज पहचानी, मानो प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उसके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, रंग वही था, पर आंखें आंखें और थीं।
3: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार से है, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, मंगला की माँ राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
4: आशा है आपको ये कहानी आभूषण बहुत पसंद आई होगी और अब सुनते हैं ये गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो दीपा, हम लोग ने बहुत सारी जानकारी और कहानी भी प्रस्तुत करी है।
4: बिल्कुल, और कहानी सुनकर वाकई में सभी को आनंद आया।

0: हमें भी आनंद आया. और अब देखो
1: क्या देखो नवीन शिक्षा सत्र की जो शुरुआत हुई है तो उसमें देखते हैं कि शुरुआत या यूं कह लें कि बच्चे अगली क्लास में जाने लगते हैं तो उनके अंदर बहुत उत्साह खुशी होती है क्योंकि उनको स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर किताबें कॉपी बैग बॉटल टिफिन जूते सब कुछ नए मिलते हैं दीपा. और कौन से दोस्त पुराने नए मिलेंगे, टीचर कौन सी होंगी, हर छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में चलती हैं और तभी खुशी से स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं.
0: कुछ तो बच्चे तैयार हो जाते हैं लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को डर भी लगता है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, मिस पता नहीं कैसी होंगी, गुस्सा तो नहीं करेंगी, दोस्त नए कैसे होंगे, फिर वही भारी बस्ते किताबें, कितना सब कुछ कठिन होगा है ना. लेकिन मिस उन्हें ये भी लगता है मिस डांटेंगी तो नहीं, मम्मी पापा से दूर जाना होगा, कुछ ऐसे ही मानसिक शैक्षिक तनाव और स्कूल जाने का डर मन में कई बच्चों की ये भी कुछ इस तरह से भी बैठ जाता है.
1: बिल्कुल दीपा बैठ जाती है. और बच्चों के सामने कुछ आने वाली समस्याएं भी होती है जैसे वहां पर कैसे अपना एडजस्टमेंट बैठाएंगे, नया माहौल होता है चूंकि बच्चों के लिए और सख्त नियमों और अलग पढ़ाने के जो तरीके होते हैं नए शिक्षक वहां पर आएंगे और वो अब किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी उनके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है. तो उनको कैसे तालमेल बिठाना है बच्चों को ये सब सोच के ही थोड़ी सी दिक्कत सी लगने लगती है. और स्कूल जाने का डर और घबराहट से वे कई तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं. और अक्सर देखा होगा तुमने बच्चे सुबह उठते ही रोना शुरू कर देते हैं कि मम्मी आज नहीं जाऊंगा, पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, इस तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं. और कई बच्चे तो बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, कुछ कहेंगे भी नहीं, बस रोए जा रहे हैं.
0: हाँ, तो ऐसा भी होता है भाई देखो ना क्या हो गया है, अब गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म हो गई है, जो खेल कूद और मस्ती भरे दिन थे वो भी कहीं उड़नछू होते चले जा रहे हैं. एक लंबे समय के बाद अचानक पढ़ाई के रूटीन में जब बच्चे लौटते हैं ना तो ऐसा व्यवहार हम देखते ही हैं अक्सर. और वहीं पढ़ाई का कहीं ना कहीं एक बोझ सा भी उनको लगने लगता है, नई शिक्षा के कठिन जो ये सिलेबस है पाठ्यक्रम है और फिर जो होमवर्क आ जाता है, उनको गृह कार्य आ जाता है, इसमें समय उनका पूरा निकल जाता है और उनको एक दबाव सा शुरुआत में लगता है. फिर वो धीरे धीरे उसकी आदत में आते हैं लेकिन पहले उनको ऐसा लगता है अभी तो हम दिन दिन भर खेल रहे थे, अब अचानक से एक नियम उनके ऊपर बन गया, एक रूटीन उनका बनना शुरू हो गया है.
1: बिल्कुल. और जो उनकी दोस्त मित्र मंडली है, सहकर्मियों का दबाव भी उनके ऊपर पड़ता है दीपा. और दोस्तों का साथ छूटना या नए साथियों के बीच खुद को स्थापित करना, साबित करना और सामाजिक स्वीकृति पाने का तनाव भी बच्चों में देखा जाता है. और इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने, स्क्रीन टाइम कम करने और खेलने पढ़ने के बीच संतुलन बनाने में बच्चे अक्सर असमर्थ रहते हैं. उनको लगता है अरे हम खेल नहीं पाएंगे, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा. तो जल्दी उठना और खेल नहीं पाना, इसके बीच में बच्चे बड़े फंसे रहते, उलझे रहते हैं कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा. उनको पढ़ाई से पीछे भागते क्योंकि होता यही कि इतने दिन छुट्टियां होती लंबी तो बच्चों की वो छुट्टियों में आराम से उठने की आदत होती है और घंटों घंटों खेलना रहता है, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहता है. तो नए सत्र में ये चीजें रहती, तो वही माता पिता और शिक्षक देखो बच्चों की मदद करें.
0: बिल्कुल, इनका सपोर्ट और इनका मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को, छोटे बच्चे जहां अगर उनकी अगर हम बात करें तो प्यार से उनसे बात करना बहुत जरूरी है, उनके मन की बात जानना, उनसे उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रहा है ये पूछना. फिर बच्चों को डराने के बजाय हम लोग क्या डरा डरा करके कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं करोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो देखो वैसा हो जाएगा, ये नहीं करके दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी जितनी भी समस्या है वो खुलकर बता सके. फिर बच्चों के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना होता है, वो उसमें ऐसा नहीं कि आज बनाया तो वो कल ढल जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन वो उसमें ढल जाएंगे. फिर इस दिनचर्या में पढ़ाई खेल और फिर अच्छे से सोना, इन सब का एक सही संतुलन होना बहुत जरूरी है. अब होमवर्क है, फिर बैग पैक करना, ये सारी तैयारियां करनी एक दिन पहले करना बहुत जरूरी हो गया है. जूते पे पॉलिश है या नहीं, यूनिफॉर्म पे बराबर इस्त्री है या नहीं, धुले हैं या नहीं, ये सब बहुत छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स देखेंगे लेकिन जहां बड़े बच्चे हैं वहां उनको ये सब चीज देखना होती है. तो थोड़े से एक रूटीन जो बिल्कुल स्वच्छंद भी रूटीन था, कुछ रूटीन ही नहीं था, और अब एक सिस्टम चला जा रहा है, एक दिनचर्या उनके ऊपर आ रही है कि नियमित तरीके से ये करना होगा आपको, तो थोड़े से परेशान होते हैं लेकिन हमें उनकी भी उलझन को समझना बहुत जरूरी है.
1: बिल्कुल, उनको छोटी छोटी चीजें उनकी उनसे करवाएं और उनकी तारीफ भी करें कि देखो भाई तुमने अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म रखी है और साथ में बैग भी तुमने अच्छे से लगा लिया है और शूज भी सही जगह से तुमने रखे पॉलिश करके।

0: तो और देखो तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इनको लेके जाओगे स्कूल में तो बच्चे कितने खुश होंगे और साथी तुम्हारे कितने खुश होंगे, नई टीचर बहुत प्यार करेगी। इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा कहना चाहिए कि हम बहला फुसला कर बच्चों को स्कूल भेजें तो बच्चों का मन भी लगेगा,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो हम
1: वही देखिए जी, संदेश भी आए हैं हमारे श्रोताओं के। एक संदेश कहता है कि नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत को नई ऊर्जा और योजना के साथ करना ही सफलता की कुंजी है। नवीन सत्र की शुरुआत केवल नई कक्षाओं में प्रवेश भर नहीं है बल्कि नए सपनों, नए संकल्पों और नई संभावना की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समय है पुराने अनुभव से सीख लेकर नई ऊर्जा और उत्साह के साथ ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि नई शिक्षा सत्र की शुरुआत, भाई हम लोग के समय में शिक्षा सत्र की शुरुआत जुलाई माह से शुरू हुआ करती थी और फरवरी मार्च तक परीक्षाएं शुरू हो जाया करती थी, लेकिन अब गतिशील समाज में शिक्षा को दान का विषय न मानते हुए स्वयं के लिए वित्तीय वर्ष के अनुसार मार्च से अप्रैल तक कर दिया गया है। फलस्वरूप दान का विषय पूरी तरह से व्यापार विषय का दृष्टिकोण चुका है। इस तरह से इन्होंने बातें लिखी है। लेकिन देखा जाए दीपा, तो हम लोग के समय भी जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारी तैयारियां करते थे जाने के लिए। मम्मी लोग कितनी तैयारियां करती थी, फिर हम लोग भी पहले दिन तो बड़े खुशी खुशी जाते थे, फिर अगली बार जब एक हफ्ते बाद लगता था अरे फिर से जाना है, फिर से पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं मन पीछे की ओर भागता था। लेकिन भाई माता पिता इतने प्यार से करते थे तो पढ़ना तो पड़ता ही था, और पढ़ना तो सब बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात है, है ना।
1: बिल्कुल, क्योंकि तो, ये आपके जीवन के जो नींव है वो बनाती है।
0: बिल्कुल। तो भाई अपने बच्चों को बहुत प्यार से भेजें स्कूल, उन्हें डराया नहीं, और बल्कि अब चलिए उनको एक गीत सुना देते हैं।
1: चलिए।

0: मंजरी, जैसे शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है वैसे ही बस अब कुछ ही दिनों में मच्छरों की आतंक की शुरुआत होने वाली
1: है। हम इतना मतलब ये तो बात है ही, लेकिन साथ में एक सुखद अनुभव ये भी होगा कि बरसात की, वर्षा ऋतु की भी शुरुआत हो जाएगी,
0: बिल्कुल गर्मी
1: और हर एक अच्छी चीज के साथ एक चीज है जो कि

0: कहीं वो उसमें एक खामियां भी लेकर आती है ना, साथ साथ में होती है।
1: देखो गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें जब बारिश की फुहारें आएंगी और जो कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हुई भी है तो कहीं नहीं हुई है तो वो लोग बारिश के लिए बेताब भी हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो इन सब कीट जो पतंगे होते हैं इन सबका घर में आना जाना, मच्छरों का आना जाना बहुत शुरू हो जाता है। तो मच्छरों से बचाव के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमको। तो उसके लिए कि पहला तो मच्छरों से बचाव के लिए घर में और आसपास पानी जमा मत होने दीजिए, हमारे साथी लिख रहे हैं। और साथ में आपके अंदर घर के अंदर भी बहुत सारे हम ऐसे इंडोर प्लांट्स रखते हैं जिनमें पानी हम भर के पानी में पौधे उगाते हैं, तो उन पानी को आप बदलते रहें हर दो दो दिन पे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे उसमें लार्वा ना पनपने पाए। तो इन चीज का हमें ध्यान रखना है। और
0: बिल्कुल, और ये हमारा एक और संदेश है जो कहता है कि हमारे यहाँ यानी सूरत से है ये, और कह रही है कि सुबह सुबह हल्की सी बारिश हो गई थी, वो भी अब लगता है कि कहीं झपकी के मूड में आ गई है, यानी कि थोड़ी सी बारिश हुई होगी फिर रुक गई होगी। और बारिश हो और मच्छरों का उपद्रव ना हो ये तो संभव नहीं हो सकता। ये तभी कर सकते हैं कि आप अपने घर के आसपास या गमलों में पानी ना जमा होने दें, अगर हो तो उसको निकाल लें क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें, घर की खिड़कियां या दरवाजे पर भी जाली अवश्य लगवा लें, घर में कपूर जलाएं या नीम के तेल का दिया जलाएं, ये मच्छरों को भगाने में मदद करता है।
1: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मच्छरों से बचाव गर्मी की एक सबसे बड़ी समस्या है होती है, गर्मी और बरसात की जारी है। मच्छरों से बचाव के लिए अपने आस पास जहाँ पानी जमा रहता है वहाँ पानी जमा न होने दें, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो आसपास जो कलर वगैरह कराया है वो हल्के रंगों का हो और सफाई करें। और ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा मच्छरों के जो लार्वा है वो पनपते हैं, और जब भी सोएं मच्छरदानी के को लगा करके आप सोएं और मच्छर से बचाव करने वाले जो कुछ आप उपाय कर सकते हैं वो करें, तो इससे क्या होगा कि आप मच्छरों के काटने से बचे रहेंगे।
0: बिल्कुल, और साफ सफाई का तो देखो विशेष ध्यान रखना होता ही है। कई हमारे सखियां होंगी जिनके घर में ऊपर छत है तो वहां पर हम ऐसा होता है ना अक्सर कि जो काम की चीजें नहीं है वो हम रख देते हैं, जैसे कोई डब्बा रख दिया है, कोई ट्यूब टायर वगैरह रख दिया है, या कोई ऐसी ऐसा सामान लकड़ी का कि साल भर उसका इस्तेमाल ही नहीं होता, कभी कभी होता है तो हम उसमें हाँ, और ऐसी जगह पर जहाँ पे धूल मिट्टी और फिर उसके बाद पानी अगर इकट्ठा होने लग जाता है तो बेशक वहाँ पे मच्छरों के लार्वा पनपने लग जाते हैं और वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें ठीक है, हम मानते हैं कि गर्मी के दिन है, बहुत मुश्किल होती है एकदम गर्मी में छत पे जाना और सब साफ सफाई करना, लेकिन ये एक बार अगर आपने पहले से ही कर दिया तो बारिश आने के पहले ही अगर सफाई हो जाएगी तो वहां पे गंदा पानी होगा ही नहीं, और उसके बाद कुछ कुछ दिनों में वो सफाई हमें करते रहने पड़ेगी, क्योंकि हर मौसम का एक अपना अगर सुकून है तो ध्यान रखने की बात भी जरूरी है।
1: बिल्कुल, और जैसे ही शाम होने लगे तो उस समय घर के दरवाजे खिड़कियां आप बंद कर दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: खिड़कियों में दरवाजों में जाली लगी हो तो आपके हर घर में हर उसमें लगी हो कमरों में तो आपको बहुत आराम रहेगा, मच्छर आने नहीं पाएंगे। और मच्छरों से
0: और ये इसमें ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 5 से 7 बजे के बीच में मच्छर आ जाते हैं तब क्या उजाला रहता है, हमें लगता है नहीं अभी बंद कर देंगे तो थोड़ी गर्मी लगने लगेगी और हम खिड़कियां खुली रखते हैं, लेकिन ऐसा न करते हुए 5 बजे 6 बजे के बीच में ही आप सारी खिड़कियां बंद कर लें। बाद में थोड़ी देर के बाद अगर आप खोलते हैं तो चलता है, लेकिन मच्छर वाली अगर जो बारीक छेद वाली अगर खिड़कियां हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि विशेष तौर पर मच्छर से बचने के लिए दरवाजे भी बनाए गए हैं आजकल, तो छोटी छोटी खिड़कियां भी होती हैं, स्लाइडिंग विंडोज भी होते हैं, इस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे घर में है तो उनको कपड़े पूरे बाहर के और पूरे पैरों को ढके, उनके शरीर उनका ढका हुआ रहे भले ही वो पतला कॉटन का कपड़ा हो।
1: और देखो इसके साथ ही जो घर में हम चादर वगैरह बिछाते हैं वो भी हल्के कलर के होने चाहिए, अगर हम गहरे रंगों के भूरे हैं काले नीले बिछाएंगे तो उसमें मच्छर बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, जितना हल्का कलर होगा उतनी जल्दी आप उनको देख सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। फिलहाल तो हम एक गीत सुन सकते हैं,
0: इससे हम बचना बिल्कुल नहीं चाहते।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना।

0: अब तो भाई
1: सुरीले सा संगीत हो और फिर कुछ ही दिनों में झमाझम बारिश होगी, ऐसे में अगर चाट मिल जाए रंग बिरंगी उत्तर प्रदेश की तो फिर क्या ही बात है। तो फिर चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। टिक्की बनानी होगी, उसके लिए उबले हुए मैश किए हुए आलू लेना है 4-5, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर आप ले लीजिए 3-4 चम्मच, और छोले यानी कि सूखी सफेद मटर होती है वो लेना है 1 कप, रात भर भीगी हुई, रात को ही भिगा लीजिएगा अगर आपको अगले दिन बनाना है। हल्दी 1 चम्मच, नमक, गरम मसाला, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और चटनी है स्वाद अनुसार, और गार्निश के लिए हरी चटनी आपको लेना है, उसमें पिसी हुई धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू होते हैं। ये तो बन गई आपकी हरे धनिया की चटनी। मीठी चटनी भी बनानी होगी, उसके लिए आपको इमली या अमचूर और चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर गाढ़ा सा एक आपको चटनी बनानी है, मीठी चटनी, ये भी ऊपर से डाला जाएगा।

और फिर फेंटा हुआ मीठा दही चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, काला नमक, चाट मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और कटे हुए प्याज, और ऊपर से सर्व सजाने के लिए हरा धनिया। भाई हमारे सखियां कहेंगी बहुत सारी चीजें, लेकिन भाई मजा भी तो तभी है ना, उसका स्वाद भी उसी तरह से बढ़ेगा। अब मटर आप उबाल लीजिए, भीगी हुई जो आपने रात भर रखी थी, इसमें हल्दी नमक डालकर पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी उलिपटी सी हुई होनी चाहिए। टिक्की कैसे तैयार करना है, मैश किए हुए आलूओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर गोल और चपटी टिक्कियां तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको पसंद हो घी से या तेल से आप इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से, सुनहरा और कुरकुरा होने तक। प्लेटिंग कैसे करनी है, एक प्लेट में 2 टिक्की या जैसे आपको घर में पसंद है उस तरह से रखिए। उसके ऊपर गरम जो माफ कीजिएगा उसके ऊपर जो तैयार की है आपने गरम मटर वो डालिए, मसाले और चटनी डालना है। और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर

0: कुरकुरा होने तक। प्लेटिंग कैसे करनी है, एक प्लेट में दो टिक्की या जैसे आपको घर में पसंद है उस तरह से रखिए, उसके ऊपर गरम जो माफ कीजिएगा उसके ऊपर जो तैयार की है आपने गरम मटर वो डालिए, मसाले और चटनी डालना है। और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर फैटा हुआ दही, फिर हरी चटनी और बहुत सारी मीठी चटनी डालिएगा, या घर में अगर आपके किसी घर में तीखा पसंद है तो हरी चटनी ज़्यादा डालिए। इसके बाद चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये सब हल्का हल्का भो रखना है। और फिर आखिर में कटे हुए प्याज डाल के हरा धनिया से आप इसे सजा कर सर्व कीजिए।
1: और इसी तरह हरी धनिया के आलू भी बनते हैं। हरी धनिया के पुदीने की बढ़िया चटनी बनाइए, उबले आलू लीजिए और उसके सबको मिक्स कर दीजिए तो आपके हरी धनिया के आलू जो चाट है वो तैयार हो जाए।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: तो दीपा देखो, बातें करते करते एकदम समय का पता ही नहीं चला, तो हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे और बहुत अच्छी सी रेसिपी भी लिखकर भेजी.
1: बिल्कुल, तो और रेसिपी जो भेजी है उसको आप, लंबी है लेकिन बनाइएगा जरूर, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत स्वादिष्ट और मजेदार लगेगी. और अपना ध्यान रखिएगा मच्छरों से भी, और बच्चे नहीं अभी जब स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा जिद करेंगे या मन उनका नहीं होगा, तो उनका मन को बहलाइए खूब अच्छी ये इस तरह की रेसिपी बना के.
0: तो अब विदा लेते हैं प्रोग्राम से, सभी को मंजरी वर्मा और
1: दीपा माहेश्वरी का नमस्कार.

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपसे बात करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
2: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बड़े स्टूडियोज हैं, फिर सब लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगा
1: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं?
2: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवें आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूंगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं उनमें अबाउट 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गांवों में चले जाएं, छोटे शहरों में चले जाएं, तो ये बीमारी थोड़ी कम है और इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना जरूरी है

0: फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है, और अगर लिवर खराब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करता है. अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज्यादा हो जाए तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है. सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है.
1: जी, तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
0: तो सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफी सैचुरेटेड डाइट हो गई है. हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है अगर वो ज्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को खराब करता है. डायबिटीज होना, प्री डायबिटीज होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं. तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुंच सकता है.
1: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात, और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
0: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है. जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ तब काफी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक खराब हो चुका होता है जिसको हम सिरोसिस कहते हैं. अगर हम इसको जल्दी पकड़े तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं. आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं. तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं. कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है. अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज हो सकती है या प्री डायबिटीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर. तो ये 2-3 लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो. क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है. बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं है. सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते.
1: जी, तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जांच पद्धति है?
0: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वजन कितना है. अगर वजन हमारा बढ़ रहा है या ज्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं जिसमें एक हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI जो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज्यादा हो तो देयर इज अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो. फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है. अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आए कि लिवर फैटी है तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है. पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है. फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है. बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसानदेह दे सकता है. टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं. एक मशीन आती है हमारे ओपीडी में जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं. क्योंकि अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है.
1: जी.
0: कई नए अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं. थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है हमारे हॉस्पिटल में क्योंकि हम काफी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में. तो एक MRI करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है. अब ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से. अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं. पर मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि 2 मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूं कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है. बट इसके लिए पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं. अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे.
1: जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी

0: ठीक नहीं है, खासतौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
1: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफी साल, 14-15 साल मैंने वहां बिताया।
0: अच्छा,
1: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफी साल। फिर 14-15 साल छोड़ के मैं वापस आ गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो वहां मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था, शाहरुख खान का,
0: ये जो देश है
1: मेरा। ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद।
0: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की हमने वहाँ पे, तीन साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू इट, तो मैंने एक साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीजन है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज की थी, मैं बताऊंगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग खत्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो करते हैं हम, एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखे, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ERCP करके टेस्ट होते हैं, जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे पढ़ने को। फिर 4-5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइड

0: के वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया।
1: अरे क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लीवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यू नो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम एक दवाई लिख के दें
1: जी।
0: तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5-10% भी वजन कम कर पाए, किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5-10% आपने वेट कम कर लिया तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके बाद और नई दवाई है, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं, जिससे फैटी लिवर भी कम होता है और लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में दो और दवाइयां अभी अप्रूव हुई हैं, एक साल पहले हुई थी, कभी 6 महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे ज्यादा दवाई हम यूज करते हैं इसके लिए वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो आजकल काफी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल है दवाइयां, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर है कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं। स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है। तो ये दवाइयां थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन, बिना दवाई के हो सकता है। मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3-6 हफ्ते का चांस देता हूं कि वेट लॉस करो। अगर वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
0: हाँ, बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर स्ट्रेस गो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूं, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा, एंड यू नो फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जंक फूड खा लिया, डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सबसे भी अपने बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, यू नो प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, 5 मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और काम खत्म। तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर, एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया, देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम। फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है। तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, बट उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती है।
1: जी जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
0: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को ले, 100 लोगों को ले जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2-3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ। अगर आप देखें हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दे

0: इट्स अ वेरी बिग नंबर, बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है. एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20 से 30 गुना ज्यादा होती है. तो लिवर फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोसिस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई जाते.
1: जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को.
0: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ. थोड़ी बीट सुननी चाहिए, भाग मिल्खा भाग वाला गाना.
1: क्या बात है,
0: मुझे पसंद है.
1: सुनते हैं फरहान अख्तर, पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है. सुनते हैं यही गाना और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए.

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सोरायसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही है। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफी हद तक खराब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
1: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी है, फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है?
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है उनका हम अगर डायबिटीज का चेकअप करें तो काफी लोगों को प्री डायबिटीज होता है, मतलब डायबिटीज शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7-5.8 होता है। मोस्ट प्लेसेस में आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6-5.7 है, आपको प्री डायबिटीज है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीजन, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में है, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल की जो डायबिटीज की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है।
0: ओके,
1: सो इट वर्क्स बोथ वेज।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: ना, अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है, खाने पे ध्यान दो। हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफी पोअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था, भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो, और सबका सवाल, आधे लोग बोलते हैं हम वॉक करते हैं। तो वॉक इज नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 2 दिन थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन, चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
0: जी, कई बार लोग, ये भी भ्रांति है, मतलब गलतफहमी है लोगों में कि प्रोटीन खा

0: खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है। एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा।
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके दो जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर होता है। और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया बीइंग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज्यादा कर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। अगर हमारी डाइट देखे 70-80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10-15% प्रोटीन है। और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में। तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है, इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए। हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम, इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा। उससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाते हैं।
0: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डाइटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें। इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें। और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब।
1: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है, और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं। अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे। सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं, ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहां से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा है मुझे, किसी ने लिखा है मेरी बहन को है, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रोबेबली फैटी लीवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है, तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है। जैसे बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो बोलते पेट दर्द कर रहा है, या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज्यादा लो, फल फ्रूट ज्यादा लो। अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
0: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
1: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी थी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाएं और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही की कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है, तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। IBS होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है, वो पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है।

0: क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी, हर एक बीमारी को अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम
1: जी।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसा लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई वॉमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है
0: जी।
1: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का ये वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हेवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ और लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है। तो इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी वापस खाने के पाइप में आ गया है
0: जी। तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
1: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो, सबसे इम्पोर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए, खाने के बाद टहलिए थोड़ा 10-15 मिनट तक, खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज कहूंगा, जो चीज आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं
0: जी। जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
1: हाँ, तो ये भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं कि

0: के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं लेते रहते हैं। बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स को, जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है। खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई हो और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
1: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रहा हूं, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जांच नॉर्मल है, फिर क्या?
0: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। जैसे IBS बोला मैंने पहले,
1: जी जी जी।
0: सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया, मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो।
1: जी, तो इसका कुछ मतलब इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा दी?
0: ऑफ कोर्स इसकी दवा होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से ही शुरू करते हैं। अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती है, जैसे एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज्यादा आ रही है, सीलैक डिजीज बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, वो लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है। माइंड एंड स्टमक आर कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा,
1: दोनों एक दूसरे के पूरक है।
0: Correct.
1: और वो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए।
0: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का ही गाना है, छैया छैया।
1: चल छैया छैया सुनते हैं यही गाना।

डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि ये जो समस्या है एसिडिटी की, सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा

0: लो ठीक रहेगा। तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई। तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिटी की दवाई अगर ज्यादा देर तक लेते रहो तो

0: बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी हो जाए, कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए, तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। तो ये दवाइयाँ जरूरी हैं, है हमारे काफ़ी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफी लोग ऐसे भी करते हैं जैसे अपने का दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज अ प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू, कि अगर आपको हमेशा जरूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूं कि एक बार आपका कोर्स खत्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली लेते हो जाओ।
1: जी जी,
0: सो दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
1: जी, लेकिन वो आदत न डाल ले, ये गड़बड़ है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियां होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियां, तो क्या वो भी इसी वजह से होती है? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
0: अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होता रहे तो दैट इज अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज्यादा देखते हैं डायबिटीज पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज पेशेंट्स को अगर डायबिटीज बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती हैं, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो डायबिटीज पेशेंट को पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपेरिसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है और थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहां से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है। एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर्स ऑफ द इंटेस्टाइन आल्सो।
1: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है लेकिन इग्नोर न करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं वैसा करें।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सेकेंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकेंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या कि

0: सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.3 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोताओं, अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं और अब समय है युवा श्रोताओं के खास कार्यक्रम युववाणी का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का अपने कार्यक्रम युववाणी में। और दोस्तों, आज है आपके साथ आपके दो रेडियो दोस्त, मैं चेष्टा गौतम
1: और मैं निकिता। वैसे दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि आज है सोमवार, हफ्ते का पहला दिन, जहाँ पे हमें ना बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ के एक फ्रेश स्टार्ट हम कह सकते हैं उन्हीं चीजों को करना होता है जो हम डेली लाइफ में करते हैं। यानी कि हमारे एक पूरे वेकेशन वाले दिन के बाद हमें फिर से रूटीन में वापस लौटना होता है और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अपने वर्क प्लेस पर जाना, अपने डेली रूटीन का फॉलो करना उसे।
1: बिल्कुल, और कुछ ऐसे काम भी होते हैं ना जो हमें, हम शेड्यूल में फिक्स तो करके रखते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो भी करना है, लेकिन जो हम नहीं कर पाते ना, हमें कोशिश भी करनी होती है कि हम उन्हें कहीं ना कहीं पूरा कर लें।
0: तो वो कहीं ना कहीं आके ना मंडे पर ही आता है कि मंडे से हम इसको स्टार्ट करेंगे।
1: बिल्कुल, और जब भी ना कभी कुछ नया शुरू करने की बात आती है ना चेष्टा, तो मैंने अक्सर लोगों को ये बोलते हुए कहते हुए सुना है कि भाई मुझे ये करना है, हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। ये कुछ नया काम करना है, सोच रही हूँ मंडे से स्टार्ट
0: करें।
1: ये तो मतलब ऐसा लगता है कि मंडे सबका फेवरेट डे हो जाता है किसी भी काम को शुरू करने का। और मुझे लगता है कि आज जो हमारी मंडे की ये शाम की जो शुरुआत हुई है ना, ये काफी अच्छी होने वाली है।
0: बहुत अच्छी,
1: क्योंकि हम जुड़ चुके हैं हमारे सभी श्रोताओं के साथ हमारे अपने कार्यक्रम युववाणी में, जहां स्वागत कर रहे हैं हम आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम युववाणी में। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम युववाणी,
0: और चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ।

0: चेष्टा बिल्कुल इसी तरह कितना खो जाते हैं ना हम, मतलब सुरों की दुनिया में, जब ये सुर हमारे कानों में पड़ते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे तो ना बहुत सुकून कुछ हमें मिल रहा हो।
0: बिल्कुल, हम सुरों से इस तरीके से जुड़ जाते हैं जैसे कि जन्म जन्म से उनसे हमारा बंधन, और वो हमारे साथ दोस्त की तरह भी रहते हैं। मतलब ऐसा दोस्त जो हमारी अनकही बातें बिना कहे समझ जाता है, अनकही मतलब व्यक्त जो भावनाएं हमने कभी की ही नहीं
1: वो समझ लेता है
0: और उस हिसाब से फिर हमारा मूड भी हो जाता है।
1: हाँ, और तभी तो हम कभी किसी से पूछते कि आपका फेवरेट सॉन्ग है, तो कोई बता नहीं पाता कि उनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा होता है, क्योंकि हर एक इंसान अपने मूड के अकॉर्डिंग सॉन्ग प्ले करना पसंद करता है।
0: लेकिन दोस्तों, अब आप जरा ध्यान दीजिए और जरा सोचिए कि आपका अलार्म सुबह बजा, आपके दिन की शुरुआत हुई, भागदौड़ शुरू हुई, अब आपको करना क्या है, बहुत सारे काम है आपके पास, आपके कॉलेज का असाइनमेंट है, आपके वर्क का प्रेशर है, घर की जिम्मेदारियां हैं, या फिर अपने फोन को ही देख लो कि बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, और इन सब के बीच में हम अक्सर एक बात भूल जाते हैं, अपने मन की सुनना। बाहर की आवाजों में उलझकर हम अपने अंदर के शोर को अनसुना कर देते हैं।
0: लेकिन जब दोस्तों मन का यही शोर बढ़कर तनाव बनने लगता है, तब हमें क्या याद आता है? हम यही ढूंढते हैं ना कि ये जो हमारा तनाव है ये फटाफट से कम हो जाए, हम बिल्कुल अच्छा फील करें, फ्रेश फील करें। तो उसमें एक ही चीज हमारा साथ देती है, जिसकी बात हम अभी जस्ट कर ही रहे थे, वो है सुरों की दुनिया, यानी कि संगीत।
1: बिल्कुल निकिता, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा होता है कि कभी पूरा दिन खराब गया हो, लेकिन शाम को कोई पसंदीदा गाना सुनते ही मन हल्का लगने लगा हो?
0: बिल्कुल, मतलब ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है, और मुझे लगता है ना कि इस टाइम पे चेष्टा हमारे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं, तो वो अपने आप को हमसे रिलेट कर पाए, हमसे जोड़ पाएंगे, क्योंकि ये जो संगीत है ना, ये सिर्फ एक तरीके से हम कह नहीं सकते कि सिर्फ एंटरटेनमेंट है। ये संगीत वो है जो हमारी फीलिंग्स को समझता है, मतलब हमारी फीलिंग्स को अच्छे से कैरी करता है, एक फ्रेंड की तरह है। जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि बहुत अच्छा फ्रेंड होता है ये जो सुर की दुनिया जो होती है हमारी। अब ऐसे में जो है, हम कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी हम लो फील करते हैं, कभी हाई एनर्जी हमारे पास होती है, कभी हमें डांस करने का मन करता है। तो ऐसे में जो होता है ना, हर पड़ाव पे ये संगीत हमारे साथ होता है, क्योंकि देख लो ना, जब हम खुश होते हैं तो हम उसी तरीके का म्यूजिक लगाकर सुनना पसंद करते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो हम वही थोड़े से स्लो गाने, सैड सॉन्ग्स हैं, हम वो लगा लेते हैं, जब हमें एक्सरसाइज करनी होती है तो हम एनर्जेटिक गाने लगाते हैं। बिल्कुल, कभी हमें जैसे लाइफ में मोटिवेशन चाहिए होता है, तो बिल्कुल हम लाइफ को प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस कर सके, ऐसे हम गाने सुनना पसंद करते हैं। कोई योगा मेडिटेशन कर रहा है तो उस तरीके के सूदिंग गाने सुनना पसंद करता है। ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट है जो सबके हिसाब से अलग अलग होती है,
1: और कहीं ना कहीं जो संगीत है ना, वो एक इंसान को, मतलब जैसे कि अभी हमारे अगर फादर हुए, मदर हुए, तो उनके जमाने के गाने कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पाएंगे। हमें मतलब ऐसा नहीं है कि उनके जमाने के गाने गए तो अब हमें वो अच्छे ना लग रहे हो। संगीत वो चीज है जो एक एज के इंसान को दूसरे एज के इंसान से जोड़ता है।
0: यानी कि चेष्टा, मैं तुम्हारी बातें समझ पा रही हूँ, तुम ये कहना चाह रही हो कि ये जो सुर और संगीत की दुनिया है ना, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है।
1: हाँ,
0: कि ये जनरेशन है या फिर इस समय का ये गाना है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद आया होगा या फिर आएगा जो उन्हें सुनते आए हैं या उस समय पे जिन्होंने इसे सुना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता,
1: संगीत कहीं ना कहीं टाइमलेस होता है। और शायद यही वजह है कि हर इंसान की जिंदगी की अपनी एक ना अलग सी प्लेलिस्ट होती है,
0: जैसा कि अभी अपन बात भी कर रहे थे।
1: और कुछ गाने याद बन जाते हैं, कुछ हौसला देते हैं, कुछ मुश्किल समय में सहारा बन जाते हैं।
0: जैसा कि अभी तुमने कहा ना, कुछ मुश्किल समय में हमारा सहारा बन जाते हैं, तो ये चीज ना काफी फील की है मैंने पर्सनली, कि जब भी ऐसा कोई फेज आता है लाइफ में, जब हमारे पास चुनौतियां होती है, मुश्किलें होती है, तब जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, रास्ता दिखाई नहीं देता, तब अगर हम सब कुछ छोड़ के एक तरफ अगर हम मतलब गाने सुनने की कोशिश करते हैं, और मैं तो अक्सर यही करती हूँ, जब मुझे कहीं पे कुछ रास्ता नजर नहीं आता, मैं सिर्फ अपने
1: एयरफोन्स
0: लगा के गाने सुनना पसंद करती हूँ, और वहां पे फिर मैं ऐसे गाने सुनना पसंद करती हूँ जहां से शायद लाइफ के लिए मुझे मोटिवेशन मिले, आगे मैं प्रोग्रेस कर सकूं, चीजों को मैं बेहतर तरीके से समझ पाऊं, थोड़ी समझ मेरे अंदर विकसित हो। तो ऐसी चीजें

0: और ऐसे गाने मैं सुनना पसंद करती हूँ. तो शायद यही चीज है कि हम लोग मतलब संगीत सुनने से एकदम मतलब अच्छा फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं. और पता है चेष्टा, वैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि हम जब संगीत सुनते हैं उस टाइम पे हमारे जो मस्तिष्क में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, हम कह सकते हैं कि ऐसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें खुशी देते हैं, सुकून का एहसास कराते हैं. और इसीलिए जब हमें स्ट्रेस होता है तो उस टाइम पे गाने सुनने के बाद हमें एकदम से बेहतर महसूस होने लगता है.
1: बिल्कुल. और ये बात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देती है कि सुबह कई लोग भजन या शांत संगीत सुनकर दिन की शुरुआत करना पसंद करते हैं, और कुछ लोग पढ़ाई करते समय हल्का इंस्ट्रूमेंट संगीत सुनते हैं. वहीं अगर कोई लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हो या लंबी यात्रा के दौरान तो मतलब जो सॉन्ग्स है ना, उसके बिना तो अधूरी लगती है लॉन्ग ड्राइव्स या
0: और इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब भी हम यात्रा करते हैं ना तो हमें पता नहीं क्यों एक खालीपन सा महसूस होता है. और उस सफर में जब हम गाने का मतलब किसी भी गाने का आनंद लेते हुए वो सफर एंजॉय करते हैं तो वो सफर हमारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है. तो मतलब अगर हम जहां से भी निकले हैं, जिस भी पड़ाव से हम अपनी मंजिल के लिए निकले हैं, तो वो सफर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इतना खूबसूरत सफर होता है जो हमें हमारी मंजिल से भी ज्यादा अच्छा लगता है.
1: हाँ.
0: और अभी देखो ना कि जैसे शादी को ही देख लो, किसी के घर में शादी है, फंक्शन है, और वहां पे अगर संगीत ना हो, गीत ना हो, तो कुछ ना कुछ फीका सा लगेगा ना. त्योहार होते हैं हमारे, अब देखो जब भी हम कोई त्योहार मनाते हैं तो उसी की तरह के हम गाने सुनना पसंद करते हैं. सुबह से देख लो, नॉर्मली घरों में यही होता है, सुबह से जो है कोई किसी तरह के गाने सुनना पसंद करता है तो वो उसे लगा के सुनता है. तो मतलब त्योहारों को भी इसी तरीके से इंजॉय किया जाता है. शाम के टाइम पे भी लोग कितने अच्छे अच्छे से मतलब गाने सुनते हैं. वहीं अब एक चीज जो हम मतलब मैं भूल गई थी लेकिन मुझे अभी याद आया, बर्थडे. हम बर्थडे मनाते हैं, बिना म्यूजिक के हमारा बर्थडे अधूरा सा लगता है.
1: बिल्कुल.
0: जब भी हम बर्थडे मनाते हैं, केक काटते, तो हमें सबसे पहले क्या याद आता है, अरे यार म्यूजिक नहीं चलाया किसी ने, फटाफट से उनको बोलो म्यूजिक चलाए, तो एकदम से हम कितना अच्छा फील करते हैं ना. तो कह सकते हैं कि हमारे त्योहार हो गए या फिर और भी चीजें, तो सब कुछ अधूरी है म्यूजिक के बिना.
1: बिल्कुल. और कहीं ना कहीं म्यूजिक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में हेल्प करता है.
0: मतलब ये सिर्फ हमारे कानों तक नहीं, मतलब कह सकते हैं हमारी संस्कृति, हमारी फीलिंग्स, सबसे जुड़ा हुआ है.
1: सबसे जुड़ा हुआ है. और आजकल युवाओं के सामने एक और चुनौती है लगातार स्क्रीन पर समय बिताने की, कभी सोशल मीडिया, कभी ऑनलाइन क्लासेस, कभी काम, और ऐसे में मन और दिमाग दोनों थक जाते हैं.
0: बिल्कुल. जब हम ना मतलब लगातार कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं ना, तो दिमाग एक तरीके से थक ही जाता है. और ऐसे टाइम पे अगर मतलब हम 10 मिनट का ब्रेक ले लें, तो वो 10 मिनट का ब्रेक भी ना बहुत कुछ कर सकता है हमारे लिए. जब हम अपनी पसंद की धुन सुनते हैं या अपने पसंद का गाना सुनते हैं, थोड़ा सा हम घूम लेते हैं, या फिर आंखें बंद करके जब हम भी सॉन्ग को फील करते हैं, तो ये छोटी छोटी सी बातें होती है ना जो कितने अच्छे से हमारे स्ट्रेस को हमें पता भी नहीं चलता और चुटकी बजाती गायब कर देती है.
1: हो जाती है. हाँ. और मुझे तो लगता है कि संगीत की सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती. लाइक अगर आप किसी अदर सॉन्ग लैंग्वेज का सॉन्ग भी सुनोगे तो आपको ऐसा होगा, भले आपको समझ नहीं आएगा कि वो बोल क्या रहे, लेकिन आपको सुनने में इतना अच्छा लगा कि आप उसे 2-3 बार तो सुन ही लोगे.
0: बिल्कुल. और महसूस भी हम उसे कर पाते हैं. मतलब भाषा चाहे हमें समझना है, लेकिन सुरों से हम उस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि ये गाना किस टाइप का है, ये प्यार के लिए है या भक्ति के लिए है. तो ये हमें कहीं ना कहीं चीजें समझ में आती है सुरों से. और अब देखो ना, जैसे अब हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, भैया मान के चलो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है, मन थोड़ा उलझा हुआ है, या फिर बहुत कुछ हमारी जिंदगी में चल रहा है, तो ऐसे में हमें कुछ नहीं करना, थोड़ी देर से रुकना है, अपनी आंखें बंद करनी है, अपने पसंद का कोई गाना सुन लेना है और खुद को थोड़ा टाइम देना है, वहीं आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएंगी.
1: और अगली बार जब आपको लगे कि जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज हो गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई है, या मन थोड़ा उलझ गया हो,
0: तो अपनी पसंद का गाना सुन लीजिए.
1: और क्या.
0: और ये जो खूबसूरत तरीका है ना दोस्तों, ये आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे कभी भी और कहीं भी अपना सकते हैं. तो इसीलिए मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और अपनी जिंदगी की धुन को खूबसूरत बनाए रखिए.
1: बिल्कुल. तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं आपको प्यारा सा गीत,
0: जिससे कि हम इस टॉपिक से आपको रिलेट तो कर ही पाए, लेकिन आप सुरों की दुनिया से भी आपको जोड़ देते हैं, क्योंकि जब बात संगीत की ही कर रहे हैं तो संगीत से जुड़ना भी जरूरी है.
1: बिल्कुल.

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और आज आपकी रेडियो दोस्त जो आपके साथ जुड़ी हुई है, मैं हूं निकिता
4: और मैं हूं चेष्टा।

0: दोस्तों 22 जून 1932 को पंजाब के नवान शहर नाम के गांव में जन्मा एक वो शख्स जिसका पहला सपना था कि बनेंगे हीरो। 22 साल की उम्र में अपना पहला स्क्रीन टेस्ट दिया लेकिन मिला सिर्फ रिजेक्शन। कहा गया कि तुम फिल्मों में हीरो नहीं बन सकते, सख्त चेहरा और भारी मोटी आवाज हीरो के किरदार के लिए सही नहीं है।
1: मन दुखा, दिल टूटा, लेकिन हार नहीं मानी और तमाम मुश्किल और चुनौतियों के बाद कुछ ही सालों में फिल्मी दुनिया के सभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और पूरी दुनिया ने देखा कि वही ठोस सख्त चेहरा और भारी मोटी आवाज फिल्मी दुनिया में अपनी नई पहचान बना चुका है।
0: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता जिन्हें हम बतौर विलेन के कैरेक्टर में देखते आए हैं, नाम है अमरीश पुरी। दोस्तों ये नाम सुनते ही जो चेहरा और आवाज हमारे जहन में दिखाई और सुनाई पड़ते हैं उसे कौन नहीं जानता। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने इन्हें कभी ना कभी फिल्मी पर्दों पर जरूर देखा है।
1: बिल्कुल दोस्तों, जहां लोग छोटी छोटी मुश्किलों और परेशानियों से हार जाते हैं, वहीं अमरीश पुरी ने अपनी कोशिशों से 39 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखा था और इससे पहले उन्होंने नौकरी के साथ साथ थिएटर में भी काम किया था। उसके बाद इनकी मुलाकात हुई इब्राहिम अलकाजी से और उनके साथ मिलकर इन्होंने थिएटर में काम शुरू किया और बाद में पृथ्वी थिएटर में सत्यनाथ दुबे के लिखे नाटकों से उन्हें काफी अच्छी पहचान मिली थी।
0: जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने फिल्मों में कदम 1970 में आई प्रेम पुजारी फिल्म से रखा, जहां उनका किरदार बेहद छोटा था, लेकिन रेशमा और शेरा फिल्म में उन्होंने 70 साल के बुजुर्ग रहमत खान का रोल प्ले किया और इन्हीं जैसी फिल्मों में काम करते हुए उन्होंने ये देखा कि फिर भी उनके मन में एक इच्छा थी और वो एक अधूरी इच्छा कि उन्हें फिल्मों में लीड रोल प्ले करना है। अब अमरीश पुरी की विलेन के ब्रैकेट में एंट्री हुई साल 1980 में फिल्म कुर्बानी से, जहां उन्होंने किरदार निभाया रक्का का। ये फिल्म खूब चली थी और अमरीश पुरी की पहली कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म बनी थी।
1: अब दोस्तों, अमरीश पुरी ने इस फिल्म के बारे में भी लिखा था कि प्रोड्यूसर्स ने सोचा होगा कि रफ टाइप का आदमी, बड़ी बड़ी आंखें, इसे विलन बनाते हैं, तो टफ चेहरा और बड़ी बड़ी आंखों वाले अमरीश पुरी बन गए विलन और ऐसे विलन बने कि तमाम दूसरे किरदार उनकी

0: पहचान में किनारे जा खड़े हुए।
1: दोस्तों अमरीश पुरी जब इस दुनिया में अपने कदम बढ़ा रहे थे तब कंपटीशन बहुत टफ था। शोले रिलीज हो चुकी थी और गब्बर बने अजमत खान काफी फेमस हो चुके थे और अमरीश पुरी ने भारतीय सिनेमा में एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर विलन्स के रोल किए हैं। सबसे मशहूर किरदार उन्होंने निभाया साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में, जहां वे मुगैम्बो के नाम से फेमस हुए और ये उनका सबसे आइकॉनिक रोल था। उनका जो डायलॉग था ना चेष्टा, मुगैम्बो खुश हुआ। तो ये आज भी मुझे लगता है कि बच्चा बच्चा इसे जानता ही होगा।
0: बिल्कुल। और दोस्तों वहीं 1986 में आई फिल्म नगीना ने उन्होंने खतरनाक तांत्रिक का रोल प्ले किया था और साथ ही 1985 में आई मेरी जंग में भी उन्होंने बेरहम वकील ठकराल का किरदार निभाया था और 1992 की जो फिल्म है तहलका उसमें भी उन्होंने काफ़ी असरदार किरदार निभाया था और 1990 की घायल में भी बलवंत राय जैसी निर्दय वकील का किरदार उन्होंने निभाया था।
1: और पता है चेष्टा, मुझे ना एक और इनकी एक फिल्म याद आ रही है, दामिनी।
0: हाँ,
1: जहाँ पे भी इन्होंने एक वकील का किरदार निभाया है और वो किरदार इस तरीके से है कि मतलब दिल को छू जाने वाला किरदार है। जहाँ पे उन्होंने विलन का रोल निभाया है लेकिन तब भी मतलब उन्होंने जिस वकील का रोल प्ले किया है ना, वाकई काबिले तारीफ है। हर डायलॉग में उनका जो एक्सप्रेशन है, किस तरीके से व्यक्त करना है, वो सब कुछ काफी बहुत मतलब बेहतरीन था और वाकई मतलब कह सकते हैं कि तारीफ है, काबिले तारीफ। और मतलब सिर्फ भारतीय ही नहीं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो उन्होंने बहुत सारी मूवीज की है जहाँ पे उन्होंने विलेन का रोल भी किया है, दूसरे भी और भी कई किए होंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की हम बात करें तो वहां भी उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई है। जो स्टीवन स्पीलबर्ग की एक फिल्म थी जो 1984 में आई थी, उसका नाम था इंडियाना जॉन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम। उसमें उन्होंने खूंखार विलन मोलाराम का किरदार निभाया था और चेष्टा अगर तुम्हें याद आ रहा हो ना, तो उनका किरदार जो कैसा था, बिल्कुल जैसे एकदम डरावना सा और खूंखार सा जो उनका रोल था। लेकिन वहीं अगर उनकी एक्टिंग की हम बात करें, एक्टिंग उनकी देखें, तो वाकई में वो काफी मतलब बेहतरीन है।
0: हाँ बिल्कुल।
1: और वहीं पे पता है स्टीवन स्पीलबर्ग ने उनके लिए कहा था कि ये जो अमरीश पुरी है ये उनके सबसे ज्यादा पसंदीदा विलन में से एक है।
0: वही। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ विलन के ही किरदार किए, उन्होंने कुछ आइकॉनिक फादर एंड पॉजिटिव रोल्स भी किए हैं, जैसे कि 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें उन्होंने सिमरन के सख्त लेकिन संस्कारी बावजी चौधरी बलदेव सिंह का किरदार भी निभाया था।
1: और इस फिल्म का जो डायलॉग भी है ना,
0: हाँ,
1: कि जा सिमरन जा, वो जीले अपनी जिंदगी, मतलब हाँ, जब हाँ, लास्ट में वो उसका सिमरन का हाथ छोड़ते हुए कहते हैं कि जाओ और अपनी जिंदगी जी लो, तो ये डायलॉग भी है ना काफी ज्यादा फेमस हुआ है और मैं आज तक भी इसे सुनती आई हूँ। कहीं पर भी जहाँ पे ऐसी कोई बात आती है कि किसी को फ्री करना होता है या फिर कहें कि उसकी खुशियों के लिए उसे जाने देना होता है, तो लोग इस डायलॉग को इस्तेमाल जरूर करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और है ना, हमेशा के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये अमर हो चुका है। और साल 1997 की फिल्म जो विरासत आई थी उसमें भी इन्होंने काफी सम्मानित और बेहद जिम्मेदार गांव के मुखिया का बेहतरीन रोल किया और साथ ही साथ गदर मूवी हम कैसे भूल सकते हैं, जो मुझे लगता है सभी ने एक ना एक बार तो देखी होगी। 2001 में आई ये फिल्म में शकीना के गुस्से वाले पिता अशरफ अली का किरदार भी इन्होंने निभाया।
0: और दोस्तों 1996 में सनी देओल के बीमार पर असूलों वाले पिता का रोल प्ले किया और साथ ही चाची 420 में कमल हसन के ससुर जानकी प्रसाद का मजेदार और इमोशनल रोल भी इन्होंने प्ले किया था।
1: दोस्तों इन्होंने अपने 40 साल के फिल्मी करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और एक समय तो ऐसा था जब इनके पास मतलब इतना काम था कि इनको दिन में 15-15 घंटे की शूटिंग करनी पड़ती थी और उसी साल इनकी मतलब 29 फिल्में एक साथ, मतलब कह सकते हैं कि पूरे साल में 29 फिल्में इनकी रिलीज हुई थी।
0: वाओ।
1: और मतलब ये था ना कि कितने अच्छे से इनकी एक्टिंग थी और हर प्रोड्यूसर हर डायरेक्टर इन्हें अपनी मूवी में कास्ट करना चाहता था उस समय। और अगर देखें तो अमरीश पुरी जो है वो भारतीय सिनेमा के सबसे महान और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक थे, क्योंकि उनकी जो आवाज थी ना चेष्टा, पहले तो वो बहुत दमदार थी और उनका व्यक्तित्व जो

0: और शुरू से उन्होंने फिल्मों में धीरे धीरे वो जमाया, तो वो इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था और अभिनय तो उनका शानदार था ही, जिसकी वजह से जो है भारतीय फिल्मों के वो सबसे यादगार खलनायक बन गए।
1: बिल्कुल, क्योंकि विलन का रोल हर कोई नहीं कर पाता,
0: हर कोई बिल्कुल नहीं कर पाता।
1: और उनकी अगर हम प्रमुख फिल्मों की बात करें तो उसमें मिस्टर इंडिया, नगीना, राम लखन, त्रिदेव, घायल, दामिनी, करण अर्जुन, गदर, नायक, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रिश्ते, लोहा, परदेश और बहुत सारी फिल्में जो उन्होंने की है।
0: बिल्कुल, और दोस्तों अगर हम उनके नाम अभी आपको बताने बैठ जाएं तो शायद हमारे इस कार्यक्रम का समय कम पड़ जाएगा। और अगर उनकी तारीफ के शब्द जो हम कह सके है ना, कि अगर हम करने लगे उनकी तारीफ, तो ये समय तो वाकई में बहुत कम है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि उन्हें घातक जो 1996 में आई थी, और विरासत फिल्म जो 1997 में आई, और मेरी जंग 1985 की फिल्म, इनके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। और संगीत नाटक एकेडमी से उन्हें 1979 में थिएटर में उनके योगदान के लिए भी प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। और दोस्तों फिल्मी दुनिया में विलन का किरदार निभाने वाले अमरीश पुरी असल जिंदगी में आप मानेंगे नहीं, लेकिन बेहद अनुशासित और सादगी पूर्ण जीवन थे। मतलब ऐसा जीवन वो बिताते थे, और उनके मतलब साथ में रहने वाले लोग भी ये बताया करते थे कि कितने सिंपल तरीके से वो रहते थे, कितने हसमुख थे, कितना अच्छा उनका व्यवहार था। तो एक तरफ जहाँ फिल्मों में वो एकदम कड़क किरदार निभा रहे हैं, वहीं असल जिंदगी में ऐसे हैं, तो फिल्मी पर्दों पर
1: विश्वास नहीं होता है कभी।
0: बिल्कुल, क्योंकि फिल्मी पर्दे पर लोग उन्हें देखते हैं और असल जिंदगी में उन्हें सिर्फ वही जानते हैं जो उनके करीबी हैं या उनके आसपास जिन्होंने समय बिताया है।
1: तो कहीं ना कहीं ये चीज भी बताती है कि जो पर्दे पे दिखता है वो असल में सच नहीं होता है। और दोस्तों तो हमने ऐसा भी सुना है कि असल जीवन में वो बहुत ही विनम्र और हसमुख व्यक्ति थे। जिस व्यक्ति को शुरुआत में ही फिल्मों ने ठुकरा दिया, वही आगे चलकर भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे प्रतिष्ठित विलन बना। और 12 जनवरी 2005 को उन्होंने हम सभी को और भारतीय सिनेमा को अलविदा कह दिया हमेशा के लिए।
0: लेकिन दोस्तों उनके प्रशंसकों का अभी तक ये मानना है कि उनके जाने के बाद हिंदी सिनेमा में वैसा प्रभावशाली खलनायक फिर नहीं आया। उनका जीवन दोस्तों हमें बहुत कुछ सिखाता है कि असफलता जो होती है वो किसी भी चीज का अंत नहीं होती है। उम्र के किसी भी पड़ाव में हम अपनी मुश्किलों से जीत हासिल कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने किया। उन्होंने 39 की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की, तो ये कोई ऐसी मतलब हम कह सकते हैं बहुत बड़ी बात नहीं है। हम भी चाहें तो उम्र के किसी भी पड़ाव में अपनी सफलताओं के लिए हम कोशिश जारी रख सकते हैं।
1: अगर चाहें तो मन में विश्वास रखें और उसकी तरफ कोशिश करें तो आप जरूर कभी भी सफल हो सकते हैं, चाहे आप 40 की उम्र में करें या 20 की उम्र में।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों कुछ चीजों का ध्यान हम रख सकते हैं, उनके जीवन से सीख सकते हैं कि अपनी विशेषताओं को पहचाने। जरूरी नहीं कि किसी और के पास जो विशेषताएं हैं हम वैसा बनने की कोशिश करें या अपने अंदर उन्हें ढालने की कोशिश करें। हमारे अंदर जो चीज है हम उन्हें एक्सेप्ट करें, उन्हें अच्छा करने की कोशिश करें और उसी को अपनी खासियत बनाएं। और दोस्तों एक और चीज हम उनसे सीख सकते हैं कि कितनी ही सफलता हमें मिल जाए, विनम्र हमेशा रहना है और सीखना तो हमें कभी छोड़ना ही नहीं है।
1: हाँ, सीखना तो जीवन का ही
0: एक पार्ट है हमारा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसी के साथ अब हम आगे बढ़ चलते हैं हमारे कार्यक्रम में और फिर से सुनवाते हैं आपको एक खूबसूरत सा गीत।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: चेष्टा, क्या तुम्हें पता है कि जो ये आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं ये क्या होती है?
1: बिल्कुल पता है। आक्रामक विदेशी प्रजातियां वो पौधे, जीव जंतु या सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी दूसरे देश या क्षेत्र से किसी नए स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहां तेजी से फैलकर स्थानीय प्रजातियों के लिए

0: खतरा बन जाते हैं।
1: यानी कि ये प्रजातियां जो है उस क्षेत्र की मूल प्रजातियां होती ही नहीं है। ये जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम वहां से बाहर से आए हुए व्यक्ति कहलाते हैं, वैसे ही ये शायद बाहर से आए हुए हैं।
0: हाँ बिल्कुल, ये बाहरी प्रजातियां होती है। जब ये नए वातावरण में पहुंचती है तो वहां के संसाधनों पर कब्जा करने लगती है और स्थानीय प्रजातियों के अस्तित्व को चुनौती देने लगती है। लेकिन निकिता, क्या आपको पता है कि भारत में ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं?
1: जहां तक मतलब मेरा अंदाजा है तो ऐसी तो हमारे बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे कि लेंटाना है, पार्थेनियम है, जैसे कि हम मतलब गाजर घास भी कहते हैं साधारण भाषा में, और वाटर हाइथिंग्स हैं, जैसे कि जलकुंभी भी जिसे हम कहते हैं, और भी मतलब जैसे कि अफ्रीकी कैटफिश है। इतनी सारी प्रजातियां हैं जो कहीं ना कहीं से हमारे देश में आक्रामक रूप से फैल चुकी है।
0: निकिता, मैंने लेंटाना के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन ये नुकसान किस तरीके से पहुंचाती है? मतलब
1: वैसे चेष्टा, पहले मुझे भी इस बारे में पता नहीं था, लेकिन बाद में जब मैंने इसके बारे में पढ़ा ना, तो मुझे पता लगा कि लेंटाना जो होती है जंगलों में तेजी से फैलती है और स्थानीय पौधों को बढ़ने नहीं देती है, और इससे जो है जो कोई भी वन क्षेत्र है तो वहां की जैव विविधता प्रभावित होती जाती है और कई जीवों के प्राकृतिक आवास भी इससे नष्ट हो जाते हैं।
0: ओ, और जलकुंभी का इसका क्या प्रभाव होता है?
1: ये जो जलकुंभी होती है ना, ये तालाबों और झीलों की सतह पर फैल जाती है। इससे पानी में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, जिससे मछलियों और अन्य जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता जाता है।
0: इसका मतलब है कि आक्रामक विदेशी प्रजातियां केवल पौधों को ही नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करती है।
1: बिल्कुल, और ये जो है खाद्य श्रृंखला, जल स्रोत, कृषि और वन्य जीवों पर भी प्रभाव डालती है।
0: तो क्या ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती है?
1: बिल्कुल, जो ये गाजर घास है इसके संपर्क में आने से एलर्जी हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर कहें हम सांस से जुड़ी हुई समस्याएं भी हो सकती है। और भारत जैसे अगर हम अपने देश की बात करें जहां जैव विविधता इतनी सारी है, तो ये हमारे देश के लिए एक मुझे लगता है चुनौती हो सकती है।
0: बिल्कुल हो सकती है, और भारत में हजारों प्रकार के पौधे, पक्षी, स्तनधारी और अन्य जीव पाए जाते हैं, और यदि आक्रामक प्रजातियों का प्रसार बढ़ता रहा तो कई स्थानीय प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में आ सकती है।
1: इसीलिए तो कई राज्यों में आक्रामक पौधों को हटाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और वैज्ञानिक इनके प्रसार को रोकने के उपाय भी खोज रहे हैं और लोगों को भी
0: जागरूक
1: किया जा रहा है।
0: और आम नागरिक इस दिशा में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? निकिता, थोड़ा आइडिया दो हमारे श्रोताओं को।
1: आम लोगों का जो है योगदान इस दिशा में ये हो सकता है कि ये जो विदेशी पौधे हैं या फिर मतलब कह सकते हैं हम जीव हैं, तो इनको बिना जानकारी के आप अपने एरिया में नहीं लेके आए। पहले तो आपको कोई भी है तो किसी भी वस्तु की जब तक हमें जानकारी नहीं होती हम उपयोग में नहीं ला सकते। तो ऐसे ही ये पौधे हैं, जब तक हम उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं ले लें तो हमें लगता है कि हमें इन्हें गार्डन में या फिर खेतों में, बगीचों में इनको नहीं लगाना चाहिए। और उसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो उनमें भाग हमें जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वहां से कोई ना कोई ऐसी जानकारी हमें जरूर मिलती है जो वाकई में हमारे बहुत काम की होती है। और जागरूकता हमें भी रखनी चाहिए स्वयं, और लोगों तक भी इसे पहुंचाना चाहिए। मतलब जितनी जानकारी हमारे पास है मुझे लगता है अगर हम लोगों तक पहुंचाएं तो ऐसे करके पूरा समाज, हमारा पूरा देश जागरूक होगा। और विद्यालय और महाविद्यालय, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब हम भविष्य की बात करते हैं ना तो हमारा नाम तो युवाओं का नाम, बच्चों का नाम सबसे पहले आता है। तो ऐसे में जो है बच्चों को एक कोशिश अपनी तरह से ये करनी चाहिए कि स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, वहां पे अपने टीचर्स से बात करें, ऐसी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें और करवाएं जहां से और भी बच्चों को जागरूक किया जा सके, खुद भी ऐसे कार्यक्रम अपनी सोसाइटी में रखें जिसकी वजह से सोसाइटी वालों को भी जागरूक किया जा सके, ताकि उन्हें भी पता लगे कि ये जो विदेशी होते हैं ये किस तरीके से हमारे लिए खतरनाक होते हैं या फिर मतलब कह सकते हैं कि नुकसान हमें पहुंचा सकते हैं।
0: वही, ताकि युवा पीढ़ी इसके महत्व को समझ सके, और जागरूकता ही इस समस्या से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका है।
1: बिल्कुल।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के

0: स्तर पर 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: दोस्तों आक्रामक प्रजातियों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन दोस्तों यहाँ कुछ और भी जानना बाकी है, और वो ये कि कश्मीर की सुंदर वादियों में गूंजे भक्ति के गीत और माता के दर्शन पाने को आते हैं जग जन मीत। आपको कुछ तो समझ में आया होगा ना इस लाइन से?
1: बिल्कुल। और खीर का भोग चढ़ाते हैं, श्रद्धालु के फूल सजाते हैं, माता की कृपा पाने को सब शीश झुकाते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हम कश्मीर, खीर इन सब के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम जिस त्योहार के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कश्मीर के प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव मेला खीर भवानी के बारे में है।
0: दोस्तों मैं ये मान के चल सकती हूँ कि हमें से कुछ लोगों के बारे में इसे पता है और कुछ मतलब पता नहीं है कुछ लोगों को। हाँ। तो आपको बता दें कि ये जो मेला खीर भवानी है ये कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक मेलों में से एक माना जाता है, और ये माता रागन्या देवी जिन्हें माता खीर भवानी भी कहा जाता है उन्हें समर्पित है। और इस मेले का नाम खीर भवानी क्यों पड़ा ये हमें चेष्टा बताएगी।
1: दोस्तों इसका जो कारण है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। श्रद्धालु माता जी को खीर का भोग अर्पित करते हैं, खीर माता जी का प्रिय प्रसाद माना जाता है, और इसीलिए मंदिर और मेले का नाम खीर भवानी रखा गया। तो दोस्तों मैं निकिता से एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि ये जो मेला है ये कब मनाया जाता है?
0: ये जो मेला है ना चेष्टा, ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन मनाया जाता है, और इस अवसर पे ना हजारों लोग आते हैं, हजारों श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश से मंदिर पहुंचते हैं, माता के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और मतलब कई ऐसी चीजें हैं ना चेष्टा हमारे देश में जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है ना, लेकिन जब हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं या जानते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है ना कि कितनी अलग अलग चीजें हमारे देश में हैं, कितना कुछ हमारे देश में होता है। और अगर हम हमारे देश को जानने की कोशिश करें तो शायद और भी बहुत कुछ अच्छा हम सीख पाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: फिलहाल मुझे लगता है समय है
1: बड़ी
0: गीत संगीत की ओर बढ़ने का।

0: ज्येष्ठा, अब मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को आज की करंट अफेयर से भी रूबरू करवा देना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, आज के दिन विश्व वर्षावन दिवस मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत 2027 में रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप द्वारा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को रोकने, जैव विविधता बनाए रखने और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर रखने में वर्षावनों के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जा रहा है।
2: साथ ही दोस्तों, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण किया है।
0: हाल ही में इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में विमल एन पटेल जी को जज के पद पर नियुक्त किया गया है।
2: साथ ही दोस्तों, हाल ही में दिल्ली में पहला पूरी तरह से महिला द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है
0: और महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा बन गई है।
2: साथ ही दोस्तों, हाल ही में रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने जीता है।
0: तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स।
1: निकिता, बात करते हुए पता ही नहीं चलता ना कि कब 6 बज जाते हैं और हमारे जाने का समय हो जाता है।
0: बिल्कुल। और ये जो घड़ी की सुइयां है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही है और बढ़ते बढ़ते बहुत कुछ हमसे कह रही है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ हम भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे कि जीवन बहुत बड़ा है, संघर्ष बहुत सारे हैं, ऐसे में जो है हमें हिम्मत भी बनाए रखनी है, कोशिशें भी करती रहनी है और इन्हीं कोशिशों के साथ हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और आनंद से अपने इस जीवन का आनंद लेना है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसी के साथ आज के लिए आपकी रेडियो दोस्त निकिता
1: और चेष्टा
0: आपसे इजाजत चाहेंगे इसी के साथ और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एक कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो हमें इजाजत दीजिए आज के इस कार्यक्रम से।
1: नमस्कार, नमस्कार।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय कर्डिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया

0: सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

कार्यक्रम में पहला गीत फिजा फिल्म से, जिसे गाया है सुनिधि चौहान और करसन संगतिया ने, और लिखा है तेजपाल कौर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत मोहब्बते फिल्म से, जिसे गाया है उद्भव, मनोहर शेट्टी, ईशान, श्वेता पंडित, सोनाली भटवाड़ेकर और प्रीता मजुमदार ने। संगीत दिया है जतिन ललित ने और लिखा है आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म धड़कन से नुसरत फतेह अली खान की आवाज में, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म सत्या से आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाजों में, जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है विशाल ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा ये कार्यक्रम फिल्म संगीत ही समाप्त होता है। अब हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी और थोड़ी ही देर बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: है
1: तो लेन देन
0: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं,
1: ओ
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी वो दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: हम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
5: आ गए सैलरी?
6: हाँ।
5: आ? नए झुमके?
6: ना, पहले बचत।
5: पहले झुमके? सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: RBI कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने हर नागरिक तक न्याय की पहुंच अधिक सुलभ और मजबूत करने के लिए दिशा 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग के सदस्य KV राजू के साथ बैठक कर जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC पर विधेयक बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, कोटा, बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने दिशा 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है। ये कार्यक्रम इस साल 1 अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक 5 साल तक की अवधि के लिए नए रूप में लागू किया जाएगा। 255 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य हर नागरिक तक न्याय की पहुंच सुलभ और मजबूत बनाना है। ये देश की 16 सतत विकास लक्ष्यों की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है। इसे विकसित भारत 2047 के विजन से भी जोड़ा गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार दिशा 2.0 में प्रौद्योगिकी सक्षम न्याय वितरण के लिए विधि संजीवनी नाम का नया घटक पेश किया गया है। टेली लॉ के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर VLE की ओर से 2.5 लाख सामान्य सेवा केंद्रों के नेटवर्क से सभी लोगों को मुकदमों से पहले मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी। साथ ही कानूनी जागरूकता और साक्षरता के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन अभियान चलाए जाएंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की आज बैठक हो रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इसमें समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग ले रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां बैठक का मुख्य विषय है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीक की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर KV राजू की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की गई। इसके तहत हर जिले में आकांक्षी उपखंडों को जोड़ते हुए स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुरूप विकास योजनाएं बनाने की बात कही गई। इससे आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बढ़ सकेगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और निवेश के अवसर मिलेंगे। वन मंत्री संजय शर्मा ने CSR निवेश से संरक्षित वन क्षेत्रों में विकास पर जोर दिया है। श्री शर्मा आज सवाईमाधोपुर में राज्य स्तरीय CSR कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वन विभाग और कॉरपोरेट क्षेत्र की साझेदारी से वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता और इको टूरिज्म पर अच्छा काम किया जा सकता है। 2 दिन के इस कॉन्क्लेव में राज्य के संरक्षित वन क्षेत्रों में CSR के माध्यम से किए जाने वाले कामों पर चर्चा की जा रही है। राजस्थान ATS ने जयपुर से जैश ए मोहम्मद से कथित रूप से जुड़ी एक महिला को गिरफ्तार किया है।

0: मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर पकड़ी गई बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा नाम की ये महिला सवाई माधोपुर जिले की मूल निवासी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये लंबे समय से देश विरोधी नेटवर्क के लिए काम कर रही थी। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आरोपी महिला को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 27 जून तक रिमांड पर भेज दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आज जयपुर में समान नागरिक संहिता UCC को लेकर प्रेस वार्ता की। श्री पटेल ने कहा कि इससे समानता की भावना को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने UCC लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विधेयक लाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है।
1: राजस्थान सरकार नागरिक संहिता कानून बनाने हेतु एक विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया। उसमें माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय की न्यायाधिपति रही है, वो हमारी इस कमेटी की अध्यक्ष रहेगी। और इस कमेटी का गठन विधिवत पूर्व में किया जा चुका है और उनसे अपेक्षा की गई बहुत जल्दी से जल्दी इस कानून पर सभी तरह का मंथन कर ये राजस्थान समान नागरिक संहिता बना करके पेश करें।
0: वहीं श्री बेढम ने कहा कि UCC संविधान के अनुरूप है, ये लैंगिक समानता की दिशा में भी अहम है।
2: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नागरिक संहिता लागू हो, जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित हो। समान नागरिक संहिता UCC राजस्थान के लिए लागू हो, इसके लिए विधेयक बनाने के लिए कमेटी का गठन किया है।
0: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा है कि जोधपुर के पावटा सैटेलाइट अस्पताल में प्रसूताओं के उपचार में पूरी गंभीरता बरती जा रही है। विशेषज्ञों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोटा, बीकानेर और जोधपुर के मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
3: इंजेक्टेबल जो अभी जोधपुर के अंदर मार्केट से जो ये ला रहे हैं, जो 25% अलाउड है, उसकी जांच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसका जो है हम उस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि ब्लीडिंग और इंजेक्टेबल और थोड़ा डिहाइड्रेशन, जो गर्मी पड़ रही है और जो ये दो तीन चीजें ही हैं, तो हमारी डॉक्टर्स की टीम, मैंने जयपुर में भी गायनेकोलॉजिस्ट को और इनको बुलाया, डॉक्टर्स को बुला के हमने बैठ के बात करी, तो सब पॉइंटर जिन्हीं पे आ रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है जिसका एम्स की टीम ने भी जांच कर ली और हम भी जांच।
0: प्रसूताओं के स्वास्थ्य को लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर BS जोधा और अन्य डॉक्टरों के साथ बैठक की। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज अपने आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों की परिवेदनाएं सुनी और उचित समाधान का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में श्री दिलावर ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह तक सभी विद्यालयों में शिक्षक लगाने के प्रयास किए जाएंगे।
4: 1 जुलाई को ही कोशिश करेंगे कि हम सबको शिक्षक मिल जाएं, और 1 जुलाई को नहीं तो कम से कम 10 जुलाई तक तो सबको शिक्षक मिल जाएंगे और किसी प्रकार की समस्या न होगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी विद्यालयों में समान रूप से शिक्षक हो जाएं।
0: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ ने आज अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने बोर्ड के 41वें मुखिया के रूप में कमान संभाली। बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ ने उन्हें चार्ज सौंपा। श्री राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए नई शिक्षा नीति के समुचित क्रियान्वयन पर जोर देने की बात कही।
5: इस समय 2 प्रकार की योजनाएं हैं, कि हमारे राजस्थान के परिवेश के अनुसार विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन किस प्रकार से हो। दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा, ये विद्यार्थी काल से किस प्रकार उनके अंदर और प्रेषित की जाए कि वो विद्यार्थी आगे चलकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हितकारक नागरिक के रूप में वो निकल कर आए। तो केवल परीक्षा परिणाम नहीं, तो साथ में उनका भौतिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक, ये सब प्रकार का उन्नयन कैसा हो, इस प्रकार का प्रयत्न सबके सहयोग से करेंगे।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य पद पर नियुक्त हुए डॉक्टर संतोष आनंद ने निष्पक्ष परीक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। श्री आनंद वर्तमान में भीलवाड़ा

0: के माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि वे जल्दी ही आरपीएससी सदस्य के रूप में पदभार संभालेंगे।
1: प्राथमिकता यही कि राजस्थान भर के जितने बच्चे मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपनी मेहनत के अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप उनका स्थान मिले, ये हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। समय पर कैलेंडर हमने जारी कर चुकी है, आरपीएससी कैलेंडर के अनुसार सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई इफ और बट और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने का मौका दिया है। आयोग सचिव ने बताया कि इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 6 जुलाई से 27 जुलाई तक आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक एमएल गर्ग ने आज राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से भेंट की। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत भी मौजूद रहे। भेंट में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सीकर जिले के रामगढ़ सेठान क्षेत्र में आज सुबह एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। रामगढ़ सेठान थानाधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि दुर्घटना सड़क किनारे खड़े ट्रोली और तेज रफ्तार ट्रेलर के बीच टक्कर से हुई। घायल व्यक्ति को चूरू रेफर किया गया है। उधर श्रीगंगानगर के सत्यम नगर में एक निर्माणाधीन भवन में करंट लगने से आज 2 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। आज विश्व ऊंट दिवस है। ये दिन दुनिया के कई हिस्सों में आजीविका के लिए ऊंटों के महत्व को बताता है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ये जीव शुष्क क्षेत्रों का महत्वपूर्ण पशुधन है और भारत का गर्व माना जाता है। सहन शक्ति और सेवा का प्रतीक ऊंट लाखों लोगों के जीवन का सहारा है। ये कई दिनों और हफ्तों तक बहुत ही कम पानी के साथ जीवित रह सकता है और इसीलिए इसे रेगिस्तानी यात्रा के लिए आदर्श माना जाता है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऊंट को संस्कृति और परंपराओं का वाहक बताते हुए लोगों से इसे अपना आदर्श साथी मानने का आग्रह किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने हर नागरिक तक न्याय की पहुंच अधिक सुलभ और मजबूत करने के लिए दिशा 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग के सदस्य केवी राजू के साथ बैठक कर जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर विधेयक बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, कोटा, बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख शिव कुमार वशिष्ठ ने तैयार किया है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भरतपुर में जिला स्तरीय समारोह विश्वप्रिय शास्त्री पार्क में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराए गए। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ आम जन ने भाग लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर के बंद बारेठा पहुंचकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बंद बारेठा की पाल का निरीक्षण किया और परियोजना के विस्तार कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बरसात के दौरान जल भराव की समस्या से निपटने के लिए बेहतर योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग की शासन सचिव और जिला प्रभारी सचिव आनंदी ने भरतपुर का दौरा कर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बजट घोषणाओं के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों के बीच समन्वय के साथ गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा। संभागीय आयुक्त नलिनी काठोतिया ने संभाग स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में बरसात से पहले सड़कों की मरम्मत, विभागीय समन्वय और उद्योगों तथा आमजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। उन्होंने विद्युत संबंधी शिकायतों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर निर्वाचन विभाग की ओर से एक पेड़ लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत सरकारी और निजी संस्थानों, कार्यालयों तथा सार्वजनिक

0: स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में भरतपुर को पायलट परियोजना में शामिल किया गया है। स्किल डेवलपमेंट फॉर यू कार्यक्रम के तहत युवाओं की क्षमता और स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर आई बी सुब्बा राव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने युवाओं का डाटा तैयार कर उनकी रुचि और स्थानीय रोजगार की संभावनाओं के अनुसार प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से ब्लॉक स्तर पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्राम पंचायतों में विकास और जन कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों की समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर चर्चा की गई। आमजन को राहत देने के लिए जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टे, नामांतरण, निर्माण स्वीकृति, उपयोग परिवर्तन, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित अनेक कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर और शहर में वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने वैर उपखंड के सरसेना गांव और भरतपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। प्रदर्शनी में किसान कल्याण, आयुष्मान भारत, पक्के आवास, सैन्य सुविधाओं और अन्य योजनाओं से संबंधित जानकारी चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की गई। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की ओर से जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। महात्मा गांधी वेटनरी कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 500 युवाओं, विद्यार्थियों और किसानों ने भाग लिया। कृषि वैज्ञानिकों ने मिट्टी स्वास्थ्य, जैविक खाद, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण से संबंधित जानकारी दी तथा किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने शहर में जल निकासी व्यवस्था से जुड़े कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य ड्रेन के निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की तथा बरसात से पहले जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने भरतपुर अचनेरा फोरलेन सड़क चौड़ी करने के काम का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसी के साथ भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त होती है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, केंद्र सरकार हर नागरिक तई न्याय रिपू बत्ती सुलभ करावण सारू 2.0 ने मंजूरी दी। ई योजना ने 5 साल माय लागू करी जायला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नीति आयोग रा सदस्य केवी राजू रे साथ बैठक करने जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी। राज्य सरकार समान नागरिक संहिता यूसीसी माथे विधेयक बनावण ने उच्च स्तरीय समिति बनाई और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कयो कोटा बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामला न्यारा न्यारा है आने एक दूजाऊ जोड़ने नहीं देखा जावना चाहिए।

समाचार के साथ है मैं शंभु सिंह और अब समाचार विगतवार। केंद्र सरकार दिशा 2.0 योजना ने मंजूरी दे दी है। वो कार्यक्रम इन साल पहली अप्रैल व 31 मार्च 2031 ताई 5 साल तैयारी अवधि रसारू नुआ रूप में लागू करो जाएगा। 255 करोड़ रुपया रा वित्तीय परिवहन वाली ई योजना रो मकसद हर रहवासी ताई न्याय दी पहु सुलभ और मजबूत बनावनो है। आ देश रा 16 सतत विकास लक्ष्यों की प्रतिबद्धता ने आगे बढ़ावे है। इनने विकसित भारत 2047 रा विजन हुई जोड़ी जा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुजब दिशा 2.0 माई प्रौद्योगिकी सक्षम न्याय वितरण सारू विधि संजीवनी नाम रो नुओ घटक पेश करी जो है। टेली लोरी मार्फत ग्राम पंचायत थर माथे वीएलई कानियो 2.5 लाख सामान्य सेवा केंद्र रा नेटवर्क रू सगड़ा लोगों ने मुकदमा माए पहला मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगा। साथ ही कानूनी जागरूकता और साक्षरता सारू ऑनलाइन और ऑफलाइन अभियान चलाया जाएगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स रा राष्ट्रीय सुरक्षा

0: सलाहकारा एनएसए री आज बैठक हुई। दो दिन री ई बैठक री सदारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रिया है। इनमाए समूरा 11 सदस्य देशा रा सुरक्षा प्रमुख हिस्सो ले रिया है। आ देशा माए भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात भेड़ा है। अबार माए गैर पारंपरिक हिफाजती चुनौतियां बैठक रो खास मुद्दों है। इनमाए राष्ट्रीय हिफाजत रा खतरा ने तेजी बदलता स्वरूप और उभरता सुरक्षा जोखिमा माए नई तकनीक री भूमिका माथे चर्चा करी जावे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज नीति आयोग रा सदस्य प्रोफेसर केवी राजूरी मौजूदगी माए अहलकारा रे साथ मीटिंग करी। मुख्यमंत्री रेवास माते हुई ई बैठक माए विकसित राजस्थान रा संकल्प ने पूरो करण सारू जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी जी। इन रे तहत हर जिला माए आकांक्षी उपखंडा ने जोड़ता स्थानीय जरूरता और संसाधना मुजब विकास योजना बनाने री बात कही जी। आम आए माली गतिविधियां री रफ्तार बद सकेला साथे स्थानीय थर माथे रोजगार और निवेश रा मौका मिलेला। जंगलात महकमारा मंत्री संजय शर्मा सीएसआर निवेश उन संरक्षित वन हल्का माए विकास माथे जोड़ दियो है। श्री शर्मा आज सवाई माधोपुर माए राज्य थर्रा सीएसआर कॉन्क्लेव रा उद्घाटन सत्र माए बोल रिया हा। वना कयो के जंगलात महकमो और कॉरपोरेट हलकारी साझेदारियों वन्य जीव संरक्षण जैव विविधता और इको टूरिज्म माथे चोखो काम करियो जा सके है। दो दिन रा ई कॉन्क्लेव माए राज्य द्वारा संरक्षित वन हल्का माए सीएसआर री मार्फत करिया जावण वाला काम माथे चर्चा करी जावे। राजस्थान एटीएस जयपुर जैश ए मोहम्मद री कथित रूप में जुड़ी एक महिला ने गिरफ्तार किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस री सूचना माथे पकड़ी जी बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा नामरी आ महिला सवाई माधोपुर जिला री मूल रहवासी है। शुरुआती जानकारी मुजब आ लांबा बगतू देश विरोधी नेटवर्क साथे काम कर रही। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी बतायो के यूएपीए एक्ट तहत गिरफ्तार करी जी आरोपी महिला ने अदालत में पेश करी जा जेठे उन्हें 27 जून तक रिमांड सारू भेज दी जा है। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज जयपुर माए समान नागरिक संहिता यूसीसी ने लेर प्रेस वार्ता करी। श्री पटेल कहो के इन माए समानता री भावना ने बढ़ावा मिलेला और साथ ही भेदभाव ने कम करण माए मदद मिलेला। राज्य सरकार यूसीसी लागू करण री दिशा माए कदम बढ़ावता विधेयक लावण सारू ऊंचा थर्री कमेटी बनाई है।
1: राजस्थान सरकार नागरिक संहिता कानून बनाने हेतु एक विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया। उसमें माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय की न्यायाधिपति रही है, वो हमारी इस कमेटी की अध्यक्ष रहेगी और इस कमेटी का गठन विधिवत पूर्व में किया जा चुका है और उनसे अपेक्षा की गई कि बहुत जल्दी से जल्दी इस कानून पर सभी तरह का मंथन कर ये राजस्थान समान नागरिक संहिता बना करके पेश करें।
0: श्री बेढम कहो कि यूसीसी संविधान मुजब है और लैंगिक समानता री दिशा में अहम है।
2: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नागरिक संहिता लागू हो जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित हो। समान नागरिक संहिता यूसीसी राजस्थान के लिए लागू हो, इसके लिए विधेयक बनाने के लिए कमेटी का गठन किया।
0: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो है कि जोधपुर रा पावटा सैटेलाइट अस्पताल माए प्रसूतवा रा इलाज माए पूरी गंभीरता बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञ ने देखरेख माए वारो इलाज करियो जावे। मीडिया साथे बतल माए चिकित्सा मंत्री कहो के कोटा, बीकानेर और जोधपुर रा मामला न्यारा न्यारा है, आने एक दूजाऊ जोड़ने नहीं देखा जावना चाहिए।
3: इंजेक्टेबल जो अभी जोधपुर के अंदर मार्केट से जो ये ला रहे हैं जो 25% अलाउड है उसकी जांच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसका जो है हम उस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं क्योंकि ब्लीडिंग और इंजेक्टेबल और थोड़ा डिहाइड्रेशन जो गर्मी पड़ रही है और जो ये दो तीन चीजें ही हैं तो हमारी डॉक्टर्स की टीम, मैंने जयपुर में भी गायनाकोलॉजिस्ट को और इनको बुलाया, डॉक्टर्स को बुला के हमने बैठ के बात करी तो सब पॉइंटर्स जिन्हीं पे आ रहे हैं ये बहुत गंभीर विषय है जिसका एम्स की टीम ने भी जांच कर ली और हम भी जांच।
0: प्रसूतवारा स्वास्थ्य ने लिए जिला कलेक्टर

रंजन मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा और दूसरा डॉक्टरों रे साथ है मीटिंग करी मामलारी जांच सारू कमेटी बनाई जी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज आपरा रहवास माते जन सुनवाई करी। इस दौरान वना लोगारी फरियादा सुनी और वाजिब निपटारा रा आश्वासन दिया। मीडिया साथे बतलमाए श्री दिलावर कयो के नुआ शैक्षणिक सत्र सारू जरूरी तैयारियां करी जा रही है। वना कयो के जुलाई रा पहला हफ्ता ताई सगली स्कूला माए शिक्षक लगाउन री कोशिश करी जावे।

0: दारू जरूरी तैयारियां करी जा रही है। वना कहो के जुलाई रा पहला हफ्ता ताई सगली स्कूल में शिक्षक लगाउन री कोशिश ही करी जावे।
1: एक जुलाई को ही कोशिश करेंगे कि हम सबको शिक्षक मिल जाएं, और एक जुलाई को नहीं तो कम से कम 10 जुलाई तक तो सबको शिक्षक मिल जाएंगे और किसी प्रकार की समस्या न होगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी विद्यालयों में समान रूप से शिक्षक हो जाएं।
0: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रा नुआ अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ आज अध्यक्ष रा ओधो संभाल लियो। वना बोर्ड रा 41वां मुखिया रा रूप में कमान संभाली। बोर्ड रा प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ वाने कामकाज सौंपियो। श्री राठौड़ मीडिया साथे बतल में पढ़ेसरा रा समग्र विकास सारू नवी शिक्षा नीति रा वाजिब क्रियान्वयन माथे जोर देवन री बात कही।
2: इस समय दो प्रकार की योजनाएं हैं कि हमारे राजस्थान के परिवेश के अनुसार विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन किस प्रकार से हो। दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा ये विद्यार्थी काल से किस प्रकार उनके अंदर और प्रेषित की जाए कि वो विद्यार्थी आगे चलकर अपने देश के लिए अपने समाज के लिए हितकारक नागरिक के रूप में वो निकल कर आए। तो केवल परीक्षा परिणाम नहीं तो साथ में उनका भौतिक शैक्षिक आध्यात्मिक ये सब प्रकार का उन्नयन कैसा हो, इस प्रकार का प्रयत्न सबके सहयोग से करेंगे।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग माय सदस्य ओदा माते नियुक्त व्या डॉक्टर संतोष आनंद निष्पक्ष परीक्षा ने पहली प्राथमिकता बताया है। श्री आनंद अबार माय भीलवाड़ा रा माणिकीलाल वर्मा राजकीय कॉलेज रा प्राचार्य रूप में काम कर रहा है। खबर नवीसा साथे बतलमाए वना कहो के वे बेगाई आरपीएससी सदस्य रा रूप में ओ दो संभाल लेवेला।
3: प्राथमिकता ये ही कि राजस्थान भर के जितने बच्चे मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपनी मेहनत के अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप उनका स्थान मिले, ये हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। समय पर कैलेंडर हमने जारी कर चुकी है, आरपीएससी कैलेंडर के अनुसार सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई इफ और बट और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है।
0: बीएसएफ रा महानिरीक्षक एमएल गर्ग आज राज्य रा मुख्य सचिव वी श्रीनिवास रे साथे मिलिया। ई दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सामंती मौजूद रिया। ई मुलाकात में न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जी। सीकर जिला रा रामगढ़ सेठान हल्का में आज सवारा एक सड़क हादसा में दो लोगों की मौत वेगी, वठे एक दूजो घायल वेगियो। रामगढ़ सेठान थाना अधिकारी प्रकाश चंद्र बतायो के हादसों सड़क रे किनारे खड़ा ट्रोला रे तेज रफ्तार ट्रेलर बीच टक्कर वियो, घायल ने चूरू रेफर करी जा है। उठने श्री गंगानगर रा सत्यम नगर में एक नुआ बन रहा भवन में करंट लागणु दो लोगों की मौत वेगी। राज्य में लाड़ला कुछ दिनों चल रही प्री मानसून गतिविधियों लोगों ने हीट वेव और करड़ी गर्मियों आराम मिल रियो है। एक रे पछे एक लगातार सक्रिय वेरिया पश्चिमी विक्षोभों कई जिला में आंधी बिरखारो दौर बनियोड़ो है। आज ही प्रदेश रा कई हल्का में मौसम रो मिजाज बदलियो रियो। मौसम महकमा मुजब आंधी बिरखारी गतिविधियां जयपुर अजमेर और भरतपुर संभाग में 26 जून तक बनी रहने की आस है। इस दौरान कठे कठे धूल भरी आंधी चल सके है। दूजी कानी बीकानेर और जोधपुर संभाग में मौसम साफ रहने की आस है, फिर वही कुछ थोड़ा बादल छाए जा रह सके है। न अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहो। केंद्र सरकार हर रहवासी ताई न्यायरी पूग बत्तियों बत्ती सरल और मजबूत करण सारू दिशा 2.0 ने मंजूरी दी। योजना ने 5 साल सारू लागू करी जायला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नीति आयोग रा सदस्य केवी राजू रे साथ मीटिंग करने जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी। राज्य सरकार समान नागरिक संहिता यूसीसी माथे विधेयक बनावन सारू ऊंचा तरी समिति बनाई। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो है के कोटा बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामला न्यारा न्यारा है अने एक दूजा जोड़ने नी देखा जावना चाहिए। एंड रे साथ ही प्रादेशिक समाचारों ओबुलेट नठे पूरो व्यो। नमस्कार।

FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोताओं, अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजे हैं और अब समय है

आओ दिल का दीप जड़ावा, अंधेरा न दूर भगावा। दादा आया, काका आया, अर आया गोपाल, कोटा बूंदी का चंबल चैनल पर आगी रे चौपाल, आगी रे चौपाल। संदाई कास्तकार भाई बनाता है हंसा भाई की गणगणी राम राम। सम्मान में आज अपनी चौपाल में अच्छा पावना पधारा का जो आपको ताई आवाड़े जो फसल चौका बारे में जानकारी देगा। पर बात यह करना हो कि जब आपन को भी काम करा उस फल ही आपन पाड़ बांध लिया खर्च न कि बाढ़ आवा से पहले पाड़ बांध लेनी चाहिए। और अगर आपन जैसे कोई युद्ध में भी लड़वा जाऊँ चाह तो पहले अपने अस्त्र होनी चाहिए, शस्त्र होनी चाहिए, तभी अपन वह लड़ाई लड़ पाऊंगा। अपन लड़ाई लड़वा चल गया कराण पास कहीं कोई न तो अपन ऊक तई पार न पा सका। वैसे ही खेती बाड़ी में अगर अपने पास में सबसे पहले अपने जो धरती माता है जो अपनी खेती है ऊक तई सही रखा कि प्रकार से वह कहीं कहीं छाऊ च उमें कहीं कहीं आवश्यकता है तो ऊकी जानकारी अपनी खसियाँ होगी की जानकारी अपने होगी कि अपन अगर अपनी मिट्टी की जांच कराऊंगा मृदा परीक्षण कराऊंगा तो अपनी यह पतो पड़ जाओगी कि अपनी मिट्टी कहीं खरी चे वहीं कहीं छहरु चे कतनों पानी छहरु चे कतनों बीज छहरु चे उमें कैसे कैसे पोषक तत्व छहरा चे तो वह अपनी पतो पड़ेगी अपनी मिट्टी की जाँच से। इसलिए अपने मिट्टी की जाँच करानी चाहिए। किसानों में करा भी ली होगी किसानों में मिट्टी जाँच करावा का सबसे बड़ो फायदो यो है कि वो जो पोषक तत्व है जैसे हम उनको तापमान कतनो चे पोषक तत्व तो कहीं कहीं छहरा चे लवणता खसी चे मिट्टी के तक उर्वरता की आवश्यकता छे कौन कत्ता उर्वरक छाई चे कतने मात्रा में छाई ये सब चीज़ें अपने जब पतो पड़ेगी जब आप मिट्टी की जांच कराऊंगा। और मिट्टी की जांच के साथ अनावश्यक जो उर्वरक चे वहाँ का उपयोग अपन रुक जाओगे। और जब आप अनावश्यक उर्वरक नहीं डाल लेंगे खाद नहीं डालेंगे ये रासायनिक खाद डालेंगा तो आपने लागत भी कम होगी और उत्पादन ज़्यादा होगा। खर्च न के मिट्टी की जांच अपना जैसे अपना बच्चा बच्चा बीमार हो जाओ तो आपको एक कार्ड बन जाओ वो कार्ड में सब लिखी हो रहा कई बच्चा का जन्म के बाद में कुछ टीको लाओगे कितनी मात्रा में लाओगे कब कब लाओगे अच्छा ही आपने एक मिट्टी की जो जांच कराऊंगा तो कोई कार्ड बन जाओ वो कार्ड में सब लिखी रही है किसान में वो कि अपनी मिट्टी के ताई अपनी मृदा के ताई कहीं कहीं छाओ और कितनी कितनी मात्रा में छाओ इसलिए अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए। मिट्टी की जाँच करावा से आपने जो खेती है अपनी जो मिट्टी है अपने खेत चुकता लंबे समय तक भूमिगत उर्वरकता बनावा मदद करे वो। और मिट्टी को नमूना ले अपन को तीन जांच के लिए दे सका जा और फिर जब वह जांच आवो तो उस हिसाब से अपन अपने खेत में अपनी फसल में उस हिसाब से खाद डाला उस हिसाब से बीज डाला और उस हिसाब से अपनी खेती बाड़ी करेंगा तो अपनी जो लागत से वह कम होगी और उत्पादन ज़्यादा अपने तक मिलेगा। तेना देखो बात चेता अपने चौपाल में अपन और भी करेंगे अपन अपना जो फौना है आज का वो आपने चौपाल विराजमान से तो आपन सुना सा वहाँ से वहाँ की जुबानी के भाई आपन ताई जो आपन जो फसल आपन जुबाऊंगा जो सोयाबीन जो फसल से उनके लिए आपन ताई उन्नत किस्म का बीज और वहाँ की कहाँ कहाँ विशेषता है उसके बारे में तो अपन करा था यहाँ से अच्छी सी जानकारी। किसान मनवायो आपने चौपाल में नित नया नया फोन आता रहे और आपने ताई नई नई जानकारी देता रहे आज ई कड़ी में आपने चौपाल में

0: विराजमान से डॉक्टर भरत लाल मीणा साहब, आप जो सह आचार्य कृषि महाविद्यालय इंडोली जिला बूंदी में, जो आज आपने जानकारी दी होगा कि सोयाबीन की उन्नत किस्म खसी चे और वहाँ की विशेषता कहीं चे, तो डॉक्टर साहब आपको वहाँ की चौपाल में घनो घनो स्वागत। राम राम साहब।
1: राम राम किसान भाई हो। राम राम
0: डॉक्टर साहब। देखो अब बार अपना कितनों भाई सोयाबीन की फसल होगा होगा, और कई बार आपने देखा था कि अगर आपने उन्नत बीज न लावा या सही बीज न लावा तो कई बार अपना किसान की फसल खराब हो जाओ। तो सबसे पहला तो मन में यही प्रश्न हो चे कि सोयाबीन की उन्नत जो बीज चे वही किस्मों को चयन कैसे करे किसान भाई?
1: बिल्कुल अंशा भाई, आपने बहुत अच्छा ये सवाल पूछा। अभी हाडोती की सोयाबीन एक मुख्य फसल है और बीज एक ऐसी चीज है कि अगर आपका बीज अच्छा प्रमाणित बीज होगा तो आप एक अच्छा उससे स्वस्थ पौधा मिलेगा और उससे अच्छी उपज मिलेगी। तो प्रमाणित बीज के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है। ऐसे तो बीज चार तरह का होता है, लेकिन जो किसान भाइयों को बीज दिया जाता है वो प्रमाणित बीज होता है। और प्रमाणित बीज के दो तीन आपकी विशेषता में आती है, एक भौतिक शुद्धता होती है, अनुवांशिक शुद्धता होती है। भौतिक शुद्धता उसमें होती है कि कंकड़ पत्थर कितना परसेंट उसमें होना चाहिए, तो ये शुद्धता 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और प्रमाणित बीज में एक टैग लगा हुआ होता है, तो उस पे ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है, उसके साथ अंकुरण क्षमता भी उस पे लिखी हुई होती है। ये बहुत जरूरी है, इसलिए प्रमाणित बीज की ये विशेषता है।
0: और डॉक्टर साहब उन्नत बीज कहीं ऊंचे?
1: ये उन्नत बीज वही प्रमाणित बीज जो कि उन्नत इम्प्रूव्ड वेरायटी होती है, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई वेरायटी है एक दो साल में। जो पुरानी वेराइटियां होती है वो ज्यादातर क्या होती है, उनकी रोग रोधिता के प्रति उसमें रोग ज्यादा लगते हैं, पैदावार उनकी कम होती है। तो नई नई वेरायटी रिलीज होती है, जो इम्प्रूव्ड वेरायटी होती है वो प्रमाणित बीज होती है, और इस पे एक टैग लगा हुआ होता है, एक प्रमाणिक संस्था द्वारा ये प्रमाणित की जाती है।
0: डॉक्टर साहब अब बात यह हो चाहे जो अपने हाड़ौती क्षेत्र जिसमें कोटा बूंदी बारा जिला और चारा जिला हो चाहे, तो यहाँ में उन्नत किस्म किसी की चीज है?
1: वैसे तो सोयाबीन की काफी वेरायटी रिलीज हुई है, लेकिन अपना क्षेत्र भारत के मध्य में आता है और अपना हाडोती क्षेत्र उसी का एक पार्ट है। तो यहाँ सोयाबीन की दो तीन तरह की किस्में होती है, एक तो जल्दी पकने वाली, एक मध्यम अवधि में पकने वाली और एक लेट पकने वाली। यहाँ किसान भाइयों की अपने हाडोती क्षेत्र में जो किसान भाइयों की मांग होती है वो जल्दी पकने वाली के है। इसके लिए कई वेरायटियां है, जैसे कि जेस 2034 है, ये बहुत मतलब 90 दिन में लगभग पक्के तैयार हो जाती है, और ये 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी कि ये 3 से 3.5 क्विंटल प्रति बीघा की उपज देती है और ये बहुत अच्छी है। इसके बाद जल्दी पकने वाली में एनआरसी 138 है, जेएस 2212 है, ये सब 90 से 95 दिन में पक जाते हैं, यानी 90 से 95 दिन कर पक करके लगभग ये 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 6 बीघा में ये उपज देती है
0: जी।
1: और ये वेराइटियां लगभग जो कि अभी जो रोग और कीट है उनके प्रति भी ये प्रतिरोधी पाई गई है
0: जी, जी, जी।
1: और इसके अलावा मध्यम अवधि में पकने वाली भी कई वेराइटियां है, जैसे कि जेस 2098 है, 2116 है, 2094 है, 2172 है। जेस वाली ये किस्में बहुत अच्छी है, उसमें आरवीएस 2011-35 भी है, ये भी बहुत अच्छी है। और ये जो वेराइटियां हैं ये लगभग 95 दिन से 100 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती है, और इनकी उपज लगभग 24 से 25 क्विंटल या 26 क्विंटल के लगभग, यानी एक बीघा में अपन 4 क्विंटल प्रति बीघा का ये उपज देती है
0: जी, जी, जी।
1: ये 8-10 वेराइटियां है
0: जी,
1: तो इसको अपने क्षेत्र के लिए काफी प्रचलित है
0: जी,
1: इनको किसान भाई इसको प्रयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर आपने देखो उन्नत किस्म बताई जे, अब बात यह हो जाए कि जो प्रमाणित बीज है वो कैसे होनी चाहिए और किसान भाई वो कहाँ से ले सके से, कहाँ से खरीद सके से?
1: किसान भाई क्या काफी भ्रमित होते हैं, कई संस्थाएं होती है जिनसे प्रमाणित बीज के नाम पे बेचती है, लेकिन इसके मुख्य स्रोत सरकारी क्षेत्र जैसे कि केवी के कृषि विज्ञान केंद्र हुआ, कृषि विभाग हुआ और राज सीड हुआ, एनएससी हुआ, इनसे प्रमाणित जो संस्था है जो कि सरकारी संस्था, इनसे खरीदना चाहिए। और या कोई जैसे कि कोई अच्छा डीलर हो जो कि प्रमाणित जो कि रजिस्टर जिसके पास लाइसेंस है उससे खरीदना चाहिए
0: जी, जी।
1: और प्रमाणित बीज ही लेना चाहिए जिसपे की टैग लगा हुआ होता है, उसपे सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि उसमें कितने परसेंट अंकुरण क्षमता होती है, कितना परसेंट अनुवांशिक शुद्धता होती है, कितनी उसमें भौतिक शुद्धता होती है
0: जी।
1: और उसके साथ अपन को बिल भी लेना चाहिए
0: जी, जी, जी।
1: ये मुख्य संस्था है, सरकारी संस्था से बीज लेना चाहिए
0: जी। डॉक्टर साहब आपने बताया कि ऊपर टैग लगे हुए थे, तो टैग कोई अलग अलग तरीका हो चाहिए, एक जैसे टैग हो चाहिए?
1: बिल्कुल अंशा भाई, ये टैग बीज के अनुसार होता है। बीज चार

0: का होता है, इस पे नीला टैग लगा होता है जो किसानों को दिया जाता है, जो प्रमाणित बीज होता है वो नीले टैग में होता है, और उसके अलावा ब्रीडर बीज होता है, फाउंडेशन होता है, उनके टैग का कलर अलग होता है, फाउंडेशन का सफेद होता है और ब्रीडर का होता है उसका येलो होता है
1: जी।
0: ये अपर कैटेगरी के बीज है, लेकिन जो किसानों को दिया जाता है, किसानों को जो दिया जाता है वो प्रमाणित बीज होता है, सर्टिफाइड सीड जिसको बोलते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब बात यह हो कि अपना किसान मैंने बीज भी ले लियो, प्रमाणित बीज भी ले लियो, संस्था भी आपने बता दी, अब बुआई के फली कहीं कहीं तैयारी कर किसान भाई?
0: बिल्कुल, सोयाबीन की मुख्य समस्या अंकुरण की बहुत ज्यादा है
1: जी।
0: तो किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूंगा कि पहले तो ये मौसम की विषम परिस्थितियां आजकल पिछले 2-5 साल से देखा गया कि कभी वर्षा ज्यादा कभी वर्षा कम होती है, इन परिस्थितियों को देखते हुए किसान भाइयों को कोई एक वैरायटी का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, कम से कम 3 से 4 वैरायटी लेनी चाहिए जो जल्दी पकने वाली भी हो और मध्य अवधि में, जिससे कि इस प्रकार का होने वाला नुकसान इसे बचा जा सके। तो ये 3-4 तरह की वैरायटियां लेनी चाहिए, और उससे पहले उसकी अंकुरण क्षमता, सोयाबीन में सबसे बड़ी समस्या है बीज का जमना या अंकुरण, तो जो बीज लेते हैं उसे बोने से पहले उसका अंकुरण टेस्ट कर लेना चाहिए। उसके लिए एक सिंपल तरीका है, जैसे अपने कई मतलब जैसे बालू रेत में अपने 400 बीज गिन के काउंट करके बोए, और उनमें से उगने वाले बीजों की संख्या 2-3 दिन बाद उगने के बाद उनको काउंट कर लो, तो लगभग 70% होनी चाहिए, यानी 400 में से 280 बीज उगे हुए
1: होनी चाहिए,
0: तो 70% कम से कम चाहिए। तो ये जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि अंकुरण की समस्या सोयाबीन में सबसे ज्यादा है, और जैसे ही उसमें अंकुरण पर्याप्त नहीं होते हैं तो पौधों की संख्या कम हो जाती है, तो 1 हेक्टेयर यानी 6 बीघा में अपने 4 लाख पौधे होने चाहिए, इसके अनुसार उसी के अनुसार बीज दर भी डिसाइड करनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने बीज की अंकुरण क्षमता भी जांच ली, पर आप लोग भी खोज और अपना विशेषज्ञ जो खोज है कि बीज को उपचार करनी चाहिए, तो बीज उपचार कैसे करें और उसका क्या क्या फायदा है?
0: बिल्कुल, बीज का उपचार काफी इसके फायदे हैं, बीज उपचार को टीकाकरण, जैसे बच्चों में टीकाकरण किया जाता है
1: जी जी।
0: तो अगर बीज का उपचार अपन प्रॉपर उसमें 2-3 तरह के वो रहते हैं, एक तो फफूंद नाशक है, कीटनाशक है, और राइजोबियम FIR एक अपना एक क्रम लिखा हुआ है, FIR का मतलब वो होता है फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, इन तीनों से उसी सीक्वेंस में ही इनको अपन को ट्रीट करना चाहिए, और उससे बहुत कम दवा लगती है, दवाई का उपयोग सबसे कम होता है बीज उपचार में, लेकिन उसमें जो अंकुरित बीज वो स्वस्थ होगा और उसे अच्छा पौधा विकसित होगा, पैदावार भी अच्छी होगी
1: जी। तो इसकी आवश्यकता क्यों से बीज उपचार की रहता?
0: बिल्कुल, इसकी आवश्यकता जैसे बच्चों में टीकाकरण करते हैं, जो आगे जो बीमारी आने वाली है वो इससे नहीं आएगी
1: जी जी।
0: क्योंकि शुरू में ही पौधा स्वस्थ होगा, शुरू में जब अगर हम बीजोपचार नहीं करते हैं तो उसमें रोग लगने की संभावना, छोटे पौधों में रोग लगने की संभावना ज्यादा होती है, अगर बीजोपचार करके अपन बुआई करते हैं तो रोग आने की संभावना कम रहती है, बहुत कम हो जाती है,
1: यानी कि एक टीकोचक
0: बिल्कुल टीकाकरण जैसा है, इसीलिए इसको बीजों का टीकाकरण भी कहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब बताई। अब यह किसान भाई जो बुआई करे उनकी सबसे बड़ी विधि कहे जाए, कच्ची विधि अपनाओ?
0: जनरली सोयाबीन लोग अपन सीड ड्रिल में करते हैं, सीड ड्रिल के द्वारा बीज को 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पे बोते हैं, वैसे जो भी जो किसान भाई इसको 30 सेंटीमीटर पे बोते हैं, लेकिन हम किसान भाई को सलाह देना चाहते हैं कि जनरली 45 लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि पौधों की संख्या ज्यादा होने पर उसमें रोग ज्यादा पनपते हैं
1: जी।
0: तो इसलिए एक तो 2-3 सीड ड्रिल विधि है, दूसरी BBF विधि है, आजकल ये विधि है, इसमें दो दो लाइनों के बाद एक नाली बनाई जाती है। BBF से ये होता है कि बरसात अधिक होने के कारण भी पानी नाली के द्वारा बाहर निकल जाता है, और यदि बरसात कम होती है तो मेड पे जो सोयाबीन होती है उसमें नमी संचित होती है, इस परिस्थिति से बचने के लिए BBF विधि अभी इस टाइम काफी प्रचलित है, उसमें उत्पादन भी अच्छा मिलता है
1: जी।
0: तो BBF विधि से किसान भाइयों को बोने की सलाह देते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने जो ये विधि बताई छे सोयाबीन बुआई की, तो कई ये विधि अपना किसान भाई अच्छी उत्पादन ले सके?
0: बिल्कुल, इसे उत्पादन 10-15% बढ़ता है, हमने वही बताया कि जो पानी अगर ज्यादा बरसात होती है उससे पानी का निकास प्रॉपर हो जाता है, और कम बरसात होती है तो जो डोली पे बोई जाती है उसमें नमी प्रॉपर संचित होती है, संग नमी उसमें बराबर बनी रहती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: आपने सोयाबीन की उन्नत किस्म और वहाँ की विशेषता के बारे में बताया, अब चलता चलता अपना किसान में बताए आप कहीं खबर चाहो संदेश के रूप में।
1: हम किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहते हैं कि समय पर जैसे ही मानसून आए
0: जी,
1: तो मानसून आने पर समय पर बुआई करना चाहिए किसान भाइयों को, और कम से कम 100 mm वर्षा होने पर, यानी से अपन कह सकते हैं 3 से 4 इंच नमी रहे तब बुआई करना चाहिए, क्योंकि कम बरसात में भी बीज खराब हो जाता, अंकुरण प्रॉपर नहीं हो पाता है। किसान भाई जल्दी जल्दी में क्या है कि कम बरसात में भी बुआई कर देते हैं, लेकिन कम से कम 100 mm वर्षा होनी चाहिए और प्रॉपर बीज दर कम से कम 60 से 70 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज बोना चाहिए। किसान भाई क्या बीज का प्रयोग ज्यादा करते हैं तो ये नहीं करना चाहिए, उससे क्या कि पौधे घने होते हैं, उससे बीमारियां ज्यादा बढ़ती। तो बीज दर रखी गई है उसी से बोना चाहिए, पौधों की दूरी भी प्रॉपर रखना चाहिए, यानी कि 10 सेंटीमीटर, और लाइन से लाइन की दूरी भी प्रॉपर रखना चाहिए 30 से 45 सेंटीमीटर, वैसे 45 पे रखना चाहिए, लेकिन अगर अल्प अवधि की पकने वाली है उनको 30 सेंटीमीटर पे बोना चाहिए, और फैलने वाली किस्में होती है उनको 45 सेंटीमीटर।
0: डॉक्टर बुआई को सबसे बढ़िया समय कहीं से?
1: बुआई का सबसे उचित समय मानसून आने पर ही है, लेकिन कम से कम जो अभी मैंने आपको बताया अंशा भाई कि 100 mm बरसात, यानी 4 से 5 इंच बरसात, उसको 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पे।
0: जून को महीनो चालू चाहे या जुलाई के महीने, तो मतलब महीना में बहुत सके अगले
1: बिल्कुल लास्ट वीक ऑफ द जून या फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई, यानी कि जुलाई के प्रथम सप्ताह और जून के लास्ट सप्ताह में ये सबसे उचित समय है।
0: डॉक्टर भरतलाल मीणा साहब, आप माँ की चौपाल पधारिया और माँ का किसान मन में बताए सोयाबीन की उन्नत किस्म और वहाँ का उन्नत किस्म और उनकी विशेषता के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसलिए धन्यवाद। राम राम साहब।
1: राम राम साहब।
0: किसान मायो, डॉक्टर साहब ने बात देखो कितनी बढ़िया और अच्छी जानकारी दी थी कि अपने सोयाबीन की जो फसल अपन ले वाला था उसके लिए अपनी बीज कहाँ से खरीदना चे, कैसे खरीदना चे, कहीं कहीं अपनी सावधानी रखनी चे, बीज खरीद के बाद अपनी भूख पड़ी कहीं कहीं देखना चे, ऊपर जो टेक लग रहा है जो टेक पर कहीं लिख रो चे, ये सब चीज़ें की जानकारी अपने ताई करनी चे, उसके बाद ही अपने बीज लेना चे। और एक बात डॉक्टर साहब ने की कि जब भी अपने बीज लेवा कहाँ से भी लेवा तो प्रमाणित संस्था से लेवा, और अगर अपन कहीं और जगह से भी लेवा तो सबसे पहले उनको बिल जरूर लेवा, क्योंकि जब अपन बिल लेवा किसान बनाए तो वो बिल के अंदर अपने तक लिखे रहोगे भाई या कदे को तो बीच कतन उगोगो कतनी की क्षमता च, और उस साथ में जब बिल अपन ले लेंगे तो अगर बाय दब कान कहीं हो जाओ और नुकसान हो जाओ या वो बीज न उगे तो आपन वो बिल की ताजता से वो बिल ले आपन उपभोक्ता सेक्टर में भी जा सकता और उको लाभ अपन ले सकता, इसलिए अपन जब भी कोई भी चीज लावा अपने खेती बाड़ी से संबंधित हो या अपना घर बार संबंधित हो तो अपन बिल जरूर ले रहा वहाँ। किसान मनाओ देखो चौपाल में अपनी भगत और बात अच्छी तक बाद में अपनो मन भी कर मनोरंजन होगा, आपन मनोरंजन भी करेंगे, आपके ताई प्यारा प्यारा लोक भजन भी सुनाऊंगा, लोग भी सुनाऊंगा, जाजो मतो।
2: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी

0: की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
6: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: किसान होना है वो, आपन सुना था एक प्यारो सो लोक भजन जगन्नाथ गुजर की आवाज में।

चौपाल में चर्चा होगी पशुओं का जो कुपोषण का लक्षण, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और मधुमक्खी पालन में अपना कृषक अनुभव आपको बताया जाओगा और जानकारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर दी जाओगी। तो क्षण में आते देखो आप चौपाल में कथे भगत कहते चाला सब कथाएं गणी गणी राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब सुनिए लोक गीतों से सरोवर कार्यक्रम लोक संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका आज के इस कार्यक्रम में हम पहला गीत लेके आए हैं सीमा मिश्रा की आवाज में, ये बालम छोटो सो।

तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम लोक संगीत आपको पसंद आया होगा। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोताओं, अब आनंद लीजिए फिल्म गीतों से भरपूर कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म नकाब से, जिसे गाया है जावेद अली ने, संगीत दिया है प्रीतम ने।

शुद्ध कार्यक्रम में अगला गीत मोहित चौहान की आवाज में किस्मत कनेक्शन फिल्म से, जिसे लिखा है शब्बीर अहमद ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म तेरे नाल लव हो गया से, जिसे लिखा है प्रिया पांचाल मयूरपुरी ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

आतिफ असलम, अलीशा चिनॉय और जोए बरुआ की आवाज़ों में फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से ये गीत, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

सोनू निगम, आफताब सबरी, हशीन सबरी की आवाजों में फिल्म महूना से ये गीत, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

आतिफ असलम की आवाज में फिल्म जहर से ये गीत, जिसे लिखा है सैयद कादरी ने और संगीत दिया है रूप कुमार राठौर ने।

कार्यक्रम में अगला गीत जुबीन गर्ग की आवाज में फिल्म गैंगस्टर से, जिसे लिखा है सैयद कादरी ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

मोहित चौहान और नेहा भसीन की आवाज़ों में फिल्म फैशन से गीत, जिसे लिखा है इरफान सिद्दीकी ने और संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अब हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार संध्या सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे

0: ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया, देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए। मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
1: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
2: वित्त मंत्री डॉक्टर ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुक उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों

में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए।

0: एन और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन फ्रीदा अल काबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते, तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोताओं, अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं और अब समय है हमारे खास कार्यक्रम फिल्म संगीत का। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म जीत से गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म रास ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

फिल्म सुरसी गीत महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में, जिसे लिखा है निदा फजली ने और संगीत दिया है MM करीम ने।

श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म जिस्म से ये गीत, जिसे लिखा है नीलेश मिश्रा ने और संगीत दिया है MM करीम ने।

कार्यक्रम में अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे से, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म तेरे नाम से ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

कमियक लगीत कुमार सानू और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में फिल्म नाजायज से ये गीत, जिसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारे कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। अब हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: मुझे हालात से टकराना है।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।
2: Hey, you guys, flowing on the flow. Nails fit us, we throw you out the dough. Bone fit us, we smack you honk.

देखते हैं जिधर भी उधर तुम ही दिखाई देते हो ओ हमदम। ये दामन मोहब्बत का है, ये दुनिया हमारी, इसे छोड़कर कहां जाएं हम।

गुम हुए हैं नजारे, भला ये क्या है बात, तेरे काजल का असर देख, ये दिन अब हुआ है रात। नैनों का नैनों से मिलना, दिल का दिल को पुकारना, हाँ यही है वो मुलाकात।

0: जमाने के ताने जज्ब करते हैं रोज, रहते हैं कांटों के संग ये, इनकी हिमाकत को समझो। मासूम है और इसलिए बहक जाते हैं ये, इन फूलों की नजाकत को समझो।
1: कहा आपका ये बजा ही सही के हम

पायल की छन छन, बिजली की चमकन, लोच कमरिया का संभाले न संभलता है, चुनरी की ढलकन, नजरों की अटकन, जरा सोच ये दिल बहलाए न बहलता है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार और थोड़ी ही देर बाद अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्रों सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल

0: सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi today. He noted that several initiatives have been launched in the last 12 years with the motive of Nation First. Mr. Modi asserted that Nation First is India's highest guiding principle today.
4: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
3: द प्राइम मिनिस्टर सेड द कंट्री हैज विटनेस्ड एंड एंड्योर्ड साइकल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन। ही एडेड दैट इंडिया कैरीज द मेमोरी चिप ऑफ एजेस विद इन इट्स कॉन्शियसनेस। Mr. Modi stated that India's actions are shaping the future for the next 1,000 years. Highlighting the achievements of the NDA government over the past 12 years, Mr. Modi said, mobile connectivity has been extended to approximately 45,000 villages across the country. He also mentioned that around 75,000 banking correspondents and over 6,000 post offices were established. Shiv Sena leader and Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde today announced the induction of 6 Lok Sabha MPs from the Shiv Sena UBT faction into the party. Addressing a press conference in Mumbai, Mr. Shinde welcomed